0: जो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: मिलन की घड़ी तो डेफिनेटली आ गई है क्योंकि आज है मंडे 28th ऑफ सितंबर और सुबह के 5 बज रहे हैं.
4: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
0: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: शुरुआत अगर ऐसी प्यारी सी मधुर सी द कोकिला द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इंडियन सिनेमा की लता मंगेशकर की आवाज से शुरुआत हो ना तो बस सब बल्ले बल्ले 5:06 गुड मॉर्निंग एवरीवन नीतू का प्यार भरा नमस्कार प्रणाम स्वीकार करे बस ऐसे ही गीत और साज और आवाज के दुनिया के दोस्तों आप सबका स्वागत है रेडियो मस्ती के लहरों पर जहां पर 2 घंटों के सुरीले सफर में नीतू आपके साथ माने की 7 बजे तक सुबह के 7 बजे तक और आज 28 सितंबर आपका बर्थडे है जन्मदिन है तो बस बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं लेकिन हाँ भारत की जो महान गायिका 28 सितंबर का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है आज वो दिन है जब भारत की संगीत की दुनिया को एक ऐसी अनमोल आवाज मिली थी जिसे वक्त कभी भुला नहीं सकता और आज उनको हम याद कर रहे हैं महान गायिका स्वर सम्राज्ञी द मेलोडी क्वीन लता मंगेशकर जी को जिनकी आवाज ने न जाने कितनी पीढ़ियों के दिलों को छुआ है आज इनका जन्मदिन है चलिए बातें तो होती रहेंगी उनके मस्त गाने भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे 5499-1294 पर आपके मैसेजेस का इंतजार

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: बिल्कुल, it's wake up time. So जागो जागो, early rises. काम पर जाने के लिए, school college जाने के लिए तैयार होना है. So wherever you might be, 549-912-94 पर. A very good morning आपको, Mr. Deepak Vedita के नाम हमारे लिए भी. Thank you so much. चलिए जी, प्रणाम. Radio Musti, have a wonderful day ahead. Thank you, Mr. Jayshan Hardoyal, आपके नाम पूरे परिवार के लिए. जी, wake up हो गया, यानी कि योगा भी. एनी और चांद, ये हो भी ना बात, आप अपने हेल्थ के बारे में सोचेगा जरूर, बहुत ही जरूरी है. स्टे ब्लेस्ड आपको भी, भाई सूरज शर्मा इन सजादा परिवार. हर हर महादेव आप सभी को. एंड यहाँ पर मिस्टर चोनी कहती है, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार फ्रॉम होशबुआम. वेल, डोंट फील बैड. और आप कहते हैं, येस, डोंट फील बैड इफ पीपल रिमेंबर यू ओनली व्हेन दे नीड यू. कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जब भी जरूरत पड़ती है तभी याद करती हैं. Feel privileged that you are like a candle that comes to their mind where there's darkness. क्या पता किसी अंधेरे राह में चल रहे होंगे तो आपकी याद आ गई है, तभी आप उनके सहारे बन जाते हो. वेरी लकी. तो बस ऐसे ही आप हर किसी की लाइफ में, जो कहते हैं, अंजोरिया करते रहें और रोशनी भरते रहें अपनी मुस्कान, अपनी बोली, अपनी बिहेवियर से. सो 549-912-94 पर थैंक यू सो मच. एंड नेक्स्ट गाना डेफिनेटली आपके लिए चलाएंगे, आपके पूरे परिवार के नाम, अब्दुल अंसारा बानू. और आपके लिए यहाँ पर रिक्वेस्ट, सुबह सुबह क्या बात है शीला जी, आप एलेस्पिरेंस त्रिबुशे से. जी हाँ, आज लता जी का जन्मदिन है, तो डेफिनेटली 12 से 2 के बीच माने कि रेट्रो रिदम में स्पेशल तो होगा ही. बस आज सुबह सुबह भी हम कुछ ऐसे गाने चलाएंगे जो आपको उनकी आवाज़ में बहुत ही पसंद आएंगे, जैसे कि ये वाला गाना.

0: बस तुम्हें।
1: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
2: Radio Musti.
3: Lovely evergreen soothing गाने आपकी morning को good good बस रात ढल रही है और सुबह हो रही है 5:28 already निकल चुके हैं घर से तो bon courage and बस have a safe drive अगर आप रास्ते पर हैं अभी बारिश हो रही थी I don't know शायद रुक गई होगी शायद अभी भी है please be very careful. Do let me know on Sekat Navnav. Those Navkat, to aaj 28th of September, Lataji the Great, Lataji ka janam din hai. Aur 1929 ko Indoor mein unka janam hua tha. Sangeet unke jeevan mein waise bachpan se hi basa hua tha. Aur unke pitaji, jaise ki hum sab jante hain, Pandit Dinanath Mangeshkar swayam ek mahan sangeetkar aur rangmanch ke kalakar the. Aur bahut choti umr mein hi Lataji ne sangeet ko apna jeevan banaya. Sirf 13 साल की उम्र में ही पिता के निधन के बाद उन्होंने अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाली और फिल्म जगत में अपना सफर शुरू किया और उनकी आवाज में अजीब सी जैसे कहते हैं ना पवित्रता ये थी एक ऐसी मिठास जो सीधा दिल तक पहुंचती थी चाहे प्रेम गीत हो विरह का हो भक्ति हो देशभक्ति हो या जिंदगी के किसी जॉ ऐसे जो गहरे एहसास को बयां करता हो लता जी हर शब्द में जान डाल ही देती थी

इस चेहरे से जरा आंचल को हटा दीजिएगा, जो नकली आंसू है आप बहाते रहते हैं, या फिर नकली जो स्माइल है उसको हटा कर बस सच्ची जो स्माइल है उसको आप अपने चेहरे पर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सबको हंसाते रहिए। व्हाट्सएप 5499-1294 पर यहाँ पर है हर हर महादेव और आप है मिलन रामदिकल सर परिवार के नाम, तो बस स्वागत है आपका भी। एंड मिस्टर राजन देवी मिलानी चली से थैंक यू कह रहे हैं, बस साथ निभा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके पूरे परिवार के नाम।

बस साथ निभाते रहिएगा. अनुवर्दे कुवैत से हैं सविता पदारत. आज आप अपना 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. सो माला सुमाहू का थुबोन और पूरे परिवार की तरफ से ढेर सारा प्यार.

0: हम है ना, इसी बात पर चलिए आज आपका दिन कैसा रहेगा।
1: Your daily horoscope, RM2, Radio Musti.
0: और हमेशा की तरह शुरुआत तो आप ही के साथ करेंगे।
2: एरीज मेष राशि।
0: वेल, आज आपके भीतर ऊर्जा माने कि एनर्जी और उत्साह की कोई कमी नहीं रहेगी।

0: कुछ नया करने की इच्छा आपको आगे बढ़ाएगी और इसका पॉजिटिव असर कामकाज के साथ साथ व्यापार पर भी दिखाई देगा। अटके हुए काम वैसे तेजी से पूरे हो सकते हैं और कारोबार में नई गति आएगी।
1: टॉरस वृषभ राशि,
0: और व्हाट, आज मन में किसी बात को लेकर उलझन या चिंता बनी रह सकती है। किसी निर्णय माने कि डिसीजन को लेकर डर महसूस हो तो धैर्य ना खोए और दूसरों की बातों में आकर जल्दबाजी ना करें। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई मामला आपके पक्ष में जाता दिखाई दे सकता है। वैसे पानी वाली जगहों पर विशेष सावधानी आपको बरतनी होगी और मेहनत करते रहें, उसका फल डेफिनेटली आपको मिलते रहेंगे।
1: जेमिनी मिथुन राशि,
0: आज आर्थिक मोर्चे पर अच्छे संकेत मिलेंगे। आय बढ़ाने के नए रास्ते दिखाई दे सकते हैं। भविष्य को लेकर आपका आत्मविश्वास भी मजबूत रहेगा। वैसे परिवार से जुड़ी निजी बातों को दूसरों के साथ साझा करने से बचें, वरना छोटी बात अनावश्यक रूप बढ़ा सकती है। बड़ों का आशीर्वाद आपके लिए विशेष सराहा बनेगा और पुराने अनुभव आज सही डिसीजन लेने में मदद करेंगे।
1: कैंसर कर्क राशि,
0: ऑलराइट, आज प्रगति के साथ सहयोग भी मिलता रहेगा। वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन मिलने से काम आसानी से पूरे होंगे। आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश में आपकी सफल हो सकती है। किसी पुराने दोस्त से अचानक मुलाकात हो सकती है जिससे पुरानी यादें फिर से ताजा हो जाएंगी और संतान से किया हुआ वादा पूरा करना आपके लिए जरूरी रहेगा।
1: लियो सिंह राशि,
0: आज भाग्य का साथ मिलने से कई रुके हुए काम दोबारा गति पकड़ सकते हैं। जिन कामों में लंबे समय से अड़चन आ रही थी उनमें रास्ता आप देखेंगे खुलता नजर आएगा। हालांकि दूसरों के मामलों में जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप यानी कि इंटरफेयर करने से बचें। किसी दूर के रिश्तेदार से जुड़ी खबर मन को थोड़ा उदास कर सकती है। वैसे अपनी तरक्की को लेकर आसपास के लोगों की सोच को समझकर आगे बढ़ें।
1: वर्गो कन्या राशि,
0: आज आपको हर कदम पर संतुलन और सावधानी बनाए रखने की जरूरत होगी। संतान की संगति पर ध्यान दे और वाहन चलाते समय प्लीज किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। पुराने लेन देन का बोझ कम होने से मन को राहत मिलेगी। अपनी पसंद और शौक की चीजों पर खर्च करने का आपको मन करेगा, बस बजट का भी ख्याल रखते रहे।
1: लिब्रा तुला राशि,
0: आज का दिन रिश्तों की गर्माहट और मानसिक सुकून लेकर आएगा। जीवन साथी का सहयोग आपको भीतर से मजबूत करेगा और आपसे प्रेम भी बढ़ेगा। संतान आपकी उम्मीदों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगी। यहाँ पर आपके लिए कहा जाता है कि माताजी पिताजी बड़ों की ओर से मिली जिम्मेदारियों को आप गंभीरता से निभाना आपके लिए जरूरी होगा।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
0: आज का दिन उतार चढ़ाव के बीच प्रगति के अवसर को भी लेकर आएगा। विरोधियों पर आपका प्रभाव मजबूत रहेगा और नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। व्यापार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण काम आपको यात्रा पर भी ले जा सकता है। बस अपनी जो गुस्सा है ना उस पर आपको नियंत्रण कंट्रोल रखना पड़ेगा।
1: सजिटेरियस धनुराशि,
0: आज आप देखेंगे कि व्यापार और करियर दोनों के लिहाज से दिन उत्साह बढ़ाने वाला रहेगा। सेहत में पहले की तुलना से सुधार महसूस करेंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर भी किसी से धन उधार लेने से बचना होगा। कार्यस्थल पर अपनी बात स्पष्ट और आत्मविश्वास के साथ रखें। कहीं घूमने जाने की योजना बन सकती है। बड़ों का आशीर्वाद आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा और पुरानी गलतियों से मिली सीख आज सही डिसीजन लेने में मदद करेगी।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: हेल्थ इज वेल्थ ना, तो आज सेहत को लेकर राहत महसूस होगी और बड़ों का आशीर्वाद आपके लिए सौभाग्य का कारण बनेगा। लंबे समय से अटके काम पूरे होने की उम्मीद है, इसलिए जिम्मेदारियों को टालने के बजाय समय पर पूरा करें। संतान की भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे तो आपसे रिश्ता और मजबूत होगा। पुराने कर्ज से राहत मिलने के संकेत हैं और साथ ही आसपास के लोगों की नीयत को समझकर ही कोई डिसीजन या फिर कदम उठाना आपके हित में रहेगा।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: आज आपकी मेहनत का परिणाम साफ दिखाई देगा और आत्मविश्वास पहले से अधिक मजबूत रहेगा। साहस और पराक्रम बढ़ाने से आप बड़े फैसले लेने में खुद को अधिक सक्षम महसूस करेंगे। नौकरी में पदोन्नति या

0: नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना बन सकती है। पार्टनरशिप से जुड़े कामों में कागजी कार्रवाई बहुत ध्यान से आपको पूरी करनी होगी और घर या कोई या संपत्ति खरीदने का विचार भी आज गंभीरता से मन में आ रहा है।
1: Pisces, मीन राशि।
0: फाइनली आज दिन सकारात्मक परिणामों से भरा रहेगा। समझदारी और सोच विचार के साथ किया गया निवेश फ्यूचर में अच्छा लाभ दे सकता है। व्यापार में सफलता के अवसर मिलेंगे। रुका हुआ पैसा वापस आने से आर्थिक राहत महसूस होगी। लव लाइफ में खुशियां बढ़ेंगी और साथ ही साथ मन को सुकून मिलेगा। आपकी मधुर वाणी लोगों की आपको मतलब सहज ही अपनी ओर आकर्षित करेंगी, लेकिन साथ ही विरोधियों से थोड़ा सतर्क रहना भी समझदारी होगी। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स, डू गुड, बी गुड, विशिंग यू ऑल अ लवली डे अहेड एंड बेस्ट ऑफ लक।
2: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: बिल्कुल आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे. बस अभी तो 5:55 मानी कि 6 बजे आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार. वो को आज टोल दोस गोइंग टू वर्क या फिर ऑलरेडी रास्ते पर हैं, बी वेरी केयरफुल, ड्राइव सेफली.

0: listening to Radio Misty.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Musti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
4: सुनते हैं सुबह का पहला फ्लैश न्यूज़ आपसे अदिति, नमस्कार आपको।
5: नमस्कार नीतूषा, श्रोताओं को भी नमस्कार। सेफ सिटी कैमरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजियां शामिल करके इस नेटवर्क में एक नया पड़ाव पार किया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन मंत्री उस्मान महमूद के अनुसार नई टेक्नोलॉजियों का ज़्यादा इस्तेमाल करके सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का पता लगाने की क्षमताएँ बेहतर करने का लक्ष्य तय किया गया है। मौजूदा प्रणाली की अपग्रेड होने से एआई के माध्यम से सड़कों पर वर्जित या खतरनाक व्यवहारों के बारे में आसानी से पता लगाया जा सकेगा, जैसे तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना, बिना सेफ्टी बेल्ट पहने ड्राइविंग करना, गाड़ी चलाते हुए फ़ोन पर बात करना या फिर खतरनाक ड्राइविंग या रेड लाइट पार करना। अमेरिकी बाजार में मॉरिशस की चीनी के लिए अतिरिक्त 813 MTRV यानी मेट्रिक टन रॉ वैल्यू तय की गई है। वाशिंगटन ने 2027 के वित्तीय साल के लिए अमेरिकी टैरिफ रेट कोटा के तहत मॉरिशस को दिया जाने वाला एलोकेशन बढ़ा दिया है। ये वित्तीय साल इस गुरुवार 1 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इस तरह मॉरिशस का कोटा 12,910 से बढ़कर 13,723 मेट्रिक टन रॉ वैल्यू हो गया है, जो 6.3% की बढ़ोतरी है। लेकिन अब इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि किस प्रकार मॉरिशस ये अतिरिक्त 813 टन चीनी बेच पाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में शनिवार शाम को एक बार के करीब 8 हमलावरों ने अंधाधुन लोगों पर गोलियां चलाई। 17 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि इस हमले के कुछ ही घंटे बाद कल सुबह केप टाउन में किए गए इसी प्रकार के एक और हमले में 11 लोगों ने जान गंवाई है। इनके पीछे आपराधिक गुटों के बीच झगड़े का कारण बताया जाता है। आखिर में स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत, पूर्व से आ रहे बादलों का असर हमारे इलाके पर पड़ रहा है। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, आज सुबह लगभग देश भर में बादल घिरे रह सकते हैं, रह रहकर बारिश होती रहेगी। दोपहर बाद पश्चिमी इलाकों पर रह रहकर बारिश तेज हो सकती है और बादलों की गरजने की भी संभावना है। रात के दौरान आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा। हवा पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाह रेखा के परे समंदर खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिमी समंदर में 2.50 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम 15 से 17, अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस। साहिली इलाकों पर न्यूनतम 19 से 21, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 5:54 पर सूर्योदय, शाम को 6:07 पर सूर्यास्त होगा। ये थी अब तक की खबरें। हम आपसे मिलेंगे ठीक 6:30 मुख्य समाचार बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

कुछ मेरे दिल ने कहा, कुछ आपके दिल ने सुना, कुछ आप कहेंगे हम सुनते रहेंगे. 5499124. सो बस अभी कहना है कि बारिश हो रही है, प्लीज बी वेरी केयरफुल, छाता रेनकोट वगैरह लेते चलना. हाँ, एंड बो कुराज टू यू ऑल. ये जो गाना है आपके नाम करते हैं, आज मेरी बेटी शानवी का बर्थडे है. प्यारे से प्रिंसेस 10 साल की हो गई है. ब्लेसिंग्स टू यू बेटा, एंड मामा सरिता, पापा निशान, दादी शोभा, आई थिंक सब पूरे बिहार की तरफ से ढेर सारा प्यार. हर हर महादेव आपको प्रेमिला जी फ्रॉम ब्लेंडी पापाए, पति रंजीत एंड पूरे परिवार के नाम. सोनम भोला, अश्विनी प्रेम, दिनेश, नानी आंटी, मामू और राम गुलाम फैमिली अविशा को हैप्पी बर्थडे विश कर रही है. सो ढेर सारा प्यार टू यू टू. Wishing you two a lovely Monday morning, my dear Duti Kain Raghujana Parivar. And jitne bhi log hamare saath jude hue hain yahan par hain, RMT team, thank you. Aur Himlata Bhanchal from Puerto Pima, kaise hain? Bilkul theek thaak. Aaj nephew Alvin ka birthday hai, so wishes and good luck to Dushan. Mahi for your exams. Aur shubh din sabhi ko, garma garam chai. Ah, sakht zarurat hai abhi. To bas Kumar Sanu aur Alka Yagnik ki awaazon ko aap enjoy kijiye, kyunki yahan par nazron ki baatein chal padi hain. इशारा आपकी तरफ है क्या?

सुनते रहे 5499 पर 6:16। गुड मॉर्निंग आकाश एंड मनसुख फैमिली। और बॉम्बे में बारिश हो रही है, प्लीज बी वेरी केयरफुल बाबारी बाबा। अभी तो कई जगह पर बारिश हो रही होंगी, सो 5499 1294 पर डू लेट मी नो, ताकि बाकी जो रोड यूजर्स हैं एटलीस्ट उनको इत्तला भी कर सके। गुड मॉर्निंग नीतू, आज से ऐसी एग्जाम्स फुल फ्लेज्ड आइए पापा स्टार्ट हो रहे हैं, सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल आवर स्टूडेंट्स एंड जितने भी टीचर्स हैं और कई जो सुपरवाइजर्स हैं जैसे कहते हैं ना, बस अभी निकलने वाले हैं। बेस्ट ऑफ लक टू यू बोल बो कुहाज एंड जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मन लगा कर आप पढ़ाई कीजिएगा एंड फ्लाइंग कलर्स के साथ आप डेफिनेटली पास होंगे। ललिता एंड जीतन फैमिली कैसे हैं, ठीक ठाक? गुड लक टू ऑल स्टूडेंट्स, नाइस, थैंक यू सो मच। आप हैं निशा एंड बस ऐसे ही रेडियो मस्ती के साथ जुड़े हुए हैं। शानवी आज अपना 5th बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, प्यारी से प्रिंसेस को ब्लेसिंग्स फ्रॉम मामा खुशबू, पापा चंदन, आपकी बहन सोनाली शनाया एंड हर हर महादेव। टू ऑल माई फैमिलीज स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक उनके एग्जाम्स के नाम, रिद्धि सोनाक्षी अवनी क्यूत वंश सुया बिहारी कुंगुमा से आपके पूरे परिवार के नाम।

0: चलिए इसी प्यार को इन गानों के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं, बांट रहे हैं। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग हेमा, स्वीट पारुषी, परिधि, पृथ्वी, प्रिया, निशिका, नितिन, विशाल, यानेश, टू रेडियो मस्ती टीम, थैंक यू। खुश रहो आप ही कातोबोन से पूरे परिवार के नाम। आपादु फैमिली गुड मॉर्निंग कहते हैं। होशनों में जोरों की बारिश, उरी बाबा प्लीज बी वेरी केयरफुल। रास्ते पर होंगे, ड्राइव कर रहे होंगे, अभी बच्ची के एग्जाम्स शुरू हो चुके हैं, तो बच्चे लोग आप लोग बीमार ना पड़े, अपने जो प्रिकॉशंस हैं अपनी तरफ से छाता रेनकोट वगैरह लेते चले। और अभी तो धीरे धीरे गर्मी भी शुरू हो रही है, सो बीमार होने की जो ट्रांजिशन हो रहा है ना अभी, गर्मी सर्दी ये सब, तो प्लीज बी वेरी केयरफुल। एंड आप म्यूजिक के मौसम से जुड़े रहेंगे तो डेफिनेटली बीमार बिल्कुल नहीं होंगे।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio Musti.
0: 6:24 माने कि बस थोड़ी देर में 6:30 बजे आप सुन पाएंगे पूरा समाचार बुलेटिन, उसके बाद मॉर्निंग बीट।

नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत आज की सुर्खियों के साथ। सेफ सिटी कैमरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजियां शामिल करके सड़क सुरक्षा नियमों के

0: उल्लंघन का पता लगाने की क्षमताएं बेहतर करने का लक्ष्य तय किया गया है। अमेरिकी बाजार में मॉरिशस की चीनी के लिए अतिरिक्त 813 मेट्रिक टन रॉ वैल्यू तय की गई है। वाशिंगटन ने 2027 के वित्तीय साल के लिए अमेरिकी टैरिफ रेट कोटा के तहत मॉरिशस को दिया जाने वाला एलोकेशन बढ़ाया है। मॉरिशस में एग्रीकल्चरल सर्विसेज के अनुसार मई और जुलाई महीनों के बीच इकट्ठा किए गए फलों और सब्जियों के 150 सैंपल्स में से लगभग 30% में ऐसे कीटनाशक पाए गए हैं जिनकी उस खास फसल के लिए सलाह नहीं दी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में दक्षिण अफ्रीका में हुए सिलसिलेवार गोलीबारी में 27 लोगों की मौत। नमस्कार, इस बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। सेफ सिटी कैमरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजियां शामिल करके इस नेटवर्क में एक नया पड़ाव पार किया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन मंत्री उस्मान मोहम्मद के अनुसार नई टेक्नोलॉजियों का ज़्यादा इस्तेमाल करके सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का पता लगाने की क्षमताएं बेहतर करने का लक्ष्य तय किया गया है। मौजूदा प्रणाली के अपग्रेड होने से AI के माध्यम से सड़कों पर वर्जित या खतरनाक व्यवहारों के बारे में आसानी से पता लगाया जा सकेगा, जैसे तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाना, बिना सेफ्टी बेल्ट पहने ड्राइविंग करना, गाड़ी चलाते हुए फ़ोन पर बात करना, खतरनाक ड्राइविंग या फिर रेड लाइट पार करना। विस्तार उर्वशी बिकारी बंजन और नियर्मा नारायणा रेड्डी के साथ।
1: इन कैमरों में कई आधुनिक सुविधाएं हैं जिनकी मदद से सड़क पर होने वाली नियमों के उल्लेख का पता लगाया जा सकता है। समय के साथ उन्हें और भी आधुनिक बनाया जाएगा। फिलहाल ये कैमरा लाल बत्ती पार करने, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन इस्तेमाल करने, सीट बेल्ट न लगाने और अचानक लेन बदलने जैसे मामलों का पता लगा सकते हैं, जिससे घटना का खतरा बढ़ सकता है। अगर कैमरा यह पता गाता है कि चालक शराब के नशे में गाड़ी चला रहा है तो संबंधित नोटिस सीधे उस व्यक्ति को भेजा जा सकता है। इसी संदर्भ में सरकार का मानना है कि यह कदम सड़क पर लोगों की जान की सुरक्षा में मददगार साबित हो सकता है। पुलिस, मॉरिशस टेलीकॉम और उसके ठेकेदार के बीच इस परियोजना को जल्दी से जल्दी अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। सड़कों पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए इस व्यवस्था से सड़क सुरक्षा को और मजबूत करने की उम्मीद है।
0: अमेरिकी बाजार में मॉरिशस की चीनी के लिए अतिरिक्त 813 MTRV यानी मेट्रिक टन रॉ वैल्यू तय की गई है। वाशिंगटन ने 2027 के वित्तीय साल के लिए अमेरिकी टैरिफ रेट कोटा के तहत मॉरिशस को दिया जाने वाला एलोकेशन बढ़ा दिया है। ये वित्तीय साल इस गुरुवार 1 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इस तरह मॉरिशस का कोटा 12,910 से बढ़ाकर 13,723 मेट्रिक टन रॉ वैल्यू हो गया है, जो 6.3% की बढ़ोतरी है। लेकिन अब इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि किस प्रकार मॉरिशस ये अतिरिक्त 813 टन चीनी बेच पाएगा। शैलिनी अबन अभ्युदोई।
2: सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस अमरीकी फैसले से क्या बदलाव आया है। नए वित्तीय वर्ष के लिए मॉरिशस के शुरुआती कोटा में 813 MTOV यानी कि मेट्रिक टन रो वैल्यू का अतिरिक्त कोटा जोड़ दिया गया है। कुल मिलाकर अब देश के पास इस मंडी के लिए 13,723 MTOV कच्ची चीनी उपलब्ध है और ये नया एलोकेशन वाशिंगटन द्वारा वैश्विक कच्चे चीनी के अमेरिकी कोटे से बाकी बचे 55,993 MTOV के वितरण के बाद आया है। परंतु कोटे की उपलब्धता का मतलब ये नहीं है कि बिक्री भी अपने आप बढ़ जाएगी। मॉरिशस शुगर सिंडिकेट ने डिमांड यानी कि मांग का आकलन करने की दिशा में पहले से ही अपने अमेरिकी ग्राहकों से संपर्क कर लिया है। मॉरिशस शुगर सिंडिकेट के CEO दिवेश दुखेरा के अनुसार अतिरिक्त टन भार का एक हिस्सा पहले ही तय किया जा चुका है और चीनी पेराई सत्र नवंबर तक जारी रहेगा, जिससे किसी भी संभावित ऑर्डर को पूरा करने के लिए अभी भी संभावनाएं बची हुई हैं। डेमे रारा मुस्कोवाडो और अन्य विशेष प्रकार की

0: चीनी अमरीकी मंडी मॉरिशस शुगर सिंडिकेट का एक प्रमुख लक्षित गंतव्य बना हुआ है। 13,723 MTOV के इस नए कोटे के साथ अब मुख्य चुनौती इस अतिरिक्त पहुंच क्षमता को वास्तव में बेचे गए ऑर्डर्स में बदलने की है।
1: ओज़ेम्पिक, वेगोवी और मुंजारो जैसे इंजेक्शन्स हैं जो वजन घटाने में असरदार होने के कारण तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं, खासकर कुछ मशहूर हस्तियों और इन्फ्लुएंसर्स के बीच। शुरू में टाइप 2 डायबिटीज और मोटापे के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ये दवाएं भूख और दूसरी चीज़ों पर असर डालकर काम करती हैं। ओज़ेम्पिक हाल ही में मॉरिशस में उपलब्ध होने लगा है। विशेषज्ञों के अनुसार उसमें GLP-1 नामक एक हार्मोन पाया जाता है जो शरीर में प्राकृतिक रूप से भी विद्यमान है और ये ब्लड शुगर के स्तर और भूख को नियंत्रित करने में मदद करता है। हालांकि एक ज़रूरी बात यह है कि ये इलाज सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही उपलब्ध है और इसके लिए सख्त मेडिकल देखरेख की आवश्यकता होती है। सिंचा मुतु, गीता सरन।
2: मॉरिशस में हाल ही में उपलब्ध हुई दवा ओज़ेम्पिक में मुख्य रूप से GLP-1 नाम का एक हार्मोन होता है। ये हार्मोन मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से मौजूद होता है और ब्लड शुगर तथा भूख को नियंत्रित करने में मदद देता है। ओज़ेम्पिक में इसे अधिक मात्रा में इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। मेडएक्टिव की फार्मासिस्ट हेमानंद कुसिरतन कहती हैं, ओज़ेम्पिक एक इंजेक्शन है जो खासकर टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित लोगों को दिया जाता है। ये खून में शक्कर की मात्रा नियंत्रित रखने के लिए दिया जाता है। सप्ताह में एक बार प्रेस्क्रिप्शन पर ही मिलता है और मेडिकल फॉलोअप भी करना पड़ता है। इसका इस्तेमाल मोटापे के इलाज के लिए भी किया जाता है, जिसमें शरीर के वजन में 16% तक कमी आने की संभावना होती है। डॉक्टर निशांत नंदलाल कहते हैं, इसका असर सिर्फ वजन पर ही नहीं पड़ता, दिल के लिए भी ये अच्छा है, खासकर जिन्हें दिल की परेशानियां होती हैं। ये किडनी के लिए भी अच्छा है। किस मरीज को और कैसे ये देना चाहिए ये जानना जरूरी है। दुनिया भर में इस तरह की दवाओं का इस्तेमाल सौंदर्य और शरीर का वजन कम करने के लिए भी किया जा रहा है और किसी भी दवा की तरह इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। डॉक्टर निशांत नंदलाल कहते हैं, साइड इफेक्ट्स में खासकर पाचन की समस्या हो सकती है। कुछ मरीज मसल्स खो देते हैं, इस तरह उनका मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है। दुनिया के कई हिस्सों में दृष्टि से जुड़ी समस्याओं के मामले भी सामने आए हैं। ये दवाई का असर नहीं बल्कि तेजी से वजन घटने का असर है। अगर डायबिटीज या दृष्टि पर नियंत्रण नहीं रखी गई, ध्यान नहीं दिया गया और जब इस दवाई का प्रेस्क्रिप्शन देते हैं तो ये खतरा पैदा होता है। इलाज बंद करने के बाद दोबारा वजन बढ़ने की संभावना भी रहती है और कम किए गए वजन का 60% तक वापस बढ़ सकता है, इसलिए डॉक्टर की निगरानी में इलाज कराना बहुत ही जरूरी है।
1: एजिंग पॉपुलेशन, जलवायु परिवर्तन, भू राजनीतिक तनाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बैंक ऑफ मॉरिशस की गवर्नर प्रिसिला मथुकताको के अनुसार ये चार बड़े बदलाव हैं जिनके लिए मॉरिशस को तैयारी करनी होगी। सोशल साइंसेज इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2026 के अंतर्गत अपने वक्तव्य में उन्होंने आर्थिक स्थिति स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता और साथ ही देश को ऐसे बदलावों के लिए तैयार करने की बात पर बल दिया जिनका प्रभाव रोजगार, विकास और पब्लिक फंड पर पड़ सकता है। आदरणीय वाले अभी उदोई।
0: पहली चुनौती डेमोग्राफी यानी जनसांख्यिकी। बैंक ऑफ मॉरिशस की गवर्नर प्रिसिला मथुरा ताको के अनुसार साल 2024 में मॉरिशस की आबादी 12.4 लाख के अपने चरम स्तर पर पहुंच गई है और उनके द्वारा उद्धृत IMF के एक अनुमान के अनुसार यदि मौजूदा रुझान जारी रहता है तो साल 2070 तक का आबादी 30% तक कम हो सकती है। ये बदलाव कार्य क्षमता को कम कर सकता है, विकास को धीमा कर सकता है और सार्वजनिक वित्त पर दबाव बढ़ा सकता है। दूसरी चुनौती जलवायु परिवर्तन, परंतु ये एक अवसर भी प्रस्तुत करता है। उनके भाषण में उद्धृत विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुमान है कि रिन्यूएबल ऊर्जा में निवेश और समुद्री संसाधनों का सतत दोहन साल 2030 तक मॉरिशस में 32,000 तक नई

0: नौकरियां पैदा कर सकता है। बैंक ऑफ मॉरिशस की गवर्नर उन भू राजनीतिक तनावों का भी उल्लेख करती है जो छोटी अर्थव्यवस्था में व्यापार और निवेश को बाधित कर सकते हैं। और अंतिम चुनौती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक ऐसी तकनीक जो उनके अनुसार उत्पादकता, नौकरियों और आर्थिक मॉडलों को बहुत तेजी से बदल सकती है। प्रिसिला मतुगा टाकू के लिए इन सब का समाधान टिकाऊ सार्वजनिक का वित्त, मूल्य और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के साथ साथ कौशल, नवाचार और संस्थानों की अनुकूलन क्षमता में निवेश से होकर गुजरता है।
1: कार्गो हैंडलिंग कॉरपोरेशन की इक्विटी को मर्क और एमएससी के लिए खोलने की योजना अब एक ठोस चरण में पहुंच रही है। प्रधानमंत्री दफ्तर के साथ हुई बातचीत के बाद अगला कदम एक ट्रांजैक्शन एडवाइजर की नियुक्ति होगा, जिसका मुख्य काम इस ऑपरेशन में शामिल संपत्तियों का मूल्यांकन करना होगा। प्रस्तावित ढांचे के तहत उचित जांच पड़ताल और सुप्रशासन नियमों का पालन करते हुए निजी साझेदारों को 40% तक की इक्विटी देने की योजना है। कार्गो हैंडलिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए नई व्यवस्था 2027 की शुरुआत तक लागू करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके साथ ही नए क्रेन्स की खरीद के लिए 2.7 बिलियन रुपए से ज्यादा का निवेश किया जा रहा है। शैली नियबन, नियमा नारायण रेड्डी।
2: काफी समय से कई सरकारें इस रणनीतिक साझेदारी की तलाश में थी ताकि हमारे बंदरगाह को और बेहतर बनाया जा सके, उसे अधिक मजबूत और परिस्पर्धी बनाया जा सके और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देकर पोर्टवीस में और अधिक जहाजों को आकर्षित किया जा सके। अब देखना यह है कि यह साझेदारी हमारे बंदरगाह की क्षमता को दुगना करने के लिए किस तरह की व्यवस्था लेकर आती है और क्या इससे नए ग्राहक भी आकर्षित होंगे। पोर्टवीस का बंदरगाह पहले 9 मीटर गहरा था, जबकि अब इसकी गहराई 15 मीटर तक पहुंच गई है। इससे लगभग 400 मीटर लंबे और 24,000 टीवी की क्षमता वाले बड़े जहाजों की भी आकर्षित करने की संभावना है। हमारे पास अच्छी बंदरगाह क्षमता है, लेकिन फिलहाल उसका पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मेरा मानना है कि यह रणनीतिक साझेदारी हिंद महासागर क्षेत्र में हमारे बंदरगाह के लिए नई सुविधाएं और अतिरिक्त मूल्य ला सकती है।
1: मॉरिशस में एग्रीकल्चरल सर्विसेज के अनुसार मई और जुलाई महीनों के बीच इकट्ठा किए गए फलों और सब्जियों के 150 सैंपल्स में से लगभग 30% में ऐसे कीटनाशक पाए गए हैं जिनकी उस खास फसल के लिए सलाह नहीं दी गई थी। साथ ही निगरानी मजबूत करने के लिए जल्द ही 4 नए नियम लागू किए जाएंगे। अधिकतम अवशेष सीमा, स्थानीय और आयातित उपज की सैम्पलिंग, कीटनाशकों का मिश्रण और उनका इस्तेमाल तथा कृषकों का प्रशिक्षण और सर्टिफिकेशन। एग्रीकल्चरल सर्विसेज के अधिकारियों के अनुसार प्रथम नियम खास तौर पर इसलिए लागू किया जाएगा ताकि अधिकतम अवशेष सीमा से ज्यादा मात्रा होने पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। तमारे में कल एक जानलेवा सड़क हादसा पेश आया। दक्षिण अफ्रीकी मूल की 58 वर्षीय एक महिला ने अपने 4x4 पर से नियंत्रण खो दिया, जिससे गाड़ी बगल में जा टकराई। महिला गंभीर रूप से घायल हुई और बचाव टीमों की कोशिशों के बावजूद उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू की है। उधर दक्षिण में पोना चुगैल पर घूमने निकला भारतीय मूल का 45 वर्षीय एक व्यक्ति खाड़ी से नीचे गिर गया। जानकारियों के मुताबिक वो सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था। नेशनल कोस्ट गार्ड और पुलिस हेलीकॉप्टर की टीमों की कोशिशों के बावजूद कल उसका पता नहीं लगाया जा सका और आज तलाश कार्रवाइयां जारी रखी जा रही हैं। वर्तमान तराशा खबरों की ओर। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में शनिवार शाम को एक पार्क के करीब 8 हमलावरों ने अंधाधुन लोगों पर गोलियां चलाई। 17 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि इस हमले के कुछ ही घंटे बाद कल सुबह केप टाउन में किए गए इसी प्रकार के एक और हमले में 11 लोगों ने जान गंवाई। इनके पीछे आपराधिक गुटों के बीच झगड़े का कारण बताया जाता है। उधर बरतानी काउंटर टेररिज्म पुलिस निकल पश्चिमी यूके में एक एयरबेस के पास

पांच संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया जिन पर एक आतंकवादी हमले की योजना बनाने का शक किया जा रहा है। ये लोग तीन गाड़ियों में एयरबेस की तरफ जा रहे थे जिनमें विस्फोटक पाए गए हैं। इस एयरबेस का इस्तेमाल मुख्य रूप से अमेरिकी वायुसेना द्वारा किया जाता है। चलिए जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत पूर्व से आ रहे बादलों का असर हमारे इलाके पर पड़ रहा है। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, आज सुबह लगभग देश भर में बादल घिरे रहेंगे, रह रहकर बारिश होगी। दिन के दौरान पश्चिमी इलाकों पर बारिश रह रहकर तेज हो सकती है और बादलों की गरजने की भी संभावना है। रात के दौरान आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा। हवा पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रभाव रेखा के परे समंदर खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिमी समंदर में 2.50 मीटर तक की लहरें उठेंगी। दो समंदर में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान सैंडल प्लाटो पर न्यूनतम 15 से 17, अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस। साहिली इलाकों पर न्यूनतम 19 से 21, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 5:54 पर सूर्योदय हुआ, शाम को 6:07 पर सूर्यास्त होगा।

0: समाचारों के आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सेफ सिटी कैमरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजियां शामिल करके सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का पता लगाने की क्षमताएं बेहतर करने का लक्ष्य तय किया गया है। अमेरिकी बाजार में मॉरिशस की चीनी के लिए अतिरिक्त 813 मेट्रिक टन रॉ वैल्यू तय की गई है। मॉरिशस एग्रीकल्चरल सर्विसेज के अनुसार मई और जुलाई महीनों के बीच इकट्ठा किए गए फलों और सब्जियों के 150 सैंपल्स में से लगभग 30% में कीटनाशक पाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में दक्षिण अफ्रीका में हुए सिलसिलेवार गोलीबारी में 27 लोगों की मौत। देश विदेश की नई खबरों के साथ ये मुख्य समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। इसको आप तक पहुंचाने में यूसुफ हमारे साथ रहे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play and NBC.mu.
0: शोक समाचार सुनिए। ब्रांच रोड पोंब्लांग फ्लाक में 52 साल के 52 years old श्री दीपक शिवनारायण जो मास नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे इनके मकान ब्रांच रोड पोंब्लांग फ्लाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौनवास की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। जगनारायण रोड मेबर्ग में 65 साल की 65 years old श्रीमती दुर्पति गंगा बिसुन पैदाशी नाम गुरा जो सती नाम से ज़रा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 3 बजे इनकी अर्थी आज दिन के 3 बजे इनके पति श्री सिवन गंगा बिसुन के मकान जनारायण रोड मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तो वो मेबर्ग की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। मोसेलमा गाफेल ओशेते अरूज में 71 साल के 71 years old श्री दमालिंगम सामी जो पानामा नाम से ज्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के दो बजे इनकी पत्नी श्रीमती सरस्वती सामी के मकान मोसेलमा गाफेल ओशेते अरूज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पोंब्लांग की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। रॉम्प्ले मोआ मोदाल बेयमी 72 साल की 72 years old श्रीमती ज्ञानती सिटी ऑफ पैलेसेस पैदाशी नाम दुखी जो लीलावती नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। की अर्थी आज दिन के 1 बजे के मकान रॉम्प्ले मोआ मोदाल बेयमी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेनमानियों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। प्रिंटानियर लेन सेंट एन फ्लाक में प्रिंटानियर

लेन सैतान फ्लैक में 72 साल की 72 ईयर्स ओल्ड श्री रामदेव कुंजा जो वीर नाम से जरा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी आज दिन के ढाई बजे इनके मकान पैतानिया लेन सैतान फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोंचिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। दुलाव लेन मेबर्ग में 57 साल की 57 ईयर्स ओल्ड श्रीमती धनवंती बंगारू पिताशी नाम बुधनुआ जो रीता नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के ग्यारह बजे इनके मकान दुलौलेन मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोंबो मेबर्ग की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 11 AM। क्लेफो नंबर दो वाक्वामी 65 साल के 65 ईयर्स ओल्ड श्री श्याम गजाधर जो रोशन नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और पहले मार्केटिंग बोर्ड के कर्मचारी थे इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन की साढ़े बारह बजे इनके मकान क्लेफो नंबर दो वाक्वा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 12:30 PM। अवेन्यू कालीमाई पालमा कथोबोन में 71 साल के 71 ईयर्स ओल्ड श्री कृष्ण पलत जो नंद नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के डेढ़ बजे इनके मकान अवेन्यू कालीमाई पालमा कथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 1:30 PM। श्रीमती दिव्या ग्लेन पॉग वाक्वामी 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड श्री बाला सुब्रमण्य पति जो किसना नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सुबह दस बजे की पत्नी श्रीमती जेंसी पति के मकान दिव्या गली क्लेन पॉगवाक्वा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सोल्फेरिनो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 10 AM। नथुआ रोड थियोंगुडलैंस में 67 साल की 67 ईयर्स ओल्ड श्रीमती स्वस्ति परेश पैदाशी नाम पुनाए जो स्वस्ति मादाम कोंगो नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के बारह बजे इनके बेटे श्री मनीश्वर परेश के मकान नथवा रोड थियोंगुडलैंस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंस की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:00 PM। रॉयल रोड मोफिया चिल स्नो वाइट सुपर मार्केट के पास 73 साल के 73 ईयर्स ओल्ड श्री जन्मजय मुतुजी जो गासो नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के ग्यारह बजे इनके भाई श्री गजन मुतुजी के मकान रॉयल रोड मोफिया चिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेंचिलिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 11 AM। सुबाची रोड बोनाकई में 56 साल के 56 ईयर्स ओल्ड श्री रवीन जमना जो मुनू नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और NTC के चालक थे इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के साढ़े बारह बजे इनकी पत्नी श्रीमती दीपा की सुंदुयाल जमना के मकान सुबाची रोड बोनाकई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोंचिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 12:00 PM। महात्मा गांधी रोड थ्वाबुचिक थ्रियोले में 84 साल की 84 ईयर्स ओल्ड श्रीमती लीलावती गुलजार पिताशी नाम केवल जो मामा सुदेश नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के ढाई बजे इनके मकान महात्मा गांधी रोड थ्वाबुचिक थ्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए

ministry yole kishmashan bhumi le jaye jayegi cremation today at 2:30 p.m. शोक में रुबिन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।

ऑलरेडी 6:56 बस हमारे जाने का टाइम आ गया है और चलते चलते बस आपसे यही कहेंगे जस्ट बी वेरी केयरफुल ऑन द रोड ड्राइव केयरफुली और आपका दिन एकदम शुभ हो मंगलमय हो थोड़ी देर में पूनम के साथ मॉर्निंग बीट टेक केयर बाय बाय.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: गुड मॉर्निंग, 7:04 हो चुके हैं। क्या हाल चाल है हमारे प्यारे प्यारे दोस्त। हाँ, मुझे पता है कि आज आप हमारे सारे बच्चे इस समय तक निकल चुके होंगे और कुछ बस निकलने वाले होंगे क्योंकि आज से शुरू होने जा रहे हैं मेजर्स एग्जाम्स। तो बच्चा पार्टी, ऑल द वेरी बेस्ट। आप सब बेस्ट ही हो। जो पढ़ा है उस पर पूरा भरोसा रखना, आराम से पेपर पढ़ना, जो आता है उसे पूरे कॉन्फिडेंस से लिख कर आना। और पेरेंट्स, मुझे पता है कि आपकी जो टेंशन है वो जेन्युइन है, लेकिन आज बच्चों को टेंशन नहीं, बस आपका कॉन्फिडेंस चाहिए। बस आप ये

कहना, उन्हें एक हगी करना, प्यार देना, उनको कुछ नहीं कहना, क्योंकि उन्होंने जो करना था पूरे साल में वो कर लिया है। और अब ये टाइम है आप सबका और बाकी सबका। स्वागत है आरएम2 रेडियो मस्ती में। मैं हूँ आपके साथ पूनम, मेरे से पहले थी आपके साथ नीतिशा, जिन्होंने आज सबको बहुत सारा हंसाया और बहुत सारा गुदगुदाया और बहुत सारे प्यारे प्यारे गाने सुनाए। अब चाहते हैं थोड़े से मस्ती वाले गाने, और वो स्टूडेंट्स जो अभी भी रट्टा मार रहे हैं उनके लिए हम कहेंगे अब तो रट्टा

0: रेडियो मस्ती।
1: सुबह के 7:11 हो चुके हैं दोस्तों, और सुबह से लेके रात तक हमारी जिंदगी ना जाने कितने पल और कितनी यादें लता मंगेशकर जी की गानों के साथ बनी हुई है। तो आज है उनका जन्मदिन, वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी हर पीढ़ी के साथ है। उन्हें जीवन भर कहते हैं माँ सरस्वती की आवाज़, ऐसा सम्मान मिला। और देखिए, एक बहुत ही खूबसूरत संयोग रहा, जिस समय उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा वो भी सरस्वती पूजा के आसपास का ही पावन समय था। आज उनके जन्मदिन पर हम उन्हें बहुत याद कर रहे हैं और उनको बहुत ही प्यार से सम्मान दे रहे हैं। और लता जी की ये जो खूबसूरत आवाज है, उसका एक प्यारा नगमा ना हो ऐसे कैसे हो सकता है। सबसे पहले तो हम पूरी RMT रेडियो मस्ती की तरफ से उन जिनका भी आज बर्थडे है उनको भी विश करना चाहेंगे, और हम यही कहना चाहेंगे स्पेशली हमेशा जैसे हम करते हैं

0: RM2
1: Radio Musti.
2: Moments that matter with Sikom.
0: जो
3: लम्हा हमनी खातिर मायना रखेला समय के रहत हमनी के चाही ओकर खातिर तैयारी करे के एक दिन ऐसन आए जब काम की गति धीमा हो जाए और फिर पूरा थम जाए तब जीवन के एक नवा अंदाज में जिए के पड़ी जोन आज दूर लौकता काल वो उतना दूर नहीं रही पर तोहर आर्थिक भविष्य हमेशा जरूरी रही। सिकुम के पर्सनल पेंशन योजना और इन्वेस्टमेंट प्लान्स के संगे अपन बचत पर खुद नियंत्रण रखिया और अपन भविष्य के बेहतर तैयारी करा। सिकुम लगे तो हर गोल्स और इन्वेस्टमेंट के टाइम पीरियड के अनुसार अलग अलग समाधान मौजूद बाटे। सिकुम तो हर आज काल और उस सब खास लम्हा खातिर जो मायना रखेला। जस्ती जानकारी खातिर हमनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर या सिकुम.mu पर जाइह। इमे नियम आ शर्त भी लागू बा। सिकुम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
2: इट वॉज मोमेंट्स दैट मैटर विद सिकुम।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: बेबी को बेस पसंद है।
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
3: 7:27 हो चुके हैं दोस्तों, और आप जो घर से निकल चुके हैं उनको तो हम यही कहेंगे भाई साथ में अपने अम्ब्रेला लेके जाना। थोड़ा सा मौसम बड़ा सुहाना तो है, पर ठंडा भी है, बारिश भी हो रही है। और अभी मुझे एहसास हो रहा है कि भाई जब ऐसा वेदर होता है ना तो आपको ऐसा लगता है कि कोई गर्म गर्म चाय मिल जाए, कोई कॉफ़ी दे दे। पर ठीक है, कोई बात नहीं, अगर कैरी नहीं किया तो जहाँ भी पहुँचेंगे वहाँ पर ज़रूर पी लीजिएगा। पर आज एक और स्पेशल डे है, यानी कि आज हमारे एक एनर्जेटिक रणबीर कपूर का बर्थडे है, जो कि डांस में तो एक सुपरस्टार है। और इतनी प्यारी सी उनकी वाइफ, उनका बिटिया रानी इतनी क्यूट सी है, और जब भी वो डांस फ्लोर पर आते हैं चाहे मूवी पे आते हैं, सब लोग उनको चाहते हैं कि मतलब वो सामने रहें। ये मतलब इतने सालों का जेनरेशन टू जेनरेशन चलना और साथ में इतने ज़्यादा मतलब फैमिली के सभी लोग एक्टर्स होना है, कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। पर उन्होंने कभी नहीं रियलाइज़ कराया, वो बहुत ही सिंपल हैं और बहुत ही अच्छे एनर्जेटिक एक डांस कहते हैं ना डांसर भी हैं और साथ में एक एक्टर भी हैं, और एक कहते हैं ना अच्छा सा जो हस्बैंड होता है ना वैसा वाला उनका टेस्ट भी है। तो भाई हम तो यही कहेंगे अपनी ज़िंदगी में वो आगे बढ़ें, हमेशा खुश रहें, अपने परिवार के बीच में रहें। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनका गाना ना मैं चलाऊं और उस पे हम सब डांस ना करें। तो चलिए जी, जो भी इस प्रोग्राम को सुन रहा है हम यही कहेंगे, एक बार तो डांस बनता है।
1: मॉर्निंग बीट, A good beat for your morning show. James.
2: RM2, Radio Musti, in the mix.

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the Flow Expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: 7:40 हो चुके हैं। अच्छा जी, अब जरा मैदान का हाल भी जान लेते हैं कि कौन जीता, कौन छाया और स्पोर्ट्स की दुनिया में क्या चल रहा है, ये सब बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अरविंद। गुड मॉर्निंग अरविंद आपको।
4: गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग आरएन टू लिसनर्स। द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। प्रीमियर लीग फुटबॉल के बिना वीकेंड सप्ताहांत सूना सूना लगता है, पर सुनने के लिए और सुनाने के लिए खेल जगत में बहुत कुछ है। मानचित्र

मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ फैसले का क्या असर होगा? 115 चार्जेस सिटी के खिलाफ, फाइनेंशियल रूल ब्रीचेस सिटी के खिलाफ, अब पनिशमेंट सजा क्या होगी, ये कभी सभी लोग जानने के लिए बेताब हैं। बीबीसी स्पोर्ट्स के अनुसार आरोप बहुत सीरियस हैं, बहुत संगीन हैं। ऐसे में पॉइंट्स डिडक्शन अंक निकाले जा सकते हैं, पर मैनचेस्टर सिटी अपील करेगा, इसलिए अभी के लिए कोई फैसला नहीं है। फाइनेंशियल ब्रीच कौन सी है? फाइनेंशियल ब्रीच क्या है? ये वित्तीय उल्लंघन, इसका सीधा सा मतलब है जब कोई फुटबॉल क्लब अपनी कमाई से ज्यादा पैसा खर्च करता है या फुटबॉल एसोसिएशन के तय किए गए पैसों के नियमों को तोड़ता है। यर्गन क्लॉप का दूसरा मैच और पहली हार, जर्मनी की टीम 1-0 से हार गई ग्रीस के खिलाफ। हम यूईएफए नेशंस लीग की बात कर रहे हैं, जर्मनी की हार, वो भी ओस्बर्ग जर्मनी में। इसी ग्रुप में नेदरलैंड्स की जीत हुई, पर लीडर है ग्रीस दूसरी जीत के साथ क्वालिफिकेशन के करीब। डेनमार्क और पोर्टुगल भी जीत पाए, अर्लिंग अलोन का गोल काफी नहीं रहा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो अनयूज्ड सब्स्टिट्यूट रहा, यानी उसे खेलने का मौका नहीं दिया गया। सो जर्मनी की हार, इसमें जर्मनी के खिलाफ ग्रीस ने 1-0 से मैच जीता। नेदरलैंड्स के लिए मर्डिंक 2-1 गोल स्कोर कर पाया, सो नेदरलैंड्स 2 सर्बिया 1, ग्रुप 4 में नॉर्वे 1 पोर्टुगल 2 डेनमार्क 2 वेल्स 0। अन्य मैचों में जिब्राल्टर 0 अंडोरा 0, लिथुआनिया 1 अजरबैजान 1, ऑस्ट्रिया 3 कोसोवो 1, इजराइल की हार हुई, रिपब्लिक आयरलैंड ने उसे 3-0 से हराया। आज बेल्जियम का मुकाबला फ्रांस से होगा, तुर्की इटली, जॉर्जिया वर्सेस यूक्रेन, आर्मेनिया मोंटेनेग्रो, लाटविया साइप्रस, नॉर्दर्न आयरलैंड हंगेरी, रोमानिया बोस्निया और स्वीडन का मुकाबला पोलैंड से। इंटरनेशनल फ्रेंडलीज मैच भी खेले गए, कनाडा ने चिली को 1-0 से हराया, मेक्सिको और कोलंबिया के बीच मैच ड्रो 1-1, चीन 0 न्यूजीलैंड 3, बोलिविया 0 पाराग्वे 2। लिवरपूल का स्ट्राइकर मिस्टर नाजुक फिर से घायल हो गया है, मिस्टर नाजुक मतलब इंजुरी पर इंजुरी, अलेक्जेंड्र इसाक वापस आ गया है और इंजुरी की भी वापसी माइनर इंजुरी कहा जा रहा है। स्वीडन के लिए पिछले मैचों में 1 गोल स्कोर किया था। कोडी गाक्पो को भी चोट लगी है, एंकल इंजुरी। मैनचेस्टर यूनाइटेड से ब्रूनो फर्नांडेज भी इंजुरी लिस्ट में है, उसके साथ ही डोगो के साथ। क्रिकेट, विराट कोहली की ओर से एक और विराट इनिंग्स, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 139 रन नॉट आउट। वनडे इंटरनेशनल में 15,000 रन पार कर चुका है कोहली, सचिन तेंदुलकर के बाद 15,000 रन पार करने वाला पहला वो बैट्समैन है। 8 विकेट से टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हराया पहला वनडे इंटरनेशनल मैच में। शुभम गिल भी सेंचुरी पूरा कर पाया, पर मैन ऑफ द मैच रहा कुलदीप यादव, 4 विकेट लेकर वेस्ट इंडीज को लुढ़काया। वेस्ट इंडीज की ओर से जस्टिन ग्रीव्स की सेंचुरी रही, भारतीय दौरे पर वेस्ट इंडीज की टीम 3 ओडीआई यानी वनडे इंटरनेशनल मैच खेलेगी। एशियन गेम्स क्रिकेट टूर्नामेंट में आज टीम इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, जापान में बारिश की संभावना है, मैच वॉश आउट भी हो सकता है, अगर वॉश आउट हुआ तो टीम इंडिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई। टेनिस, टीम यूरोप ने लावर कप जीता टीम वर्ल्ड को हराकर, अलेक्जेंड्र वेरेव टीम यूरोप में था, लर्नर चेन को हराकर वेरेव ने टीम यूरोप को टाइटल दिलाई। टीम वर्ल्ड में कार्लोस अल्काराज भी था। इधर मोंट्रियल के वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप में अपने परफॉर्मेंस से निराश है किम लेको, बहुत तैयारी और उम्मीद के साथ वो वहां गई थी, बीच रेस में हुई घटनाओं के कारण वो पिछड़ गई। आज सुबह अलेक्जेंड्र मेयर की बारी थी, हमारा हमवतन 2 घंटों तक रेस में आगे था पर अंत में रेस पूरा नहीं कर पाया। उल्लेखनीय है कि मोंट्रियल कनाडा में बसे मॉरिशस के बहुत लोग हमारे साइक्लिस्ट का हौसला बढ़ाने के लिए सड़क के किनारे थे, मॉरिशस का नेशनल फ्लैग हमारा चौरंगा लेकर आए हुए थे। रीजनल स्तर पर आर्सेनल में आयोजित एसएसआर मेमोरियल फुटबॉल मैचेस में कल आर्सेनल वेटरन और पॉम्पलेमूस एससी की जीत, पेनाल्टी पर आर्सेनल वेटरन की जीत हुई जबकि पॉम्पलेमूस ने रोशनॉ बोल्टन सिटी को हराया। इधर रोशनॉ स्पोर्ट्स क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट में रोशनॉ यूनाइटेड 7

लोलो हाइपर की तरफ से आप सबको मिलेगा जिनका भी बर्थडे है। बिल्कुल अपना मैसेज भेजना मत भूलिएगा। आप भी, हम बस दो मिनट में मस्ती करने वाले हैं। फटाफट से नंबर भेजिए उनका जिनके साथ मस्ती करनी है।

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: क्या बात है, क्या बात है भाई। जिस टाइम का इंतजार सभी को होता है वो टाइम आ गया है और हमारे को हमारा एक देखते हैं विनर बनेगा या कौन, या हमको वैसे ही जाना पड़ेगा। चलिए जानते हैं कौन है लाइन पे। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो जी, सर आपको आवाज़ आ रही है? हेलो, अरे ऐसा ना हो। हेलो जी, हेलो, नहीं क्या करें भाई, हम तो बहुत ट्राई करते हैं, क्यों फ़ोन कट कर देते हो, हमें वेट तो करने दिया करो। चलिए भाई कोई बात नहीं, आज है यशवीर जी का बर्थडे और आज उनके मम्मी, उनकी सासू माँ, उनके वाइफ सभी विश कर रहे हैं उनको, और बस इतना ही कहना चाहते हैं कि विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे। और हम तो यशवीर आपको अपनी पूरी टीम की तरफ से भी कहेंगे, आपको लोलो हाइपर की तरफ से एक बहुत प्यारा गिफ्ट वाउचर मिला है, तो आपको यहाँ पर आना है सुबह 9 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक, कभी भी आ सकते हैं। और पर हमारी तरफ से आपके लिए स्पेशली एंड लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से ये

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2 Radio Masti.
0: Radio Masti.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Masti.
4: टाइम चेक सुबह के 8 बज रहे हैं. अब सुनते हैं भोजपुरी समाचार. नमस्ते, पेश है भोजपुरी के समाचार. सबसे अगते ई दुखद खबर. लाबांचा में आज फजर के 7:18 के करीब एगो गंभीर सड़क दुर्घटना पेश आयल बाटे. एगो बस और एगो लॉरी के बीच टक्कर होल बा. कई जना के घाव लगे के खबर बाटे. इस संबंध में अभी खातिर जस्ती स्पष्ट जानकारी नहीं मिलल बाटे. तवांग में काल एगो जानलेवा सड़क हादसा पेश आयल. दक्षिण अफ्रीकी मूल के 58 बरिस के उम्र के एगो महिला अपन 4x4 से नियंत्रण खो दिलक आ जगह से वो गाड़ी बगल में जाके टकरा गल. महिला गंभीर रूप से घायल होल आर बचाव टीम लोग के कोशिश के बावजूद अस्पताल में ओकर मौत हो गल. ई मामला में पुलिस जांच शुरू कर ले बाटे. उधर दक्षिण में पूना चगल परी घूमे खातिर निकलल भारतीय मूल के 45 बरिस

0: की उम्र के एगो आदमी खाड़ी से नीचे गिर गल। जानकारी के मुताबिक उ सेल्फी लेवे के कोशिश करत रहल। नेशनल कोस्ट गार्ड और पुलिस हेलीकॉप्टर के मदद से ओकरा खोजे के एगो कार्यवाही शुरू करल गल, जेकरा आज जारी रखल जाता। सेफ सिटी कैमरा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टेक्नोलॉजी शामिल करके ई नेटवर्क में एक नवा पड़ाव पार करे के कोशिश करल जाता। सार्वजनिक परिवहन मंत्री उस्मान महमूद के अनुसार नवा टेक्नोलॉजी के जस्त इस्तेमाल करके सड़क सुरक्षा नियम के उल्लंघन के पता लगावे के क्षमता जस्त अच्छा करे के लक्ष्य तय करल गल है। मौजूदा प्रणाली की अपग्रेड हुए के संगे AI के माध्यम से सड़क परिवर्जित या फिर खतरनाक व्यवहार के बारे में आसानी से पता लगावल जा सकी। जैसे तेज रफ्तार से गाड़ी चलावे के, बिना सेफ्टी बेल्ट पहने ड्राइविंग करे के, या फिर गाड़ी चलावे बखत फोन पर ही बतियावे के, या खतरनाक ड्राइविंग या फिर रेड लाइट पार करे के। अमेरिकी बाजार में मॉरिशस की चीनी खातिर अतिरिक्त 813 MTRV यानी मेट्रिक टन रॉ वैल्यू तय करल गल है। वाशिंगटन 2027 के वित्तीय बरिस खातिर अमेरिकी टैरिफ रेट कोटा के तहत मॉरिशस के देवल जाए होला लोकेशन बढ़ेले बा। ई वित्तीय बरिस ई बीफे 1 अक्टूबर से शुरू हो। इस तरह से मॉरिशस के कोटा 12,910 से बढ़ा के 13,723 मेट्रिक टन रॉ वैल्यू करल जाता, यानी 6.3% की बढ़ोतरी। ओजेम्पिक, वेगोवी और मुंजारो ऐसन इंजेक्शन है जे वजन घटावे के खातिर असरदार होवे के कारण तेजी से लोकप्रिय हुआ था, खासकर कई गो मशहूर हस्ती लोग और इन्फ्लुएंसर लोग के बीच। शुरू में टाइप 2 डायबिटीज़ और मोटापा के इलाज खातिर इस्तेमाल करल जाए होला ये सब दवाई। भूख और दूसर चीज के असर डाल के काम करेला। ओजेम्पिक हाल ही में मॉरिशस में उपलब्ध होए लगल बा। विशेषज्ञ लोग के अनुसार ओकर में GLP-1 नामक एगो हॉर्मोन रहेला जे शरीर में प्राकृतिक रूप से पावल जाएला और ई ब्लड शुगर के स्तर और भूख के नियंत्रित करे खातिर मदद करेला। हालांकि एगो जरूरी बात यह है कि ई इलाज खाली डॉक्टर की सलाह पर ही उपलब्ध हो के चाहिए और एक खातिर सख्त मेडिकल देखरेख की भी आवश्यकता है। दूसर देश की खबर में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में शनिवार सांझ के गोबार के करीब 8 हमलावर लोग अंधाधुन वहाँ के आदमी पर ही गोली चलेलन जा 17 जना की मौत की खबर बाटे, जबकि ई हमला के कादगो घंटा बाद काल फजर के केप टाउन में करल गल यही प्रकार के गोवार हमला में 11 जना के मौत की खबर बाटे। एकर पाछे आपराधिक गुट लोग के बीच झगड़ा के कारण बतावल जाता। ते रहल भोजपुरी के समाचार, तोहरे ध्यान खातिर धन्यवाद।
1: Morning beat. A good beat for your morning show. James.
2: RM2, Radio Musty in the mix.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: 8:08 हो चुके हैं दोस्तों। अच्छा जी, खेल का मैदान का तो हाल आप जान चुके हैं, अब जरा बाहर के आसमान का मूड भी पता कर लेते हैं। धूप साथ देगी या बादल कुछ और सोच बैठे हैं, तो पूरा हाल लेकर आई हैं विधिमा। गुड मॉर्निंग विधिमा।
0: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स।
3: ऑन इट टू स्विनर्स।
4: आम हालत पूर्व से आ रहे बादलों का असर हमारे इलाके पर पड़ रहा है। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान। आज सुबह लगभग देश भर में बादल घिरे रह सकते हैं, रह रहकर बारिश होती रहेगी। दोपहर बाद पश्चिमी इलाकों पर रह रहकर बारिश तेज हो सकती है और बादलों की गरजने की भी संभावना है। रात के दौरान आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा। हवा पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाह रेखा के परे समंदर खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिमी समंदर में 2.50 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्रांतों पर न्यूनतम 15 से 17, अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस। साहिली इलाकों पर न्यूनतम 19 से 21, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 5:54 पर सूर्योदय, शाम को 6:07 पर सूर्यास्त होगा।
0: Your weather forecast on RM2
1: Radio Musti.
2: Thank you, Aditi.
5: Les prix malins débarquent chez Winners. Du 25 septembre au 8 octobre, profitez de super offres sur une sélection de produits du quotidien dans votre Winners préféré. Les 500 grammes de Boneless Mutton Trunk Greenfield à 334,95 € et à l'achat d'une penderie d'1m60 de haut, gagnez 150 points WIV. De nombreuses offres vous attendent dans le rayon. Alors remplissez votre caddie à prix malin et profitez-en chez Winners. Retrouvez notre brochure sur winners.me.
6: On est tous Winners.

0: आर एम टू
1: रेडियो मस्ती
2: पाजिया पांजिया
3: पनीर पनीर
2: नो पाजिया पांजिया
3: पनीर पनीर
2: नो पांजिया
3: पनीर
2: वी साइन पनीर पाजिया पांजिया
3: पनीर पांजिया.
4: Découvrez la nouvelle gamme 100% veg de KFC avec le succulent paneer patty dans votre Boxmaster ou burger. Savourez toute la richesse du paneer, croustillant à l'extérieur et fondant à l'intérieur.
3: Paneer paneer. KFC.
5: जब बात यार्ड सेल की होती है तो हम थ्वासिसा की ही बात करते हैं. जब बात जबरदस्त ऑफर्स की होती है तो हम थ्वासिसा की बात करते हैं. और जब बात बहुत कम कीमतों की होती है तो थ्वासिसा की ही बात होती है. तो तैयार हो जाइए क्योंकि 1, 2 और 3 अक्टूबर को ग्रैंड थ्वासिसा यार्ड सेल होने जा रहा है लोजी पार्क जिनफाई रिश्ते में. वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, फोन, लैपटॉप,

0: अप्लायंसेस पर 80% की डिस्काउंट, यानी शॉपिंग का एक जबरदस्त मौका। और वहां पहुंचना भी बहुत आसान है, गॉजिनो से फ्री शटल सर्विस अवेलेबल होगी। तो डेट अच्छी तरह याद रखना, 1, 2 और 3 अक्टूबर।
1: Quand sa digestion-là paraît difficile.
2: M'en prends une taille, me bois. Taille! Un tas probiotique et ferment actif pour aider sa digestion-là.
3: Yoplait.
4: Un produit made in Maurice.
5: भविष्य खातिर हमनी लगे हमेशा कोनो न कोनो योजना रहेला। लैका के पढ़ाई, एगो वायाज, घर के रेनोवेशन, यानी एगो पूरा जीवन जिए के। सिकुम अपन प्रस्तावित इन्वेस्टमेंट प्लान्स के माध्यम से तुहरा तुहर आर्थिक भविष्य के विस्तार पर कोसे ये करी। आर जब रिटायर हुए के बखत आए त सिकुम के निजी पेंशन योजना से सकबा जीवन के ई नवा पराव के नवा सांस दे। तुहर भविष्य तुहर आज पर निर्भर करेला, इनकरा आज ही से तैयार करे के चाहे। जस्ती जानकारी खातिर हमनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर या sikkim.mu पर जाय ह। इमे नियम आ शर्त भी लागू बा। सिकुम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
6: सिकुम ग्रुप, ए लाइफ टाइम कमिटमेंट।
7: RM2
8: रेडियो मस्ती।

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: आठ बजकर 23 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम मॉर्निंग बीट के साथ। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, भागम भाग लगी हुई है। कई लोग अभी ट्रैफिक में होंगे, फंसे होंगे, और कई लोग इतना मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। कई लोग कह रहे होंगे, अरे मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ है, मेरा ये कहाँ है, मेरा लंच बॉक्स कहाँ है। ये सब घर का, सुबह का, सबके घरों का हाल ऐसे ही होता है। तो हम तो आपको बोलेंगे, इस हाल में रहो, इंजॉय करो भाई। ये वाला हाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट होते हैं आपके मैसेजेस, जो कि हम लेकर आ चुके हैं। भी देसी जी साथ दे रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। थैंक यू सो मच आपका। आकाश सिंह जी का आज बर्थडे है और उनकी वाइफ सारिका विश कर रही है, और उन्हें यही कह रही है कि ये हमेशा खुश रहो, बहुत लंबी जिंदगी हो, मेरे साथ हमेशा रहो। क्या बात है, आज हैप्पी बर्थडे जी। आज आदर्श जी का भी बर्थडे है और आज वो 30 ईयर्स के हो गए हैं। वेंटी मम्मी आपको विश कर रहे हैं और बोल रहे हैं, तुम बहुत प्यारे बेटे हो, हमेशा खुश रहो। आज बर्थडे है एक कुलीग सरवन सिंह हलकौरी जी का। सुनीता प्रेम जी आपको विश कर रहे हैं और बहुत बहुत खुशियों के साथ में आपको बस इतना कह रहे हैं, हम विश तो कर रहे हैं पर बस आप बताओ पार्टी कहाँ दे रहे हो, बस बताओ जी, जिस जिसका भी बर्थडे बताओ। सेतुल जी साथ दे रही हैं और इंजॉय कर रही हैं इस प्रोग्राम को। उसके साथ में एक प्यारे से बॉस का बर्थडे है और सभी स्टाफ विश कर रहे हैं विशान कंथिया जी को, जो सभी कह रहे हैं कि इनकी लंबी उम्र हो, बहुत अच्छे बॉस हैं, हमेशा हमारा सबका ख्याल रखते हैं, इसीलिए आज उनके बर्थडे पर हम उनका ख्याल रखते हैं। क्या बात है भाई, ऐसा स्टाफ हो और ऐसा बॉस हो, हैट्स ऑफ टू यू। एंजॉय कीजिए अपने इस बर्थडे को अपने स्टाफ के साथ में, थोड़ा सा गातो वातो लेके जाना, ऐसे नहीं जाना वरना पकड़ लेना सबने। और परीक्षित साथ में है, सीमा क्यूट विहान लवली प्रिया चांद नील खुशबू सभी इंजॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, और बस इतना ही कह रहे हैं सबकी मॉर्निंग अच्छी हो। सारे जने एक ही बात कह रहे हैं कि भाई आज एग्जाम्स हैं तो सबके एग्जाम्स की शुरुआत बहुत अच्छी होनी चाहिए, मस्ती के साथ होनी चाहिए। सबको पेरेंट्स को बोल रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स की भाई टेंशन मत लो, बच्चों ने अच्छा किया हुआ है, और हम भी यही कहेंगे बच्चों ने बहुत अच्छा किया हुआ है। तो ऐसे कैसे हो सकता है, हम आपको जाने दें इसके बिना।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: ऑडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती,
2: स्पोर्ट्स न्यूज,
0: रेडियो मस्ती इन द मिक्स।
3: 8:30 हो चुके हैं और चलिए जानते हैं एक बार फिर से खेल के मैदान की सारी बड़ी स्पोर्ट्स अपडेट लेकर आ चुके हैं। गुरु अरविंद तैयार हैं। गुड मॉर्निंग अरविंद।
4: गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग आवर टू लिसनर्स। द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। प्रीमियर लीग फुटबॉल के बिना वीकेंड सप्ताहांत सूना सूना लगता है, पर सुनने के लिए और सुनाने के लिए खेल जगत में बहुत कुछ है। मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ फैसले का क्या असर होगा? 115 चार्जेस सिटी के खिलाफ, फाइनेंशियल रूल ब्रीचेस सिटी के खिलाफ, अब पनिशमेंट सजा क्या होगी, ये कभी सभी लोग जानने के लिए बेताब हैं। बीबीसी स्पोर्ट्स के अनुसार आरोप बहुत सीरियस हैं, बहुत संगीन हैं। ऐसे में पॉइंट्स डिडक्शन अंक निकाले जा सकते हैं, पर मैनचेस्टर सिटी अपील करेगा, इसलिए अभी के लिए कोई फैसला नहीं है। फाइनेंशियल ब्रीच कौन सी है? फाइनेंशियल ब्रीच क्या है? ये वित्तीय उल्लंघन, इसका सीधा सा मतलब है जब कोई फुटबॉल क्लब

0: अपनी कमाई से ज्यादा पैसा खर्च करता है या फुटबॉल एसोसिएशन के तय किए गए पैसों के नियमों को तोड़ता है। यर्गन क्लॉप का दूसरा मैच और पहली हार। जर्मनी की टीम 1-0 से हार गई ग्रीस के खिलाफ। हम यूईएफए नेशंस लीग की बात कर रहे हैं। जर्मनी की हार, वो भी उर्सबर्ग जर्मनी में। इसी ग्रुप में नेदरलैंड्स की जीत हुई, पर लीडर है ग्रीस दूसरी जीत के साथ क्वालिफिकेशन के करीब। डेनमार्क और पोर्टुगल भी जीत पाए। अर्लिंग हालैंड का गोल काफी नहीं रहा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अनयूज्ड सब्स्टिट्यूट रहा, यानी उसे खेलने का मौका नहीं दिया गया। सो जर्मनी की हार, इसमें जर्मनी के खिलाफ ग्रीस ने 1-0 से मैच जीता। नेदरलैंड्स के लिए मर्डिंक 2-1 गोल स्कोर कर पाया। सो नेदरलैंड्स 2 सर्बिया 1, ग्रुप 4 में नॉर्वे 1 पोर्टुगल 2 डेनमार्क 2 वेल्स 0। अन्य मैचों में जिब्राल्टर 0 अंडोरा 0 लिथुआनिया 1 अजरबैजान 1 ऑस्ट्रिया 3 कोसोवो 1 इजराइल की हार हुई। रिपब्लिक आयरलैंड ने उसे 3-0 से हराया। आज बेल्जियम का मुकाबला फ्रांस से होगा। तुर्की इटली, जॉर्जिया वर्सेस यूक्रेन, आर्मेनिया मोंटेनेग्रो, लाटविया साइप्रस, नॉर्दर्न आयरलैंड हंगेरी, रोमानिया बोस्निया और स्वीडन का मुकाबला पोलैंड से। इंटरनेशनल फ्रेंडलीज मैच भी खेले गए। कनाडा ने चिली को 1-0 से हराया। मेक्सिको और कोलंबिया के बीच मैच ड्रॉ 1-1। चीन 0 न्यूजीलैंड 3 बोलिविया 0 पाराग्वे 2। लिवरपूल का स्ट्राइकर मिस्टर नाजुक फिर से घायल हो गया है। मिस्टर नाजुक मतलब इंजुरी पर इंजुरी। अलेक्जेंडर इसाक वापस आ गया है और इंजुरी की भी वापसी माइनर इंजुरी कहा जा रहा है। स्वीडन के लिए पिछले मैचों में 1 गोल स्कोर किया था। कोडी गाक्पो को भी चोट लगी है, एंकल इंजुरी। मैनचेस्टर यूनाइटेड से ब्रूनो फर्नांडेज भी इंजुरी लिस्ट में है, उसके साथ ही डोगो के साथ। क्रिकेट, विराट कोहली की ओर से एक और विराट इनिंग्स। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 139 रन नॉट आउट। वनडे इंटरनेशनल में 15,000 रन पार कर चुका है कोहली। सचिन तेंदुलकर के बाद 15,000 रन पार करने वाला पहला वो बैट्समैन है। 8 विकेट से टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हराया पहला वनडे इंटरनेशनल मैच में। शुभम गिल भी सेंचुरी पूरा कर पाया, पर मैन ऑफ द मैच रहा कुलदीप यादव। 4 विकेट लेकर वेस्ट इंडीज को लुढ़काया। वेस्ट इंडीज की ओर से जस्टिन ग्रीव्स की सेंचुरी रही। भारतीय दौरे पर वेस्ट इंडीज की टीम 3 ODI यानी वनडे इंटरनेशनल मैच खेलेगी। एशियन गेम्स क्रिकेट टूर्नामेंट में आज टीम इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान। जापान में बारिश की संभावना है, मैच वॉश आउट भी हो सकता है। अगर वॉश आउट हुआ तो टीम इंडिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई। टेनिस, टीम यूरोप ने लावर कप जीता टीम वर्ल्ड को हराकर। अलेक्जेंडर वेरेव टीम यूरोप में था, लर्नर चेन को हराकर वेरेव ने टीम यूरोप को टाइटल दिलाई। टीम वर्ल्ड में कार्लोस अल्काराज भी था। इधर मोंट्रियल के वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप में अपने परफॉर्मेंस से निराश है किम लेको। बहुत तैयारी और उम्मीद के साथ वो वहां गई थी, बीच रेस में हुई घटनाओं के कारण वो पिछड़ गई। आज सुबह अलेक्जेंडर मेयर की बारी थी। हमारा हमवतन 2 घंटों तक रेस में आगे था, पर अंत में रेस पूरा नहीं कर पाया। उल्लेखनीय है कि मोंट्रियल कनाडा में बसे मॉरिशस के बहुत लोग हमारे साइक्लिस्ट का हौसला बढ़ाने के लिए सड़क के किनारे थे। मॉरिशस का नेशनल फ्लैग हमारा चौरंगा लेकर आए हुए थे। रीजनल स्तर पर आर्सेनल में आयोजित SSR मेमोरियल फुटबॉल मैचेस में कल आर्सेनल वेटरन और पॉम्पलेमूस SC की जीत। पेनाल्टी पर आर्सेनल वेटरन की जीत हुई, जबकि पॉम्पलेमूस ने रोजबॉन बोल्टन सिटी को हराया। इधर रोशनोय स्पोर्ट्स क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट में रोशनोय यूनाइटेड 7 रेड स्टार बोनाके 1 स्पोर्टिंग बॉयज रिविया जुरांपा ने 2-0 से ओलंपिक कप मालेरू को हराया। तो दैट्स इट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। चलते चलते आपको बता दें बहुत बारिश हो रही है, और जो लोग ड्राइव कर रहे हैं खासतौर पर टेक योर प्रिकॉशंस और रीच होम या फिर वर्क सेफली। हैव अ गुड वीक अहेड। और स्टूडेंट्स जो एग्जाम्स में भाग ले रहे हैं SC एंड हायर स्कूल सर्टिफिकेट, ऑल द बेस्ट, यू विल डू इट, टेक इट फ्रॉम मी। बाय बाय।
1: Bye-bye. Thank you so much, Arvind.

0: Your number one Bollywood station.
1: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
2: Milo, libère ta force.
3: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
4: Nestlé, good food, good life.
5: चार्ली चैपलिन ने जिंदगी को लेकर एक बहुत खूबसूरत बात कही थी। कहा, जिंदगी करीब से देखने पर एक त्रासदी लगती है, लेकिन दूर से देखने पर एक कॉमेडी। कभी कभी जिस परेशानियों में हम आज बहुत उलझे हुए होते हैं, कुछ समय बाद उसी बातों को याद करके हम मुस्कुरा रहे होते हैं। इसलिए मुश्किल दिनों को पूरी जिंदगी मत समझिए। ये एक जिंदगी नहीं है, वक्त बदलता है और उसके साथ बहुत कुछ बदलता है। जिंदगी में हंसना बहुत जरूरी है, जिंदगी में मुस्कुराना बहुत जरूरी है और ऐसे मोमेंट्स ढूंढने चाहिए जहां पर आप मस्ती कर सकें।
1: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
2: Milo, libère ta force.
3: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
4: Nestlé, good food, good life.
1: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
2: Milo, libère ta force.
6: Petite, on me disait ce que je devais faire. Mais moi, je voulais juste faire du sport.
2: Milo, libère ta force.
6: Parce que j'aime me surpasser, aller plus loin qu'hier.
2: Milo, libère ta force.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: आठ बज के 47 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, और बहुत सारे लोग बस ऑफिस पहुंचने वाले हैं या पहुंच चुके हैं, बस हम तो यही कहेंगे। और कई स्टूडेंट्स जो हैं क्लासरूम के पास पहुंच चुके हैं, एंट्री ले रहे हैं, और कईयों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया होगा, कईयों का थोड़ी देर के बाद होगा, यानी कि 11 या 12 बजे के आसपास भी होने वाला है। तो हम तो आपको यही बोलेंगे, थोड़ा सा अपने शोल्डर को रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा पानी पीजिए। बिल्कुल अगर हाइड्रेट होंगे तो आपको बहुत कुछ, आपके ब्रेन के अंदर बहुत आराम से सब कुछ एब्जॉर्ब होगा और अच्छे से पढ़ पाएंगे। ब्लैकआउट मत हुए, ज्यादा कॉफी मत पीजिएगा, इंजॉय कीजिएगा अपना, जो आपने पूरे साल मेहनत की है, पढ़ाई की है, उसको ऐसे वेस्ट मत होने दीजिएगा। बस रिलैक्स रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हंसते हंसते क्लासरूम से वापस आइएगा। पेरेंट्स को देखिएगा उनका जाते हुए चेहरा, क्योंकि उनके पास बहुत सारी आशाएं होती हैं आपके लिए। तो जैसा भी होगा बहुत अच्छा होगा, हम तो यही कहेंगे। हमारी पूरी RM2 रेडियो मस्ती की तरफ से आपको बेस्ट विशेस सभी को, जो ऑफिस जा रहे हैं, जिनको जिनके बिजनेसेस हैं, जिनकी मीटिंग्स हैं, हम सब आपके लिए यही दुआ करेंगे कि आप हमेशा खुश रहें और आपके जो काम है उनमें सक्सेस मिले आपको। चलिए जी, दो तीन मैसेजेस ले लेते हैं। यलेश जी साथ दे रहे हैं, रोशनी, सुमन, सुनीता और कृष्णा कोकिला साथ दे रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। ललित जी साथ दे रहे हैं यूएसए से, और एक बहुत ही प्यारी सी लिसनर का मैसेज आया है, कह रही है आज मेरी जान का बर्थडे है और हम सब उनको विश करना चाहते हैं। विद्या जी की तरफ से बेस्ट विशेज हैं, बिटिया योशिका एंड लियाना की तरफ से, एंड स्पेशली मामा की तरफ से, एंड सभी यही कह रहे हैं कि हम सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, यू आर द बेस्ट सन। क्या बात है भाई, हमारी तरफ से जिन जिन का भी आज बर्थडे है उन सब के लिए और स्पेशली आपके लिए।

0: Radio Musty.
1: Your life is not complete until you have a little musty in your life. Radio Musty. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musty.
0: Radio Musty.
2: आठ बज के 54 मिनट हो चुके हैं और बस मॉर्निंग बीट तो का साथ यहीं तक था। आपका दिन मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। मैं थी आपके साथ पूनम, मुझे दीजिए इजाज़त आरम टू रेडियो मस्ती से, पर अभी आपको थोड़ी देर में साथ मिलने जा रहा है विकास का। एंजॉय कीजिएगा अपनी मॉर्निंग को।

0: आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे अदिति। नमस्कार आपको।
1: नमस्कार नीतुषा, श्रोताओं को भी नमस्कार। लावांचिया में आज 7 बजे के करीब एक गंभीर सड़क हादसा पेश आया। एक बस और एक लोरी के बीच टक्कर हुई, कई लोगों के घायल होने की खबर है। प्राप्त जानकारियों के अनुसार लोरी चालक की घटनास्थल पर ही मौत हुई है। तमाहा में कल एक जानलेवा सड़क हादसा पेश आया। दक्षिण अफ्रीकी मूल की 58 वर्षीय एक महिला ने अपनी 4x4 पर से नियंत्रण खो दिया, जिससे गाड़ी बगल में जा टकराई। महिला गंभीर रूप से घायल हुई और बचाव टीमों की कोशिशों के बावजूद उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस जांच चल रही है। उधर दक्षिण में पोना चुगैल पर घूमने निकला भारतीय मूल का 45 वर्षीय एक व्यक्ति खाड़ी से नीचे गिर गया। जानकारियों के मुताबिक वो सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था। नेशनल कोस्ट गार्ड और पुलिस हेलीकॉप्टर की मदद से कल रात उसे ढूंढने की कार्यवाही शुरू की गई, जो आज सुबह से जारी रखी जा रही है। सेफ सिटी कैमरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजियां शामिल करके इस नेटवर्क में एक नया पड़ाव पार किया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन मंत्री उस्मान महमूद के अनुसार नई टेक्नोलॉजियों का ज्यादा इस्तेमाल करके सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का

0: पता लगाने की क्षमताएं बेहतर करने का लक्ष्य तय किया गया है। मौजूदा प्रणाली के अपग्रेड होने से एआई के माध्यम से सड़कों पर वर्जित या फिर खतरनाक व्यवहारों के बारे में आसानी से पता लगाया जा सकेगा, जैसे तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाना, बिना सेफ्टी बेल्ट पहने ड्राइविंग करना, गाड़ी चलाते हुए फ़ोन पर बात करना, खतरनाक ड्राइविंग या फिर रेड लाइट पार करना। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, बरतानी काउंटर टेररिज्म पुलिस ने कल पश्चिमी यूके में एक एयरबेस के पास 5 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया, जिन पर एक आतंकवादी हमले की योजना बनाने का शक किया जा रहा है। ये लोग 3 गाड़ियों में एयरबेस की तरफ जा रहे थे, जिसमें विस्फोटक पाए गए हैं। इस एयरबेस का इस्तेमाल मुख्य रूप से अमेरिकी वायुसेना द्वारा किया जाता है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: Hey, back with the music. Now it's got 5 minutes. And सुबह जो थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है ना, उसके चलते मूड और मौसम एकदम से बिल्कुल चेंज हो गया. ऑलरेडी द 28th ऑफ सितंबर, यानी कि सितंबर का महीना धीरे धीरे हो रहा है खत्म, लेकिन हम तैयार हो गए हैं कि अक्टूबर के साथ शुरू कर दें अपनी मुलाकात एक बार फिर से. हम Hey, how's the weekend? Weekend में कुछ मूवी प्लानिंग कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो 5491294 पर. बाकी वो बताएं कि म्यूजिक का जो सिलसिला है वो चलने ही वाला है विद द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक, और वहीं पर लाइफस्टाइल, होम डेको, टिप्स के साथ, कुछ और बातों के साथ मैं बिल्कुल सेट हूँ. लता जी, रणबीर और ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड के स्टार्स की बात करने वाले हैं. कुछ ऐसी आवाज़ें जो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई, उनको भी शामिल करेंगे. ऑल यू गॉट टू डू इज स्टे ट्यून्ड और अपनी बातें यहाँ तक पहुँचाइए. अरे मूड में आ जाइए, क्योंकि मॉर्निंग मॉर्निंग का टाइम है.
1: You can find me in the club, bottle full of bub, my mouth
3: got...
1: You're listening to Musty
3: Mornings.
1: Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: नहीं ठीक है प्यार, क्या तो निभाना अभी थोड़ा सितारों का हॉरोस्कोप का तो बताना।
1: Your daily horoscope, RM2 Radio Musti.
0: चलिए साहब चलते हैं, देखते हैं सितारों की चाल for 28th of September. शुरुआत करते हैं वेद।
2: एरीज मेष राशि।
0: भाई अगर बात करें हम तो मार्केट में जितने लोग होते हैं ना जो लगे स्टॉक मार्केट में या फिर इन्वेस्टमेंट में, हाँ थोड़े से ट्रिकी वाइब्स हैं। सो अपना कूलिंग सिस्टम ऑन रखना, कंट्रोल योर टेंपर एंड यू माइट एक्चुअली मेक अ सुपर प्रॉफिटेबल फाइनेंशियल डील आज। बस अपना जो दिमाग है ठंडा ठंडा कूल रखें। आज का मंत्र, चिल पिल खाओ, गुस्सा ठुकराओ और बैंक बैलेंस को बढ़ाओ।
2: टॉरस वृषभ राशि।
0: ओहो टॉरस, मून आपके साइन में है, सो कंफर्ट फूड और काउच बहुत टेम्पटिंग लगने वाले हैं। पर सुनो, आज कोई बड़ा इमोशनल या फाइनेंशियल रिस्क मत लेना, शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ो, जस्ट लिसन टू योर गट फीलिंग। काउच पर आराम और फालतू के रिस्क को आप नजरअंदाज कीजिए।
2: जेमिनी मिथुन राशि।
0: एनर्जी तो काफी हाई है पर ओवर करके खुद को थका मत देना। और हाँ, जो स्पाइसी जोक आप ऑफिस चैट ग्रुप में ड्रॉप करने वाले हो ना, उसे थोड़ा होल्ड पे रखो। कभी कभी ना बिना सोचे समझे आप किसी को हर्ट कर देते हो, इसलिए पहले देख लो कि आप भेज क्या रहे हो। थोड़ा सा ब्रेक लगाना जरूरी है वरना सीन काफी फेक हो जाएगा।
2: कैंसर कर्क राशि।
0: भाई ऐसा है कि मंडे को मेलो ड्रामा आपके दरवाजे पर नॉक नॉक कर रहा है। लोग अपनी प्रॉब्लम्स का रोना आपके सामने रोएंगे। अच्छी बात है कि आप उनको थोड़ा सा सपोर्ट देते हैं पर आपको उनका रेस्क्यू टीम मेंबर नहीं बनना। भाई जो काम है मंडे को काफी होता है, इसलिए सिंपथी दो पर उनका जो दिमाग में कचरा है ना वो अपने दिमाग में मत लो। गाड़ियों पीस, नो ड्रामा नो क्राई, पराया कचरा बाय बाय।
2: लियो सिंह राशि।
0: लियो जो भी काम है उसको कर दियो और सही टाइम पर। वैसे आज आपका सबसे अजीब और वेर्ड आइडिया ही बेस्ट हो सकता है, लेकिन अच्छी बात है थोड़ा सा रिस्क लेना, यानी कि आइडिया के चक्कर में प्रेजेंटेशन हो या पिच बोरिंग मत बनाना। गो बोल्ड, एब्सोल्युटली सक्सेस वेट कर रही है। आपको सोचना है कि क्रिएटिव कैसे बनना है और अपना आइडिया कैसे मनवाना है।
2: वर्गो कन्या राशि।
0: भाई वर्गो दोस्त, कोई आपके पास अगर आता है गुस्सा निकालने के लिए तो अपना दिमाग शांत रखिए, हो सकता है कि उसके साइड पर कोई सिचुएशन ऐसी चल रही हो, लेकिन काम और आपका जो एक्सपीरियंस है वो काम आने वाला है। तो बस आज सोल्यूशन नहीं, बस एक सुनने वाला कान चाहिए किसी को, तो आप वो इंसान बन सकते हैं। थोड़ा सा ज्ञान लेकिन अपने काम पर भी देते रहिए ध्यान।
2: लिब्रा तुला राशि।
0: लिब्रा सन आपके साइन में बैठकर चमक रहा है। आज आपकी डिसीजन लेने की जो पावर है वो काफी ऑन रहने वाली है। जब कोई पूछे कि आज खाने में क्या खाना है तो बस कंफ्यूज मत होना, एकदम क्लियर ऑप्शन के साथ आपको बताना है। रोमांस हो या सोशल लाइफ, एकदम फर्स्ट क्लास, कंफ्यूजन को करो बाय बाय, न्यू चीजों को लेट्स ट्राई।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
0: अरे वाह स्कॉर्पियो, आज आपके हाथ कोई अच्छी खबर लग सकती है, कोई सीक्रेट, लेकिन ये भी सच बात है कि आप हर किसी के साथ साझा मत कीजिए। बस अपना पोकर फेस मेंटेन करके रखना आसान नहीं होता, सब पता होने के बाद भी ऐसे एक्ट करो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। इन्फॉर्मेशन इज योर पावर टुडे, सुनो सबकी, जानो सबकी, पर खोलो मत।

0: अपनी मुट्ठी।
1: सजिटेरियस धनु राशि।
0: यो सजिटेरियस, स्टार्स आपके साथ रोमांस और वर्क दोनों में फेवर कर रहे हैं, लेकिन एक वार्निंग, पार्टी करने से पहले थोड़ा बैंक बैलेंस चेक करना ये जरूरी है। सेव बिफोर यू सेलिब्रेट, वरना मुश्किल पड़ सकती है। सैलरी मिल चुकी है, लेकिन अभी अक्टूबर का महीना शुरू होने वाला है। पार्टी चलेगी टिल नेट नाइट, पर पहले पर्स की पाइपिंग रखो टाइट।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
0: भाई कोई टीम में है जो वीक लिंक हो सकता है, इसलिए आपको नजरअंदाज नहीं करना। हो सकता है उसकी डेवलपमेंट नीड्स पर काम करना हो, पर चल करो, हर जगह एडल्ट बनना बंद करो, खुद सीखना भी अच्छा सीख होता है। होम एटमोसफेयर काफी प्यारा और पीसफुल रहने वाला है, तो घर पर टाइम स्पेंड करो, दुनिया का ठेका मत लो, खुद सुकून से घर पर बैठो।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि।
0: भाई आपकी जो बोनिंग लाइफ है ना, उसमें कुछ चेंज आने वाला है, कुछ अलग से ट्विस्ट आएगा, या फिर कोई काम आपको मिल जाएगा और फिर लगेगा कि अरे रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक एफर्ट, कुछ क्यूरोसिटी, कुछ सीखने का मौका। अगर किसी पर क्रश है तो आज उनका नंबर मांगने का एकदम परफेक्ट चांस है, गो अहेड। भाई अच्छा है कि कुछ स्पेशल इंसान को स्पेशल तरह से अपनी जिंदगी में इन्वाइट करें। हवा में बातें छोड़ो, डायरेक्ट जाकर कनेक्शन जोड़ो।
1: पाइसेस मीन राशि।
0: Last but definitely not the least, spices. भाई ऐसा है कि आपको financial habits और modern needs को balance करने की ज़रूरत है। आज एक personal turning point हो सकता है। Determination से काम लो, लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे, लेकिन आप उनको आने का निमंत्रण तो दो। भाई पुराने बातें भूल जाओ, नए ढंग से पैसा कमाओ और टिके रहो।
2: Your daily horoscope, RM2 Radio Musti.

रिमेम्बरिंग लता जी एंड डोंट फॉरगेट आज भारत से दो के बीच में उनके बहुत सारे गाने होने वाले और उनकी जिंदगी से जुड़ी बहुत सारी बातें भी। ये आवाज़ इतने गाने हमारी जिंदगी का हिस्सा एंड नेवर एवर गोना बी आउट, हमेशा रहेंगे इस म्यूजिक वर्ल्ड में हमारी जिंदगी में एक साथ।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: अच्छा, जब बाहर का मौसम एकदम कूल होता है, थोड़ी सी बारिश होती है, तो काफी लोग ये कहते हैं कि उन्हें अंदर से वो फीलिंग आती है कि आज घर पे रहें। लेकिन मंडे को लेजी फील करना कोई क्राइम नहीं है। कभी कभी बॉडी और माइंड दोनों को थोड़ा स्लो मोड चाहिए होता है, और अगर ऐसा आपके साथ हो गया है तो कोई बात नहीं, नॉर्मल सी बात है। आज का मंत्र सिंपल है, रश मत करो बट रुक भी मत जाओ, चलते जाओ भाई। सबसे पहले

सुबह से उठना, अपने सब कुछ मैसेज चेक करना, देखना प्रायोरिटी। हाँ, जब जाना है तो जाना ही है, इतने सारे काम करेगा कौन। इसलिए टिप नंबर टू है कि बस तैयार हो जाओ, मेक योर मंडे की बेवरेज स्पेशल। चाय हो, कॉफी हो, ग्रीन टी हो, जो भी हो, जो दिल कहे बस उसे आप ले लीजिए। मेक इट लिटिल मंडे रिचुअल, एक फेवरेट मग, थोड़ा सा म्यूजिक और कुछ समय खाली अपने लिए, वो मी टाइम, सोचना कि आज अपने आप को कंडीशन कैसे करें। और म्यूजिक की बात निकले तो बहुत कमाल के गाने के साथ तो हम जुड़ी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इंपॉर्टेंट टास्क, जैसे मैंने कहा, उसको लेकर तैयार हो जाइए। और अगर बारिश मैनेजेबल है तो थोड़ा मूव करिए ना, 5 मिनट की स्ट्रेचिंग, बालकनी में थोड़ा सा वॉक, थोड़ा सा वक्त लेकर, यानी कि एक मेल वेल भेज दी, बात होगी, मीटिंग होगी, थोड़ा सा ब्रेक लो ना। देखिए, रेस्ट और लेजीनेस में डिफरेंस होता है। नहीं, सच मानिए, रेस्ट और लेजीनेस दो अलग चीज़ें। अगर बॉडी जेन्युइनली टायर्ड है तो आप पेस को रिस्पेक्ट करिए। प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि आप काम करते रहें, थोड़ा सा स्लो भी हो लेकिन काम होना चाहिए। और बारिश को एंजॉय करो, मंडे को एक्सेप्ट करो और अपने पेस को फिर से रीसेट करो।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: अच्छा, कुछ ऐसे भी हैं जो कि अभी ऑफिस नहीं जा पाए, बट नॉर्मल सी बात है कि कभी कभी ऐसे मौसम में खांसी जुकाम तबीयत ठीक नहीं. हाँ ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर घर पर हैं तो पूरा दिन बोरिंग होने वाला है. वर्क फ्रॉम होम का गोल्डन रूल है, रूटीन रखो लेकिन रूटीन को बोरिंग मत होने दो. ये वही ना बात, एक मिनी चैप्टर शुरू करना जरूरी है. बस आपने शुरू किया तो आपको एक चाय कॉफी ब्रेक का लेना है या फिर म्यूजिक ब्रेक लेना, एक फेवरेट सॉन्ग सुनकर एनर्जाइज होना, थोड़ा स्ट्रेच करो और फिर वापस काम पर. भैया ऐसा भी है कि अपना जो वर्किंग पोजीशन है उसको थोड़ा चेंज करो, वहीं पर एक ही जगह कोशिश करते हैं कि ऐसा लेजी डे तो अंडरकवर साइड में ठीक है, नहीं नॉट रियली, उसको चेंज करो अगर पॉसिबल हो तो बालकनी विंडो के पास या किसी दूसरी कंफर्टेबल जगह को आप अपना बना सकते हैं पसंदीदा जगह. एनवायरमेंट चेंज होगा, मूड चेंज होगा. हाँ, खाने पीने का प्लान कर लो कि क्या खाना पीना होगा. लंच को सिर्फ खाना खा के वापस लैपटॉप मत बनाओ, प्रॉपर ब्रेक लो, फैमिली से बात करो, फेवरेट शो का एक छोटा एपिसोड देखो, यानी कि अपने दिन को इंटरेस्टिंग बनाओ ना. और हर बार कोशिश कीजिए कि एक मूवमेंट चैलेंज जरूर हो, थोड़ा सा वॉक, स्ट्रेचिंग, स्टेज या फिर बाहर गार्डन में देखकर कि बारिश की बूंदें, वो पानी की टप टप. हाँ हर जगह नहीं लेकिन फिर भी कोशिश तो कर सकते हैं. और जब वर्क डे ख़त्म हो तो सच में ख़त्म करो काम, लैपटॉप बंद, नोटिफिकेशंस म्यूट और अपने ब्रेन को सिग्नल दो कि बस अब पर्सनल लाइफ की शिफ्ट शुरू हो गई, यानी कि फैमिली के साथ जरूरी है टू स्टे हैप्पी, स्टे प्रोडक्टिव और सबसे इम्पोर्टेंट स्टे ह्यूमन.
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2, Radio Masti.
0: Radio Masti.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Masti.
1: 20th of September, Monday ka din, time check exactly 10 a.m. स्टूडियो में आ गए थे, उनसे मिलते हैं, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
4: नमस्कार विकास, श्रोताओं को भी नमस्कार। लावांछा में आज सुबह 7 बजे के करीब एक गंभीर सड़क दुर्घटना पेश आई। एक बस और एक लॉरी के बीच टक्कर हुई, कई लोगों के घायल होने की खबर है। प्राप्त जानकारियों के अनुसार लॉरी चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। कार्गो हैंडलिंग कॉरपोरेशन की इक्विटी को मर्क और MSC के लिए खोलने की योजना अब एक ठोस चरण में पहुंच रही है। प्रधानमंत्री दफ्तर के साथ हुई बातचीत के बाद अगला कदम एक ट्रांजैक्शन एडवाइजर की नियुक्ति होगा, जिसका मुख्य काम इस ऑपरेशन में शामिल संपत्तियों का मूल्यांकन करना होगा। प्रस्तावित ढांचे के तहत उचित जांच पड़ताल और सुप्रशासन नियमों का पालन करते हुए निजी साझेदारों को 40% तक की इक्विटी देने की योजना है। कार्गो हैंडलिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए नई व्यवस्था 2027 की शुरुआत तक लागू करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके साथ ही नए क्रेन्स की खरीद के लिए 2.7 बिलियन रुपए से ज्यादा का निवेश किया जा रहा है। मॉरिशस में एग्रीकल्चरल सर्विसेज के अनुसार मई और जुलाई महीनों के बीच इकट्ठा किए गए फलों और सब्जियों के 150 सैंपल्स में से लगभग 30% में ऐसे कीटनाशक पाए गए हैं जिनकी उस खास फसल के लिए सलाह नहीं दी गई थी। साथ ही निगरानी मजबूत करने के लिए जल्द ही 4 नए नियम लागू किए जाएंगे। अधिकतम अवशेष सीमा, स्थानीय और आयातित उपज की सैंपलिंग, कीटनाशकों का मिश्रण और उनका इस्तेमाल तथा कृषकों का प्रशिक्षण और सर्टिफिकेशन एग्रीकल्चरल सर्विसेज के अधिकारियों के अनुसार प्रथम नियम खासतौर पर इसलिए लागू किया जाएगा ताकि अधिकतम अवशेष सीमा से ज्यादा मात्रा होने पर कानूनी कार्यवाही की जा सके। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, बरतानी काउंटर टेररिज्म पुलिस ने कल पश्चिमी यूके में एक एयरबेस के पास 5 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया जिन पर एक आतंकवादी हमले की योजना बनाने का शक किया जा रहा है। ये लोग 3 गाड़ियों में एयरबेस की तरफ जा रहे थे जिनमें विस्फोटक पाए जा रहे थे। इस एयरबेस का इस्तेमाल मुख्य रूप से अमेरिकी वायुसेना द्वारा किया जाता है। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। नंबर 13 असिलियम गली बौखली बोबासा में, नंबर 13 असिलियम बौखली

असहमी 88 साल की 88 years old श्रीमती जानेगी लक्ष्मण, श्रीमती जानेगी लक्ष्मण पैदाशी नाम कतागी जो राधा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे, इनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे के मकान नंबर 13 असिलियम गली बकली बबासन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौलव्य की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। मारी जानी रोजबेल में 64 साल के 64 years old श्री रमेश मुनिया जो उत्तम नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 1:30 बजे की पत्नी श्रीमती गीता मुनिया के मकान मारी जानी रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1:30 PM। रॉयल रोड पेची पॉइंट ओपीमा में 84 साल की 84 years old श्रीमती सनमति बंधु पैदाशी नाम बिमल जो धनपति नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे इनके बेटे श्री शिव बंधु के मकान रॉयल रोड पेची पॉइंट ओपीमा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पॉइंट ओपीमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 3 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है। on NBC Play.

0: 92 रेडियो मस्ती।
1: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हवा तो भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोड़ी फैशन, रॉयल रोड, पॉपुलर मिसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799-3782। हलकोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और कारीते।
0: RM2 रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: तो सब बात करते हैं अबाउट विवान, यानी कि ये जो कहानी है वो आ गई बड़े पर्दे पर और काफी लोग इसे इंतजार करते क्योंकि सिद्धार्थ मल्होत्रा, तमन्ना भाटिया, सुनील ग्रोवर, साथ में मनीष पॉल, यानी कि स्टार कास्ट अच्छी है। लेकिन अभी क्या हुआ, चलिए भाई लोक कथाओं की बात करें तो काफी बोलबाला रहा है और मूवी कुछ ऐसी है कि मुंबई में रहने वाले पति पत्नी यानी सिद्धार्थ मल्होत्रा तमन्ना भाटिया की कहानी है जो पेरेंट्स बनने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे। अब होता है कि छठ पूजा के मौके पर दोनों पुश्तैनी गांव जाते हैं और वहां पर मिलते हैं अपने भैया भाभी से और वहीं पर एक ब्लॉगर है जो है मनीष पॉल, पुरानी मान्यता और उसके चलते कहा जाता है कि सनसेट के बाद भाई जंगल के अंदर प्रवेश नहीं करना और जो ऋषि है, जो सिद्धार्थ मल्होत्रा है, जो कैरेक्टर है, वो उसे अंधविश्वास मानता है। और फिर जंगल में से रास्ता बनाने की कोशिश करता है जहां पर जो लोग हैं अपोज करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए और उसके बाद धीरे धीरे कहानी जोर पकड़ती है। भाई पुरानी मान्यता, इसके बीच में टकराव, इन सदी पुरानी इन मान्यताओं के पीछे आखिर क्या सच है, ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। लेकिन एक्टिंग अच्छी है, फर्स्ट हाफ जहाँ पर अच्छे से आगे बढ़ता है वहीं पर सेकेंड हाफ थोड़ा बिखरा हुआ नजर आता है, टुकड़ों में आपका एंटरटेनमेंट करती है और फिल्म की सेट डिजाइनिंग पर भी ज़्यादा काम किया जा सकता था। लेकिन बात करें इस मूवी की

तो क्लाइमेक्स में जो बैक स्टोरी है वो कुछ दूर तक ले जाती है आपको कुछ और इंटरेस्ट के साथ। और अगर बात करें हम एक्टिंग की, तो सिद्धार्थ मल्होत्रा तमन्ना भाटी की जोड़ी भाई काफ़ी फ्रेश लगती है और केमिस्ट्री पर्दे पर अच्छी लगती है। वहीं पर गाना भी पॉपुलर हुआ।

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: तो गुड मैसेजेस यहाँ पर, गुड मॉर्निंग, सब कुछ ठीक? हाँ जी, बिल्कुल ठीक। और अनिता जी फीकॉन फ्लैग से कहते हैं, यहाँ पर भी बारिश हो रही है। ओह माय गॉड, वैसे अभी बस बाहर जाने का मौका मिला तो देखा कि थोड़ी सी बारिश, क्लाउडी मौसम, सोने के लिए मौसम नहीं। नहीं नहीं नहीं, गलत गलत दिशा में जा रहे हो भाई। और मेरे पर हेलो हेलो हेलो रेडियो मस्ती कहते हैं, एक प्यार सा गाना स्पेशली फॉर सचिन, फॉर द विलाज के हैं, उस वर्किंग एट द मोमेंट, प्यार सा गाना उनके लिए। उनकी प्यारी सी कौन है, अच्छा नाम नहीं लिखा लेकिन फिर भी बहुत सारा प्यार फ्रूट्स के साथ। अरे वाह, क्या बात है, क्या कॉम्बिनेशन है। गुड मॉर्निंग यालेश नाम से, और फ्रूटी मॉर्निंग के साथ यानी कि फुल टाइम उन्होंने जो कलर्स बनाए ना, अब बिल्कुल फ्रूट्स कटे हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि इसी के साथ शुरुआत होनी चाहिए। जैसे फ्रूट में वो कलर्स होते हैं, वो अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं, वैसे मूड और मौसम यहाँ पर क्रिएट करते हुए आप सभी के लिए।
0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.

0: to
1: Radio Musty.
2: Les prix malins débarquent chez Winners. Du 25 septembre au 8 octobre, profitez de super offres sur une sélection de produits du quotidien dans votre Winners préféré. Alimentation, boissons, produits pour la maison et bien plus encore. De nombreuses offres vous attendent dans le rayon. Alors remplissez votre caddie à prix malin et profitez-en chez Winners. Retrouvez notre brochure sur winners.mu.
3: On est tous Winners.
4: भविष्य खातिर हमनी लगे हमेशा कोनो न कोनो योजना रहेला। लैका के पढ़ाई, एगो वायाज, घर के रेनोवेशन, यानी एगो पूरा जीवन जिए के। सिकुम अपन प्रस्तावित इन्वेस्टमेंट प्लान्स के माध्यम से तोहरा तोहर आर्थिक भविष्य के विस्तार पर को से ये करी। आर जब रिटायर होए के बखत आए त सिकुम के निजी पेंशन योजना से सकबा जीवन के ई नवा पड़ाव के नवा सांस दे। तोहर भविष्य तोहर आज पर निर्भर करेला, इनकरा आज ही से तैयार करे के चाहे। जस्ती जानकारी खातिर हमनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर या sikkim.mu पर जाय ह। इमे नियम आ शर्त भी लागू बा। सिकुम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
5: सिकुम ग्रुप, ए लाइफटाइम कमिटमेंट।
0: RM2
1: रेडियो।

0: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स।
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings Radio Musty.
3: जैसा म्यूजिक तो जहां पर है वहीं पर फैशन होना बहुत बहुत जरूरी है। Let's talk about फैशन का फंडा। भाई कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट एक स्टैंड आउट एलिमेंट होता है। वैसे बेस सिंपल रखिए और कभी कभी एक कलर ट्विस्ट ट्राई कर सकते हैं। जैसे आप यूजली सेफ कलर्स पहनते हैं, आज एक ब्राइट एक्सेंट ट्राई कर सकते हैं, कोबाल्ट ब्लू, ग्रीन, कोरल पिंक या येलो। एकदम से कहानी चेंज होती है। भाई कहने की बात ये कि कपड़े सिर्फ अच्छे दिखने के लिए नहीं, अच्छा फील करने के लिए भी होते हैं, इसलिए जरूरी है कुछ फैशन स्टेटमेंट उसमें ऐड करना। एंड डोंट फॉरगेट ग्रूमिंग, फ्रेश एयर, मॉइस्चराइज स्किन, लिटिल फ्रेग्रेंस। ये जो सिंपल सी आउटफिट है ना उसको पॉलिश फील करा सकता है, एक अच्छा एक अलग सोफिस्टिकेटेड लुक दे सकता है। और कलरफुल शर्ट, स्टेटमेंट इयररिंग्स, कूल स्नीकर्स या फिर एक वॉच या एक फन बैग एक स्टैंड आउट एलिमेंट पूरे लुक को बस एलिवेट करने में बिल्कुल तैयार करता है आपको।
0: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments.
1: RM2
2: Radio Musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: जिंदगी में म्यूजिक ना हो तो लगता है कि जैसे कहानी थोड़ी सी रुक सी गई है, इसलिए जरूरी है टू कीप इट फ्लोइंग ऑन म्यूजिक के साथ, बस आगे चलते जाएं और फिर देखिए साहब सब कुछ ठीक हो रहा है, एवरीथिंग फॉलिंग इन प्लेस। क्या बात है, शुक्रिया कि आपका साथ है। और यहाँ पर कुछ मैसेजेस जहाँ पर कोई कह रहा है कि हेलो, ऐसे मौसम के अंदर बाइक और काम करने का मौका नहीं मिल रहा है रेनू जी। और वैसे कहती हैं कि पता नहीं क्या होता है, ऐसे मौसम के अंदर मन करता है कि कुछ गातो दिल विल। ओके नहीं, थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, क्या कर रहे हैं आप। हाँ, ये सच है कि एक छोटा सा ब्रेक लेना ज़रूरी है ऐसे मौसम में ना। और कभी कभी आंखों के सामने रिफ्लेक्शन शुरू हो जाता है, सोचना कि हम कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं। सही बात है। चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर कुनल हैं जो कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, स्पेशली गोइंग आउट टू हिज स्वीट हार्ट। कहते हैं अभी बस थोड़ा लेट ही गई काम पर, लेकिन जस्ट विशिंग ऑल द बेस्ट ज़रूरी है। अमित, आपको भी हेलो गुड मॉर्निंग। और कहते हैं कि काम वाम ठीक चल रहा है और मूड में हूँ, फुल ऑन एनर्जी है, लग रहा है आज का दिन अच्छा जाएगा। हाँ, मंडे की शुरुआत ऐसी हो तो क्या बात है। और वहीं पे कुछ लोग हैं जो अपना स्पेशल डे मना रहे हैं, यानी कि उनका बर्थडे, और यहीं पर अपना बर्थडे मना रहे मिस्टर उत्तम सिबाखत जो कि हैं

फ्लोरियाल से उत्तम से भारत जी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं एंड ऑल्सो गोज आउट फ्रॉम योर वाइफ पूनम और वहीं पर हैं ऑल सिस्टर्स लता आशा शारदा सभी सिवाहत फैमिली की तरफ से उत्तम साहब आपका दिन अति उत्तम हो

0: 20th of September, Monday का दिन, time check, exactly 11 AM. चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। अदिति आगे स्टूडियो में एक बार फिर से मिलते हैं उनसे, जानते हैं संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
1: नमस्कार विकास, श्रोताओं को भी नमस्कार। मॉरिशस कमर्शियल बैंक के लिए एक बड़ी कानूनी जीत। कीनिया के हाई कोर्ट ने जेड पेट्रोलियम को आदेश दिया है कि वो मॉरिशस के इस बैंक को 6.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 304 मिलियन रुपए चुकाए। इसमें ब्याज और कानूनी खर्च शामिल नहीं है। ये वित्तीय विवाद 2015 के आखिर का है, जब MCB को जेड पेट्रोलियम के लिए फाइनेंसिंग सुरक्षित करने वाली 5 लेटर ऑफ क्रेडिट का भुगतान करना पड़ा था। कंपनी द्वारा भुगतान में चूक करने के बाद मॉरिशस के इस बैंक ने अपने पैसे वसूलने के लिए 2016 में कानूनी कार्यवाही शुरू करने से पहले दक्षिण अफ्रीका के फर्स्ट रैंड बैंक का बकाया चुकाया। अपने बचाव में जेड पेट्रोलियम ने ये तर्क देकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की कि उसके मध्यस्थ इंपीरियल बैंक को रिसीवरशिप में डाल दिया गया था। कीनिया के जजों ने इस तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि मध्यस्थ की मुश्किलों से जेड पेट्रोलियम को MCB के प्रति अपने कर्ज से मुक्ति नहीं मिलती। बैंक के लिए एकमात्र नकारात्मक बात यह रही कि औपचारिक नोटिस भेजने में प्रक्रियात्मक गलती के कारण 3 व्यक्तिगत गारंटरों के खिलाफ उसके दावों को खारिज कर दिया गया। फिर भी जेड पेट्रोलियम पूरे कर्ज के लिए जिम्मेदार हैं और उसे मॉरिशस कमर्शियल बैंक का कानूनी खर्च भी उठाना पड़ेगा। एजिंग पॉपुलेशन, जलवायु परिवर्तन, भू राजनीतिक तनाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बैंक ऑफ मॉरिशस की गवर्नर पुसीला माथुगा ताको के अनुसार ये 4 बड़े बदलाव हैं जिसके लिए मॉरिशस को तैयारी करनी होगी। सोशल साइंसेज इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2026 के अंतर्गत अपने वक्तव्य में उन्होंने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता और साथ ही देश को ऐसे बदलावों के लिए तैयार करने की बात पर बल दिया जिनका प्रभाव रोजगार, विकास और पब्लिक फंड पर पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में शनिवार शाम को एक बार के करीब 8 हमलावरों ने अंधाधुंध लोगों पर गोलियां चलाई। 17 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि इस हमले के कुछ ही घंटे बाद कल सुबह केप टाउन में किए गए इसी प्रकार के एक और हमले में 11 लोगों ने जान गंवाई। इसके पीछे आपराधिक गुटों के बीच झगड़े का कारण माना जाता है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। नंबर 17 रॉयल रोड बोबासे में 74 साल के 74 years old जनाब गुलाम अहमद कुदाबकस, जनाब गुलाम अहमद कुदाबकस जो अहमद नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और UBS के पूर्व शेफ बिगौ थे, इनका इंतकाल हो गया है। उनका जनाजा आज शाम चार बजे उनके मकान नंबर 17 रॉयल रोड बोबासे से उठा के पहले नमाज़ जनाजा के लिए नूरे नवाबी मस्जिद जाया जाएगा। फिर दफनाने के लिए सैमोतमोश का कब्रस्तान, फ्यूनरल टुडे 4 PM। माघी जानी रोजबेल में 64 साल के 64 years old श्री रमेश मुनिया

श्री रमेश मुनिया जो उत्तम नाम से ज्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के डेढ़ बजे इनकी अर्थी आज दिन के डेढ़ बजे इनकी पत्नी श्रीमती गीता मुनिया के मकान मागीजानी रोजवेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 1:30 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।

0: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हवा तो भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी, सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोड़ी फैशन, रॉयल रोड, पॉम्पली मिसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799-3782। हलकोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और कारीते।
1: RM2 रेडियो मस्ती।

एकदम से मंडे की मॉर्निंग कुछ अलग ही हो गई ना, जहाँ पर बादल थोड़ी थोड़ी सी बरसात, लेकिन हाँ म्यूजिक है अपने साथ। हेलो टू ऑल इंटरनेशनल लिसनर्स, अरे साहब ऐसा लग रहा है कि अभी ठंड नहीं जाने का नाम ले रही है, अभी थोड़ा सा वक्त जरूर है, लेकिन बेटर टाइम्स कमिंग कल से। चले म्यूजिक के प्यार में थोड़ा राइट चलते हैं। थर्ड आवर दिस इज मोस्ट मॉर्निंग शो लेडीज एंड जेंटलमैन, थोड़ी देर में अपनी कुछ और बातें बॉलीवुड हाउसहोल्ड देखो।

0: क्या हुआ?
1: अरे गाना खत्म, शुरू जाते हैं
2: हम। वेलकम टू RM2
3: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।
0: और अगर अपने सूत्रों की माने तो अभी किचन में बहुत सारी हलचल हो गई है, इसलिए भी क्योंकि भाई प्लानिंग तो करनी पड़ती है। वैसे जितने भी लोग हैं घर पर हैं उनका काम जाने कभी ख़त्म ही होता। आराम से बैठे नज़र पड़ गई कहीं किचन के किसी डेस्क पर, वर्किंग एरिया पर, या फिर जहाँ पर वो यूटेंसिल रखते हैं तो लगता है कि हाँ ये भी साफ़ करना है। कहानी चलती जाती है ना। चलिए चलिए आगे चलते हैं। और वहीं पर अगर आप पोटेटोज यानी कि आप बना रहे हैं कुछ पोटेटो रिलेटेड डिश तो दिमाग हो जाता है टाइम टाइम फिश, ये सोचकर कि उसको बॉईल करेंगे उसके बाद स्किन निकालना कितना मुश्किल हो जाता है ना। हाँ लेकिन बॉईल पोटैटो उसको 5-10 मिनट अगर ठंडे पानी में डाल देंगे तो स्किन काफ़ी इजीली निकल जाएगा, लेस पीलिंग मोर रिलैक्सिंग। वहीं पर अगर आप प्याज काटते हैं और काटने से बहुत आपको आंसू आते हैं कि हाय मैंने प्याज को काट दिया, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन आप अगर चॉपिंग बोर्ड को स्टेबल रखें और जो आपके अनियन है उनको थोड़ी देर फ्रिज में चिल कर लें तो देखिए साहब आसान हो जाएगा। और वहीं पर लेमन से जूस निकालना ये काफ़ी मुश्किल होता है कभी कभी। हाँ लेकिन ऐसा है कि उसको काउंटर पर थोड़ा सा रोल कीजिए, थोड़ा सा दबा कर स्क्वीज करें, उसके बाद जूस निकालना काफ़ी आसान। ये थोड़ी ही आपका काम ही जूस निकाले, लेमन का भी जूस निकालिए।
2: वेलकम टू RM2
3: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: Lolo Hypermarché, low, low prices. Morcellement Saint-André et le Valentinien Phoenix.
1: Tout le monde s'y presse pour aller chez Lolo.
2: Household and decoration tips brought to you by Lolo Hypermarket.
3: Welcome to RM2.
4: Musty Mornings Radio Musty.
5: जैसा अभी वक्त हो कि घर को थोड़ा सा मेकओवर जरूर दे दें, बिना रेनोवेशन के, बिना हैवी बजट और बिना घर को उल्टा पुल्टा किए। बहुत आसानी सी बात है कि आप फर्नीचर को थोड़ा सा मूव करके देखिए। कभी कभी नया फर्नीचर नहीं, बस पुराने फर्नीचर को प्लेसमेंट चेंज करना ही काफ़ी हो जाता है। सोफा को थोड़ा सा एंगल पर, चेयर को विंडोज़ के पास, और सडनली रूम फील्स डिफरेंट। आपका जो सिटिंग एरिया जहाँ पर आप बैठकर टीवी देखते हैं, तो उसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, साइड टेबल एक ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। वहीं पर एक रूम में सिर्फ ब्राइट सीलिंग लाइट पर डिपेंड मत कीजिए, एक वार्म टेबल लैम्प, फ्लोर लैम्प या फिर स्मॉल डेकोरेटिव लाइट ऐड करके रूम को इंस्टेंटली कोजी बना सकते हैं। एम्प्टी वॉल्स को थोड़ी सी पर्सनालिटी देना अच्छा होता है। हर वॉल को डेकोरेट करना जरूरी नहीं, लेकिन एक वॉल चूज कीजिए और उस पर फैमिली फोटोज, आर्टवर्क या मिरर या सिंपल से फ्रेम्स का स्मॉल सा अरेंजमेंट कीजिए, और फिर देखिए एकदम से रूप और रंगत हो जाएगी चेंज। थोड़ा सा चेंज लाइफस्टाइल में भी।
2: Household and decoration tips brought to you by Lolo Hypermarket.
3: RM2
4: Radio

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: जाने के वक्त हो रहे हैं, थैंक यू सो मच, आपने इतने प्यार साथ दिया वहीं पर। जी हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ हमेशा उतना एक पॉजिटिव के साथ कोई जुड़ जाता है तो फिर चारों तरफ हैप्पी एटमोसफेयर। आप वहाँ पर, हम यहाँ पर, मैंने कहा था ना एटमोसफेयर, यू दे आम हियर। और वहीं पर आने वाली थोड़ी देर में पूनम लेकर आपके लिए बहुत सारे गाने लता जी को याद करते हुए, बाहर से दो डेडिकेटेड टू लता जी, उनके गानों और उनके जो काम है, जो उन्होंने गाने अपने बनाए हैं बॉलीवुड में इतने पॉपुलर, तो शामिल होना ना भूलें। एंड सेंड इन योर मैसेजेस, बताइए कि आपको कैसा लग रहा है 5491294 पर। अब जल्दी आपसे मुलाकात होगी, टिल देन यू टेक केयर एंड म्यूजिक इज राइट हियर टू टेक केयर ऑफ यू। म्यूजिक थेरेपी।
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.

0: सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अदिति से। अदिति, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार। आज सुबह एनटीसी की कई लाइनों पर कामकाज में रुकावट आई। 100 से ज्यादा कर्मचारी नौकरी पर नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से कई बसें डिपो से नहीं निकल पाई। इस विवाद की मुख्य वजह नया रोस्टर है, जिसका श्रमिक संघ विरोध कर रहे हैं। वे खास तौर पर काम करने के घंटे बढ़ाने और वेतन में कटौती का विरोध कर रहे हैं। मॉरिशस कमर्शियल बैंक के लिए एक बड़ी कानूनी जीत है। कीनिया के हाई कोर्ट ने जेट पेट्रोलियम को आदेश दिया है कि वो मॉरिशस के इस बैंक को 6.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 304 मिलियन रुपए चुकाए। इसमें ब्याज और कानूनी खर्च शामिल नहीं है। ये विवाद 2015 के आखिर का है, जब एमसीबी को जेट पेट्रोलियम के लिए फाइनेंसिंग सुरक्षित करने वाले 5 लेटर ऑफ क्रेडिट का भुगतान करना पड़ा था। कंपनी द्वारा भुगतान में चूक करने के बाद मॉरिशस के इस बैंक ने अपने पैसे वसूलने के लिए 2016 में कानूनी कार्रवाई शुरू करने से पहले दक्षिण अफ्रीका के फर्स्ट रैंड बैंक का बकाया चुकाया था। मॉरिशस में एग्रीकल्चरल सर्विसेज के अनुसार मई और जुलाई महीनों के बीच इकट्ठा किए गए फलों और सब्जियों के 150 सैंपल्स में से लगभग 30% में ऐसे कीटनाशक पाए गए हैं जिनकी उस खास फसल के लिए सलाह नहीं दी गई थी। साथ ही निगरानी मजबूत करने के लिए जल्द ही 4 नए नियम लागू किए जाएंगे। अधिकतम अवशेष सीमा, स्थानीय और आयातित उपज की सैंपलिंग, कीटनाशकों का मिश्रण और उनका इस्तेमाल तथा कृषकों का प्रशिक्षण और सर्टिफिकेशन। एग्रीकल्चरल सर्विसेज के अधिकारियों के अनुसार प्रथम नियम खास तौर पर इसलिए लागू किया जाएगा ताकि अधिकतम अवशेष सीमा से ज्यादा मात्रा होने पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में शनिवार शाम को एक बार के करीब 8 हमलावरों ने अंधाधुंध लोगों पर गोलियां चलाई। 17 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि इस हमले के कुछ ही घंटे बाद कल सुबह केप टाउन में किए गए इसी प्रकार के एक और हमले में 11 लोगों ने जान गंवाई। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। 67 साल के 68 years old जनाब अब्दुल कादिर जहांगीर, जनाब अब्दुल कादिर जहांगीर इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा आज दिन के 1:30 बजे पोर्टलुई के अलीसान फ्यूनरल सेंटर से उठाकर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 1:30 PM। शोक में डूबे इस परिवार के साथ हमारी गहरी संवेदना है। Your news on MBC Play and MBC.MU. Retro Rhythm. RM2.

रेट्रो रिदम। 12:08 हो चुके हैं। नमस्ते, प्रणाम सभी को, और हम तो सभी को कहेंगे वेरी गुड आफ्टरनून। आरएम टू रेडियो मस्ती पर आप सुन रहे हैं रेट्रो रिदम और मैं हूँ आपके साथ पूनम। दोस्तों, आज के 28 सितंबर यानी कि आज के दिन 1929 में एक बहुत ही प्यारी सी गुड़िया यानी कि इंदौर में जन्मी थी वो आवाज़ जिसने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं लता मंगेशकर जी की। तो आज ये दो घंटे जो होंगे सिर्फ उनके गाने सुने जाएंगे और उनकी ज़िंदगी के बहुत सारे किस्से, कहानियाँ और गानों से जुड़ी हुई वो सारी बातें, मूवी से रिलेटेड बातें, उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड बातें कुछ हम करेंगे। तो उनका पहला गाना बहुत ही खूबसूरत है। मुझे एहसास है कि ये जब आप सब सुनेंगे ना, आपको एहसास होगा कि लता जी हमारे बिल्कुल साथ हैं। चाहे आज वो हमारे साथ ज़िंदगी में नहीं है, पर उनके

0: रेट्रो रिदम।
1: 12:17 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम रेट्रो रिदम के साथ और आपका साथ दे रही है इस समय पूनम। तो आप सब जानते हैं कि लता जी का जन्म आज के ही दिन 28 सितंबर 1929 को इंदौर यानी कि हिंदुस्तान में हुआ था। उनका असली नाम था हेमा, लेकिन बाद में उनके पिताजी ने यानी कि उनके पापा ने लता रख दिया। उनके पिता एक नाटक भावबंधन के किरदार के नाम पर था, वहाँ पर एक नाम था लता। उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने कहा क्यों ना मैं अपनी बिटिया रानी का नाम लता रखूँ, क्योंकि वह सबसे बड़ी थी। उनके पिता थे पंडित दीनानाथ मंगेशकर, एक मशहूर शास्त्रीय गायक और उनके थिएटर के कलाकार भी थे, और उनकी माँ थी शिवयंती। और बस उन्होंने कहा कि इतनी प्यारी बिटिया रानी आई है तो क्यों ना इसके लिए मैं बहुत कुछ करूं। पर कहते हैं ना, जिंदगी पलटा खाती है। इंजॉय कीजिए इस गाने को और उसके साथ में जुड़ेंगे फिर और अनकही कहानियों के साथ।
2: La MBC se réinvente et vous accompagne désormais partout. Retrouvez toute la richesse des contenus de la MBC sur nos nouvelles plateformes digitales. Avec MBC Now, notre nouvelle page Facebook, restez connectés à l'actualité, découvrez les temps forts de nos émissions et ne manquez aucune nouveauté. Avec l'application mobile MBC Play ainsi que notre nouveau site web mbc.mu, regardez vos chaînes TV en direct, écoutez vos radios préférées en live, suivez le JT, les courses hippiques, consultez la programmation et profitez du replay où que vous soyez, à la maison, au bureau ou en déplacement, la MBC est désormais accessible sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur ou votre Smart TV. MBC Now, MBC Play, mbc.mu, toute la MBC partout avec vous. Plus d'infos sur le 402.

0: रेट्रो रिदम।
1: 12 बजकर 31 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, आप सुन रहे थे मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज़ में प्यार हुआ इकरार हुआ। और सच बात है कि इतना पुराना ये राज कपूर साहब के और नरगिस के टाइम का गाना, यानी कि 50s के टाइम का गाना, आज भी ऐसा एवरग्रीन लग रहा है, ऐसी क्रिस्पी वॉइस लग रही है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई अभी लेटेस्ट गा रहा हो। यही बात है, यही कहते हैं ऑरा था हमारी लता मंगेशकर जी का। लता जी के पहले गुरु हुए उनके पिता, जो उन्होंने 5 साल की उम्र में उनको गाना सिखाते थे। लेकिन 1942 में जब लता जी ने सिर्फ 13 साल की थी, उनके पिता का देहांत हो गया। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और घर की सबसे बड़ी बेटी होने के नाते पूरे परिवार की जिम्मेदारी सिर्फ लता जी पर आ गई और उनके कंधों पे आई, ऐसे कि उन्होंने एक्टिंग भी स्टार्ट की और उसके बाद उन्होंने गाना भी शुरू किया। पर वो रोती थी, चिल्लाती थी और सिर्फ एक ही बात कहती थी, काश मेरे पिता वापस आ जाए। पर कहते हैं ना, ऊपर वाला भी सब कुछ देखता है और उनको एहसास था कि लता कुछ ऐसा कर दिखाएंगी इसी दुख में कि आज वो इस पूरे वर्ल्ड में कहते हैं सबसे सुंदर जिसकी आवाज है, उनका नाम है लता मंगेशकर।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: रेट्रो रिदम। आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में बेखुदी में सनम। बहुत ही प्यारा सा गाना। कहते हैं ना कि जब ये वाली डेट आती है 28 सितंबर की, तब जब लता मंगेशकर जी के जन्म की हम तिथि याद करते हैं तो उनकी हर वो मोमेंट्स को याद करते हैं जो उनकी जिंदगी से कहीं ना कहीं किस्से और हिस्सों में जुड़ी हुई है। तो चलिए जी, हमारे भी हिस्सों में कुछ आपके मैसेजेस हैं, तो बहुत देर से हमने मैसेजेस नहीं पढ़े तो क्यों ना पढ़ लिए जाए। फिया जी साथ दे रही हैं और इन्जॉय कर रही हैं इस प्रोग्राम को, थैंक यू सो मच। यलेश जी, आपको पुराने गाने पसंद आ रहे हैं और आपको हमेशा साथ देते हैं, तो थैंक यू सो मच। आपका ऐसे ही जुड़े रहिए। और हमारी ऐसी कई जनरेशन ऐसी है जो एक एक करके ये लता जी के गानों को कहाँ छोड़ सकते हैं, चाहे महेंद्र कपूर हो, रफ़ी साहब, मुकेश जी हों या किशोर दा हों, ये एक ऐसे लेजेंड्स हैं जिनको शायद दुनिया सालों साल हजारों सालों तक याद रखेगी। मैं तो कहती हूँ सारी जब तक ये कायनात है तब तक उन्हें याद रखा जाए। चलिए जी, अब्दुल एंड सायरा बानो जी साथ दे रही हैं और बहुत ही प्यारे से गाने की फरमाइश के साथ जुड़ी हुई हैं। इंजॉय कीजिए लता जी के ये गाने। वीना जी नोबल फोन से साथ दे रहे हैं और अपने पति देव के लिए एक गाना सुनाना चाहती हैं और उन्हें बस इतना ही कहना चाहती है, प्यार है तुमसे इसीलिए तुम्हारे लिए हर वक्त सोचती रहती हूँ और ये गाने तुम्हारे लिए मांगती रहती हूँ। थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप दोनों का प्यार बना रहे, हमेशा खुश रहें। हरिता अमर कृष्णा ललित जी यूएसए साथ दे रहे हैं और ललित जी के सारे जो कि आज वो नाइट शिफ्ट से मॉर्निंग हो चुकी है वहाँ पर और थोड़ी एक घंटे में हो जाएगी। वो कह रहे हैं हमारे सभी 15 लोग एक साथ जुड़े हुए हैं और ये पुराने गानों को इतना इंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सो मच RM2 रेडियो मस्ती का हमारी ज़िंदगी में आने के लिए। थैंक यू सो मच आपका हमारी ज़िंदगी में आने के लिए और आप सब इंजॉय कीजिए। इसके साथ में अगर आपको भी कोई कॉल करना है तो आप कर सकते हैं, लता जी के बारे में कोई गाना चलाना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए 402-8035 पर और हम आपका साथ देंगे। और साथ में आपको नंबर तो पता ही है कि 5499-1294 पर हम हमेशा साथ रहते हैं आपके मैसेजेस के, तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए, इंजॉय कीजिए पुराने गाने।
1: रेट्रो रिदम RM2 रेडियो मस्त।

Retro Rhythm. 12:53 हो चुके हैं दोस्तों और आप दे रहे हैं साथ मेरा इस समय रेट्रो रिदम में और मैं आपका साथ दे रही हूँ पूनम इस समय। तो एक बात कर रहे हैं हम कि लता जी की ज़िंदगी के बारे में और आपको पता चल ही चुका है कि 28 सितंबर को उनका जन्म हुआ था। एक बार उन्होंने एक गाना रिकॉर्ड किया था 1942 में जो कि मराठी फिल्म सबसे पहली उनकी फिल्म थी कटी हसाल के लिए रिकॉर्ड किया था। लेकिन मज़े की बात वो रही कि वो गाना फिल्म के फाइनल कट में काट दिया गया। उसके बाद उन्होंने कई प्रोड्यूसर से कहा और सब प्रोड्यूसर्स ने उनको हमेशा रिजेक्ट किया क्योंकि उनकी आवाज़ जो थी ना बहुत पतली थी। लेकिन संगीतकार अगर आप सबको पता है कि गुलाम हैदर ने एक बार भविष्यवाणी की कि ये लड़की एक दिन सबको पीछे छोड़ देगी और ये सच हुआ। उन्होंने ज़िंदगी में सबको पीछे छोड़ते चली गई और लता जी के उनके भाई बहन और भी हुए। लता जी के परिवार में सिर्फ वो ही नहीं गाती बल्कि उनकी बहनें आशा भोसले, उषा मंगेशकर, मीना खादी और भाई हृदयनाथ मंगेशकर भी संगीत की दुनिया का एक बड़ा नाम है। उन्होंने सभी ने मिला के ना जाने लाखों गाने गाए हैं और लता जी ने खुद अपनी छोटी बहन आशा को गाना सिखाया और उन्होंने इंडस्ट्री में बस इतना ही कहा, तुम सिर्फ जेन्युइनली सीखो और हमेशा आगे अपने आप बढ़ोगी। जब लता मंगेशकर जी मराठी में गाती थी क्योंकि वो मराठी थी तो उनकी जो टेक्सचर था, जो उनकी ज़ुबान थी वो मराठी वाली थी। तो उन्होंने कई लोगों ने उन्हें कहा कि जब तुम गाती हो तो तुम्हारी आवाज़ में मराठी टेक्सचर आता है, थोड़ी सी आवाज़ में मराठीपन आता है, तो क्यों ऐसे हम कैसे आपको गवाएं। तो उन्होंने कहा आज से इसी वक्त से मैं अपनी आवाज़ के ऊपर काम करूंगी और उन्होंने ऐसा काम किया कि उनके सुर पूरी दुनिया में सबसे अनोखे हो गए। उनकी आवाज़ चाहे वो कोई भी भाषा में

0: जाती थी हमेशा बिल्कुल सेट और बिल्कुल सटीक होती थी।
1: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musty.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musty.
1: Radio Musty.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
3: Time check. दोपहर के 1 बज रहा है. सभी को नमस्कार. आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार करुणा जी से. करुणा जी आपको नमस्कार.
4: नमस्कार पूनम. सभी को नमस्कार. देश के पूर्वी प्रांत लावांचुया में आज सुबह 7:45 के करीब एक जानलेवा सड़क दुर्घटना पेश आई. विविया जुगांपर और झील के बीच सफर तय करने वाली एक एनटीसी बस एक लॉरी से जा टकराई. हादसे में 70 वर्षीय लॉरी चालक की मौत हो गई. कई लोग घायल रहे हैं जिन्हें फ्लाक के साज अस्पताल ले जाया गया. खबरों के अनुसार 14 लोगों को घर जाने दिया गया है जबकि 6 अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं. उधर आज सुबह एनटीसी की कई बस लाइनों में उठल पुठल देखने को मिली क्योंकि कई कर्मचारी काम पर नहीं गए जिसकी वजह से कई बसें चल नहीं पाई. इसका कारण नया रोस्टर है जिसका ट्रेड यूनियन ने ये कहकर विरोध किया है कि काम के घंटे ही ले जिसका जल नवंबर 2026 तक 20% का चिंताजनक स्तर तक पहुंच सकता है. और विदेश में चीन के महान दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एक दूरस्थ हिस्सा उसका पिछले 20 वर्षों से खदान का कचरा फेंके जाने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है. सरकारी मीडिया सीसीटीवी ने बताया कि शांक्सी प्रांत के निंगवू काउंटी में मिंग राजवंश के दौर की इस प्राचीन दीवार के पत्थरों को कोयला खदान के कचरे को ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल किया गया. इसी के साथ समाचार समाप्त हुए. कुछ ही समय बाद शोक समाचार.
5: Your news on MBC Play and MBC.mu.
4: मारिजानी रॉजबेल में 64 साल के 64 ईयर ओल्ड श्री रमेश मुनिया जो उत्तम से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है. अर्थी आज दिन के 1:30 बजे इनकी पत्नी श्रीमती गीता मुनिया के मकान मारिजानी रॉजबेल से उठाकर दाह संस्कार के लिए मारिजानी रॉजबेल की ही स्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टू डेथ 1:30 PM. नंबर 5 एवेन्यू फोवेट सिडना काटरबोन में 68 साल के 68 ईयर ओल्ड श्री सत्यराम धनुकधारी जो प्रदीप से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है. अर्थी आज दिन के 2:30 बजे इनकी पत्नी श्रीमती विद्या धनुकधारी के मकान नंबर 5 एवेन्यू फोवेट सिडना काथोबोन से उठाकर दाह संस्कार के लिए थ्रियानों की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM. और नंबर 42 रुट कोकोटरी रुशबुआ में 69 साल के 69 ईयर ओल्ड श्री मुनिलाल दुला जो रोहित से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं. अर्थी जो हैं कल मंगलवार को दिन के 10 बजे इनके बेटे नेश्वर दुला के मकान नंबर 42 रुट कोकोटरी रुशबुआ से उठाकर दाह संस्कार के लिए सिपाही भूले वालिदे प्रैत्र की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमोरो एट 10 AM. शोकग्रस्त इन परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति.
5: On MBC Play and MBC.mu.
1: Retro Rhythm.
0: RM2.

0: उनका दिल हमेशा एक ही बात कहता था कि मेरा दिल हमेशा के लिए बॉलीवुड के लिए हो चुका है और मैं सारी ज़िंदगी बॉलीवुड में ही रहना चाहती हूँ, मैं कहीं नहीं जाना चाहती। आप जानते हैं कि लता जी ने कभी शादी नहीं की, उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारी थी उनके परिवार की, भाई बहनों की। फिर जब एक उम्र निकल चुकी थी तो उन्होंने कहा नहीं अब मैं क्या शादी करके करूँगी, बट एक उन्होंने बस एक खास इंसान थे उनकी ज़िंदगी में जिनका नाम था राज सिंह डूंगरपुर से, जो कि राजस्थान के थे और एक शाही परिवार के थे, स्पेशली वो एक क्रिकेटर थे, दोनों में एक गहरा लगाव था। कहते हैं कि पूरा परिवार उनको माँ समान ही समझता था। उनके राज सिंह जो डूंगरपुर थे वो ऑलरेडी शादीशुदा थे, उनकी पत्नी थी, उनके बच्चे थे, पर वो हमेशा उनके बच्चे कहते थे कि लता जी का मेरे पिताजी से इतना लगाव है कि वो उनसे उनको इतना माँ जैसा प्रेम मिलता है और आज भी उनके सभी परिवार वाले उनको एक माँ के समान ही समझते हैं। कहते हैं कि लता जी ने जब शादी नहीं की तो उन्होंने अपने भाई बहनों के बच्चों को ही अपने बच्चे समझा और कहते हैं कि बहुत सारे बच्चों के लिए वो बहुत कुछ करती रहीं और ज़िंदगी भर उन्होंने सबका साथ निभाया। चलिए जी, बहुत प्यारे प्यारे से मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, हम आपको इतना ही कहेंगे। 5499124 पर आप मैसेज कर सकते हैं। दो गानों के बाद आपके मैसेजेस लिए जाएंगे और साथ में आपके लिए यही कहेंगे कि आज का दिन सेलिब्रेट कीजिएगा, क्योंकि लता जी बहुत ही खूबसूरत दिल की मलिका थी और कहते हैं कि खूबसूरत आवाज़ की कहते हैं सरस्वती थी और सरस्वती की वंदना जिस तरीके से की जाती है उसी तरीके से हम आज लता जी के लिए वंदना करते हैं और उम्मीद करते हैं जहाँ भी उनकी आत्मा हो हमेशा खुश रहें और हमेशा अपनी ज़िंदगी, आज नहीं है पर जहाँ भी उन्हें कोई ज़िंदगी मिले तो बहुत प्यार मिले उन्हें।
1: Retro Rhythm RM2

0: रेट्रो रिदम।
1: 1:21 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने प्रोग्राम रेट्रो रिदम के साथ। और आप जानते हैं कि जो टाइम है ना, इस समय जब हम ये दोपहर के टाइम में ये ऐसे गाने सुनते हैं तो एहसास होता है कि कितने कहते हैं दिन भी बन जाता है, मॉर्निंग भी हो जाती है और फिर शाम तक के लिए इतनी ताकत मिल जाती है कि एहसास होता है कि अरे हमें अब और कुछ नहीं सुनना। ये इसी इन्हीं गानों का कमाल है। तो देखिए 1974 में लता जी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया दुनिया के सबसे ज़्यादा रिकॉर्डिंग करने वाली कलाकार के रूप में। उस समय उन्होंने 25,000 ही सॉन्ग्स गाए थे, यानी कि 25,000 गाने ही गाए थे। बाद में 30,000 तक भी जो उनकी पार हो गई थी लाइन, और उन्होंने उसके बाद और भी गाने गाए। और कहते हैं कि 36 लैंग्वेजेस में उनको गाने गाने आते थे, मतलब उनको इतनी कमांड थी उनकी लैंग्वेज में कि वो जो भी भाषा सुनती थी बट वो सब समझ जाती थी। इतनी छोटी उम्र से उन्होंने ये सीखा। और कहते हैं कि 36 लैंग्वेज में गाना आसान नहीं होता। तो चलिए जी, 2-3 मैसेजेस के साथ में आगे और बढ़ते हैं। रोजिल से हमारी एक लिसनर हैं, उनके आज दामाद का वो है बर्थडे। उनका नाम है फिरोज़ा मोहिनी, जो कि उनकी कज़न है, उनका नाम है छोटी। और वो कह रहे हैं कि प्लीज़ उनके लिए गाना ज़रूर चलाएगा और बहुत ही प्यार से उन्होंने मैसेज किया है। साथ में सत्यंती जी एक गाना सुनना चाहती है आपको। मैंने बता ही दिया कि 30,000 गाने हैं और सभी अपने अपनी पसंद के चाह रहे हैं, पर आज एक स्पेशल प्रोग्राम है तो हमने तो गाने ऑलरेडी सेट कर रखे हैं, बट 2-3 जो आपका भेज रहे हैं हम ज़रूर चला रहे हैं। साथ साथ उषा जी हैं, आज उनके भी दामाद का जन्मदिन है और सास और बच्चे और परिवार के सभी लोगों ने आशीर्वाद भी दे रहे हैं और कह रहे हैं उषा जी कि मेरा दामाद इतना अच्छा है कि वो अपने पूरे घर का ख्याल रखता है और साथ में इतना प्यार देता है वो सभी को। तो हम तो यही चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ आती रहें और साथ निभाते रहिए। संगीता जी साथ दे रही हैं और उनके परिवार के लिए एक प्यारा सा गाना की फरमाइश कर रही हैं, बिल्कुल हम चलाएँगे। नंदा जी एंड सोनी जी साथ दे रही हैं और कल्याणी जी सेतुल जी उनके लिए एक गाने की फरमाइश कर रही हैं और कह रही हैं प्लीज़ ज़रूर चलाएगा। जीना जी पेरिस से साथ दे रही हैं और बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश की थी, पर तब तो हम नहीं चला पाए क्योंकि उस समय हम लता जी के बारे में कुछ बता रहे थे। तो चलिए भाई, अब जो गाना आएगा वो जीना जी आपके लिए होगा। और डैरन मालिनी, रविश प्रिशा लुवेशा आपादू फैमिली साथ दे रही हैं और इन्जॉय कर रही हैं। अविनाश जी अपनी वाइफ के लिए एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रहे थे, पर आज वही हम सभी को बता रहे हैं कि आज स्पेशल लता जी के लिए प्रोग्राम है, तो आपने जो गाने की फरमाइश किया आज तो नहीं पूरी हो सकती। हाँ नहीं, पर 1 घंटे के बाद यानी कि जो परी शो करेंगे मैं उनको ज़रूर बताऊँगी कि अगर वो आपके लिए ये गाना चला सकें तो। बट हम आपको इतना ही कहेंगे, जुड़े रहिए RM2 रेडियो मस्ती के साथ।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2

0: रेट्रो रिदम। 1:37 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही रेट्रो रिदम के साथ, और आपका साथ निभा रही है इस समय पूनम। लता जी ने मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, मुकेश जी के लिए एसपी बाला सुब्रमण्यम, कुमार सानू, उदित नारायण, हर बड़े गायक के साथ गाने गाए। किशोरदा के साथ तो उनकी ऐसी जोड़ी जमती थी कि किशोरदा इतना उनको हंसाते थे, उन्हें रिकॉर्डिंग नहीं करने देते थे, हमेशा हंसा हंसा के उनके पेट में दर्द हो जाता था और हमेशा वो कहती थी पहले इसको भगा दो, पहले मेरे से गवा लो या इससे गवा लो, उसके बाद मैं आऊंगी। पर फिर भी वो अपनी मस्ती कभी नहीं छोड़ते थे और वो अपनी दीदी जैसे मानते थे और हमेशा कहते थे कि दीदी जब तक आप सामने होती हो ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं तभी गा पाता हूँ। लता जी ने अपने करियर के में आशा भोसले के लिए तकरीबन उनके साथ 80 गाने गाए, यानी 80 गाने गाए, और चाहे मन क्यों बहका जो कि उत्सव मूवी थी 1984 में बहुत ही मशहूर हुई थी वो मूवी, और 7 दशक के करियर में उन्होंने 1940 से लेके 2000 के दौर तक हर हीरोइन के लिए आवाज़ दी। नरगिस के लिए से लेकर प्रीति जिंटा तक उन्होंने हर किसी के लिए गाने गाए, और हर कोई एक्ट्रेस चाहे वो कोई भी हो वो यही कहती है, चाहे कोई वर्ल्ड में कोई एक्टर हो वो भी यही कहते हैं कि जैसी आवाज़ लता जी की थी शायद ही दुनिया में किसी और की हो पाएगी। चलिए जी 2-3 प्यारे प्यारे से मैसेज ले लेते हैं इस समय। डैरन, रविश, प्रशा, लोवेशा सभी साथ दे रहे हैं, और इसके साथ में हमारे बहुत सारे ऐसे लिसनर्स हैं जो अभी अभी जुड़े हैं, यानी कि देव जी साथ दे रहे हैं हमारे लिए, कहते हैं कि पेरिस से, और अपनी वाइफ के लिए एक प्यारा सा गाने की फरमाइश कर रहे हैं, और बस इतनी मोहब्बत से कह रहे हैं कि प्लीज़ ज़रूर चलाइएगा क्योंकि मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ। तो हम तो कहेंगे सारे गाने आप सभी के लिए इंजॉय एटलीस्ट कीजिए।
1: रेट्रो रिदम। RM2

Retro Rhythm. एक बजकर 1:50 हो चुके हैं और आप इस समय जुड़े हैं रेट्रो रिदम के साथ और आरएम टू रेडियो मस्ती, जो कि आपके लिए लेकर आता है हमेशा ऐसे गाने, ऐसे प्रोग्राम्स जिससे आपका दिल बहुत खुश हो जाता है। तो चलिए जी, हम बात कर रहे हैं आज लता मंगेशकर जी के जन्मदिन की और आप सभी को

0: पता होगा कि लता जी को पद्म विभूषण अवार्ड जो कि मिला था 1969 में, दादा फाल्के अवार्ड मिला 1989 में, पद्म विभूषण अवार्ड मिला 1999 में और भारत रत्न अवार्ड मिला 2001 में। उनको इस इन अवार्ड से इतना प्यार नहीं था, वो हमेशा कहती थी मैं इतना मुझे इतने अवार्ड देती हूँ और किसी को दो, पर हिंदुस्तान कहता है, भारत कहता है कि आपको इन नामों से, इन अवार्ड से नवाजा जाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा फ्रांस का लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड 2007 को भी उनको मिला और भारत रत्न पाने वाली सिर्फ दूसरी महिला और पहली जो महिला है ब्लैकबैक सिंगर थी जो कि वहाँ पर है। और यहाँ पर हिंदुस्तान में एक ऐसी कलाकार जिनकी आवाज़ 1940 से चल रही थी और बस चलती गई, और हम तो यही कहेंगे जहाँ भी रहे उनकी सोल को हमेशा खुशी मिलती रहे, क्योंकि वो हमारे लिए वो देके जा चुकी हैं जो शायद सालों साल तक ये हमारी एक धरोहर बनकर रह जाएगी। तो हम तो बस यही चाहेंगे कि आप सबका साथ मिला इन प्यारे से प्रोग्राम के लिए, आप सब अपने घर में खुश रहेगा, एंजॉय कीजिएगा, मुझे दीजिए इजाजत, पर मेरे बाद आपको साथ मिलेगा परिका।
1: रेट्रो रिदम RM2

0: La MBC se réinvente et vous accompagne désormais partout. Retrouvez toute la richesse des contenus de la MBC sur nos nouvelles plateformes digitales. Avec MBC Now, notre nouvelle page Facebook, restez connectés à l'actualité, découvrez les temps forts de nos émissions et ne manquez aucune nouveauté. Avec l'application mobile MBC Play ainsi que notre nouveau site web mbc.mu, regardez vos chaînes TV en direct, écoutez vos radios préférées en live, suivez le JT, les courses hippiques, consultez la programmation et profitez du replay ou que vous soyez à la maison, au bureau ou en déplacement, la MBC est désormais accessible sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur ou votre Smart TV. MBC Now, MBC Play, MBC.mu, toute la MBC partout avec vous. Plus d'infos sur le 402 8000.
1: RM2 Radio Mystique.
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
1: Radio Musty.
4: North, South,
1: 103.5.
4: East, West,
1: 96.4.
4: Center,
1: 99.4.
5: RM2 Radio Musty.
1: Radio Musty.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
6: Time check, 2 p.m. सुनते हैं देश विदेश की खबरें करुणा जी से. आपको नमस्कार.
7: नमस्कार परी, सभी को नमस्कार. देश के पूर्वी प्रांत लावांचुया में आज सुबह 7:45 के करीब एक जानलेवा सड़क दुर्घटना हुई. गिव्या जगह पर रोजहिल के बीच सफर करने वाली एक एनटीसी बस एक लॉरी से जा टकराई. हादसे में 70 वर्षीय लॉरी चालक की मौत हो गई.

0: बारे में दक्षिण अफ्रीकी मूल की 58 वर्षीय महिला तब मारी गई जब उनका 4x4 रास्ते से हटकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चोटों के कारण उनकी जान बच नहीं पाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उनके लीवर में गंभीर रूप से फटने की चोट थी। दूसरी दुखद घटना दक्षिण में स्थित पोनाचुगल की चट्टानों पर हुई। 29 वर्षीय भारतीय श्रमिक सेल्फी लेने की कोशिश करते समय अपना संतुलन खो बैठा और समुद्र में गिर गया। उन्हें लहरें बहा कर ले गई। वो एक रेस्टोरों में वेटर के रूप में काम करता था। राष्ट्रीय तटरक्षक बल के गोताखोरों और पुलिस के हेलीकॉप्टर सहित बड़े पैमाने पर बचाव दल को तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया। खराब मौसम के कारण खोज अभियान में मुश्किलें आ रही हैं। खोज अभियान आज भी जारी है। इस बीच आज सुबह एनटीसी की कई बस लाइनों में उठल पुथल देखी गई, क्योंकि कई कर्मचारी काम पर नहीं गए, जिसकी वजह से कई बसें चल नहीं पाईं। इसकी वजह नया रोस्टर है, जिसका ट्रेड यूनियन ने ये कहकर विरोध किया है कि काम के घंटे बढ़ाए गए हैं जबकि अदायगी कम हुई है। और विदेश में दक्षिण पश्चिमी इंग्लैंड में एक आतंकवादी हमले की साजिश करने के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। संदिग्धों पर विस्फोटकों से संबंधित अपराधों में शामिल होने का शक है। ये घटना अमेरिकी वायुसेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हवाई अड्डे फेयरफोर्ड एयरबेस के पास हुई। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय बाद शोक समाचार। रोटवायल पेचित पॉइंट पीमा में 84 साल की 84-year-old श्रीमती सनमती बंधु पैदाइशी नाम भीमल, जो धनपति से जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुपहर 3 बजे इनके बेटे शिव बंधु के मकान रल रोड पेचित पॉइंट पीमा से उठाकर दाह संस्कार के लिए पैंतोपीमाओं की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमिशन टुडे एट 3 PM नंबर 13 रू असाइलम बॉकली बोबासा में 88 साल की 88-year-old श्रीमती जनाएगी लक्ष्मण पैदाइशी नाम कतारी, जो राधा से जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे इनके मकान नंबर 13 असाइलम गली बॉकली बोबासे से उठाकर दाह संस्कार के लिए कौलव्यू की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM और नंबर 5 एवेन्यू फोवरेट सदना काठोबोन में 68 साल की 68-year-old श्री सत्यराम धनुकधारी जो प्रदीप से जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:30 बजे इनकी पत्नी श्रीमती विद्या धनुकधारी के मकान नंबर 5 आविनी फोवेट सुदना काठोबोन से उठाकर दाह संस्कार के लिए थियानों की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
1: More music in the mix.
2: Aaj Azadi hai.
3: Bombay Talkies.
4: Radio Musti.
5: Radio Musti.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: So that was a beautiful track, Rangi Yara from the film Haiwan. और इस फिल्म में हमने देखा that अक्षय कुमार and सैफ अली खान दोनों एक साथ नजर आए after many years. और उसके साथ साथ हमने देखा combination of Sukhvinder Singh and Shaan. Yes, two legends singing field से और उनको अभी हमने साथ गाते हुए सुना after years. And yes, that was a beautiful combination. और इसी गाने के साथ warm welcome हमारे सभी listeners जो साथ दे रहे हैं 2:08. So I do hope this Monday afternoon is a special one. मैं हूं परी आपके साथ 2 से लेकर 4 बजे तक बी टाउन की गर्मा गर्म खबरें आपके लिए लेकर आए हैं बॉम्बे टॉकीज जहां पर अभी से लेकर दिन के 4 बजे तक गपशप होने वाली है साथ में कुछ लेटेस्ट ट्रैक्स जो आपकी इस आफ्टरनून को स्पेशल बनाने वाले हैं एंड आफ्टर वीकेंड मंडे यस थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है लेकिन नॉट टू वरी गुड म्यूजिक के साथ आपके दिल को बहलाए रखेंगे स्टे कनेक्टेड मैसेजेस डेडिकेशंस 5499 1294 पर

0: बम भोले, भोले बम भोले, भोले बम भोले।
1: Talkies, Radio Musty.
2: Radio Musty.

और चलिए दोस्तों, दैट वाज द पार्वती सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म हनुमान अंश, जो हो रहा है वेरी वेरी पॉपुलर फिल्म, तो हो गई है सुपर डुपर हिट और तोड़ दिए है इसने सारे रिकॉर्ड्स। लेकिन अब हम एक ऐसे एक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों में कई रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, एंड यस, वन एंड ओनली अक्षय खन्ना। रहमान दकैत के नाम से जाने जाने वाले और साथ ही आपको बता दें दैट फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से पहचान बनाने वाले अक्षय खन्ना अब अपनी नई प्रॉपर्टी को लेकर चर्चाओं में हैं। एक्टर ने मुंबई के पॉश इलाके मालाबार हिल में 33.26 करोड़ का आलिशान अपार्टमेंट खरीदा है और ये जानकारी महाराष्ट्र के IGR की वेबसाइट पर मौजूद प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों के जो रजिस्ट्रेशन नंबर्स हैं उसमें शामिल है और ये लेन देन सितंबर 2026 में रजिस्टर हुआ था। सो वेल, आपको बता दें मालाबार हिल मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित और महंगे रिहायशी इलाकों में से एक है। साउथ बॉम्बे के स्थित ये इलाका अपने प्रीमियम घरों और शांत माहौल के लिए जाना जाता है, एंड अरेबियन सी के किनारे बसे इस इलाके में नेपियन सी रोड, वाक्श्वार रोड, पेडर रोड जैसी प्रमुख सड़कों के जरिए अच्छी कनेक्टिविटी मिलती है और यहाँ मरीन ड्राइव, नरिमान पॉइंट और कोलाबा तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। समय के साथ मालाबार हिल एक खास रिहायशी इलाके के रूप में विकसित हुआ है और वहाँ पर काफ़ी सारे लग्जरी अपार्टमेंट्स, टावर्स भी है, काफ़ी सारे फेमस सेलिब्रिटीज़ वहाँ पर रहते हैं और अब अक्षय खन्ना ने अपनी प्रॉपर्टी वहाँ पर खरीदी है। सो यहाँ पर हम जान सकते हैं दैट धुरंधर के बाद ही इज ऑल सेट अपनी इस सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं, जहाँ पर हम जानते हैं दैट वो पहले काफ़ी दूर रहते थे और वो मुंबई में नहीं बल्कि वो अलग जगह पर रहते थे और वहाँ से उन्हें ट्रैवल के लिए काफ़ी जाने के जो शिप्स हैं ये सब लेना पड़ता था, क्रूज से वो ट्रैवल करते थे और उसके बाद अब मुंबई में उन्होंने घर खरीद लिया है इन मालाबार हिल, जहाँ पर काफ़ी सारे ऑलरेडी सेलेब्स रहते हैं। सो अब इनका नाम भी शामिल हो गया है और अब लगता है कि उनके पास काम कुछ ज़्यादा है और इसके लिए वो ट्रैवलिंग में टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते हैं और इसी के चलते उन्होंने घर खरीदा है इन साउथ बॉम्बे। सो अभी के लिए तो वहाँ आसपास रहने वाले लोग काफ़ी एक्साइटेड, स्पेशली उनके फैंस जो आसपास रहते हैं, सुपर एक्साइटेड। अक्षय खन्ना अब मालाबार हिल में रहने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर आप भी हमारा साथ दे रहे हैं, तो जैसे हमने कहा कि फेमस आपके जो सेलिब्रिटीज़ हैं इनकी बातें तो होती रहती है, साथ ही बी टाउन से जुड़ी खबरें भी हम आप तक पहुँचाते हैं। कौन सी फिल्म अच्छा काम कर रही है, कौन सी फिल्म जिससे उम्मीदें रखी जा रही थी वो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, इन सब के बारे में बात होगी लेकिन कुछ गानों के बाद।

0: social excellence.
1: RM2
2: Radio Musti.
3: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगा, लच्छास, जोधपुरीज, साड़ीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड अपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
4: जब बात यार्ड सेल की होती है तो हम ख्वासिसा की ही बात करते हैं। जब बात जबरदस्त ऑफर्स की होती है तो हम ख्वासिसा की बात करते हैं। और जब बात बहुत कम कीमतों की होती है तो ख्वासिसा की ही बात होती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि 1, 2 और 3 अक्टूबर को ग्रैंड ख्वासिसा यार्ड सेल होने जा रहा है लुशी पार्क जिनफई रिश्ते में। वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, फोन, लैपटॉप और छोटे छोटे अप्लायंसेस पर 80% के डिस्काउंट, यानी शॉपिंग का एक जबरदस्त मौका। और वहां पहुंचना भी बहुत आसान है, गौजिरो से फ्री शटल सर्विस अवेलेबल होगी। तो डेट अच्छी तरह याद रखना, 1, 2 और 3 अक्टूबर।
1: RM2
2: Radio Musti.

0: सो वेल फ्रेंड्स, बी टाउन की खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं 2:29 और सोमवार को मुंबई इनकम टैक्स विभाग ने बॉलीवुड से जुड़े कई ठिकानों पर अचानक कार्रवाई शुरू की और मामले में रकुलप्रीत सिंह और वासु भगनानी समेत कई नाम रडार पर बताए जा रहे हैं। और आज ही के दिन मुंबई इनकम टैक्स विभाग ने बॉलीवुड से जुड़े कई ठिकानों पर अचानक कार्रवाई शुरू की है। इसके तहत विभाग ने कई बड़े प्रोडक्शन हाउस और फिल्मी हस्तियों के ठिकानों पर जांच शुरू कर दी है। मामले में रकुलप्रीत सिंह और वासु भगनानी समेत कई नाम रडार पर बताए जा रहे हैं। बता दें कि रकुलप्रीत सिंह वासु भगनानी के बेटे जैकी भगनानी की पत्नी है और इस रेड के जरिए विभाग फिल्मों के नाम पर विदेशों में पैसे भेजने के आरोप की पड़ताल कर रही है। जानकारी है कि टैक्स चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के संदेह में ये कार्रवाई की जा रही है और इस कार्रवाई में बॉलीवुड इंडस्ट्री में हलचल अब बढ़ गई है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर बॉलीवुड सितारे तो आ गए हैं रडार पर, इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं, लेकिन चलिए यहाँ पर हम तो आपके लिए गुड म्यूजिक लेकर आए हैं, बी टाउन की खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, आप भी साथ दे रहे हैं तो आपके मूड को थोड़ा सा चेंज करते हैं। रेट्रो एक्सप्रेस एंड वी हैव दिस गाना आपके नाम फॉर एवरीवन हुज कनेक्टेड रेडियो मस्ती के साथ। इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज परी का साथ दिन के 4 बजे तक।
1: RM2 Radio Mastee.

0: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत होवा तो भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी, सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोड़ी फैशन, रॉयल रोड, पॉम्पली मिसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799378। हलकोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और कारीते।
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: welcome to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
4: Time check, 3 p.m. सुनते हैं देश विदेश की खबरें करुणा जी से. आपको नमस्कार.
5: नमस्कार परी, सभी को नमस्कार. देश के पूर्वी प्रांत लावांचुया में आज सुबह एक जानलेवा सड़क दुर्घटना हुई. एक एनटीसी बस और एक लौड़ी के बीच हुई टक्कर में 70 वर्षीय लौड़ी चालक की मौत हो गई. बस में 20 लोग सवार थे जिनमें से 6 अभी भी फ्लाक के साज अस्पताल में भर्ती हैं. उधर तमागे में दक्षिण अफ्रीका मूल की 58 वर्षीय महिला तब मारी गई जब उसका 4x4 रास्ते से हटकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया लेकिन चोटों के कारण उसकी जान बच नहीं पाई. पोस्टमार्टम से पता चला है कि उसके लीवर में गंभीर चोट लगी थी. एक और हादसा देश के दक्षिण में स्थित पोना चुगैल की चट्टानों पर 29 वर्षीय भारतीय श्रमिक सेल्फी लेने की कोशिश करते समय अपना संतुलन खो बैठा और समुद्र में गिर गया. लहरें उसे बहा कर ले गई. वो एक रेस्टोरेंट में वेटर के रूप में कार्यरत था. नेशनल कोस्ट गार्ड के गोताखोरों और पुलिस के एक हेलीकॉप्टर सहित बड़े पैमाने पर बचाव दल को

0: को तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया। खराब मौसम के कारण खोज अभियान में मुश्किलें आ रही हैं। खोज अभियान आज सुबह फिर से शुरू किया गया। 9 से 20 नवंबर तक तुर्की के अंटाल्या में लगने वाले कप 31 सम्मेलन में हिंद महासागर के द्वीप जलवायु से जुड़े मुद्दों पर एकजुट होकर अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं। इसी संदर्भ में आज सोमवार को कोडाउट सेंटर में एक क्षेत्रीय संवाद शुरू किया गया। सरकारों, नागरिक समाज और युवाओं के लगभग 60 प्रतिनिधि 2 दिनों तक विचार विमर्श में भाग ले रहे हैं ताकि साझा प्राथमिकताएं तय की जा सकें। आज सुबह एनटीसी की कई बस लाइनों में उठल पुथल देखी गई क्योंकि कई कर्मचारी काम पर नहीं गए, जिसकी वजह से कई बसें चल नहीं पाई। इसकी वजह नया रोस्टर है, जिसका ट्रेड यूनियन ने ये कहकर विरोध किया कि काम के घंटे बढ़ाए गए हैं जबकि अदायगी कम हुई है। और विदेशी स्तर पर फ्रांसीसी अधिकारियों के अनुसार सोमवार को इंग्लिश चैनल पार करते वक्त एक हादसा पेश आया। फ्रांस से ब्रिटेन जाने की कोशिश कर रहे प्रवासियों की नाव समुद्र में डूब गई, जिससे 3 प्रवासियों की मौत हो गई। इनमें एक बच्चा और 2 महिलाएं शामिल हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय बाद शोक समाचार। आंख काटों ओकुले में 51 साल की 51-year-old श्री शास्त्री गंगाना जो बुडो से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके भतीजे विराज गंगाना के मकान आंख काटों ओकुले से उठाकर दाह संस्कार के लिए पैनमानियों की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। शोकग्रस्त इस परिवार के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
1: More music in the mix.
2: Aaj Azadi hai.
3: Bombay Talkies. Radio Musti.
4: Radio Musti.

0: म्यूजिक ऑल डे लॉन्ग रेडियो मस्ती सुनते रहो।
1: और चलिए दोस्तों, इस हवा में आपका हम वेलकम कर रहे हैं एंड इट्स योर वॉर्म वे टॉकीज 3:07 मंडे आफ्टरनून 28th of September। आई डू होप दैट यू एंजॉयिंग योर मंडे। वैसे मंडे कौन एंजॉय करता है, लेकिन हम करते हैं क्योंकि हम ब्यूटीफुल गाने आपके लिए लेकर आते हैं। वीकेंड के बाद मंडे आया तो क्या हुआ, बस गुड विशेज आप तक पहुंचा रहे हैं कि पूरा हफ्ता आपने जो सपने देखे हैं उसकी तरफ आपका एक और कदम बढ़ जाए और जो भी आपके विशेज हैं वो फटाफट जल्दी जल्दी पूरे हो जाए। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए मैं हूं परी आपके साथ, दिन के 4 बजे तक आपका साथ हम निभाएंगे विद सम लेटेस्ट ट्रैक्स एंड सम लेटेस्ट बॉलीवुड अपडेट्स।

तो चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं इन गानों को आप पसंद कर रहे हैं बिकॉज ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आपके लिए हमेशा चलते हैं मॉर्निंग टू नाइट बिकॉज ये है आपका RM2 रेडियो मस्ती. फॉर नाउ मस्ती को जारी रख रहे हैं बिकॉज कुछ लेटेस्ट ट्रैक्स और कुछ गाने ऐसे भी जो शायद आपको गुनगुनाने में मजा आए, कुछ गाने ऐसे जो आपको थोड़ा सा रोमांटिक फील करवाएं. मंडे है तो क्या हुआ, दिल का एहसास तो हम हमेशा ऐसे ही बनाए रखते हैं, जहां पर आपका दिल हैप्पी तो हम भी हैप्पी. सो बस हमारे साथ गुनगुनाते रहिए, अपने मंडे को एंजॉय करते रहिए एंड वी हैव दिस ब्यूटीफुल ट्रैक फॉर ऑल द फैंस ऑफ अरिजीत सिंह.

0: एंड एक और प्यारा सा गाना आप सभी के लिए जिस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम भी आपके लिए कुछ खबरें लेकर आते हैं। बी टाउन से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर आपके फेवरेट सेलेब्स से जुड़ी हुई कुछ खबरें, सब आप तक पहुंचाते हैं। और चलिए बता दें, आयुष्मान खुराना की अपकमिंग फिल्म उड़ता तीर का ट्रेलर बीते दिनों रिलीज हुआ है और दर्शकों ने इसे काफी पसंद भी किया है। अब इसकी रिलीज का इंतजार है और उड़ता तीर एक स्पाई कॉमेडी है। आयुष्मान खुराना इन दिनों फिल्म के प्रमोशन में जुटे हैं और वो हाल ही में समय रैना के शो इंडियाज गोट लेटेंट सीजन 2 में पहुंचे। यहां पर अचानक इस फिल्म का कनेक्शन अदनान सामी के साथ जोड़ा गया। और आपको बता दें, आयुष्मान खुराना की फिल्म उड़ता तीर एक पाकिस्तानी जासूस पर आधारित है। यह मुख्य भूमिका आयुष्मान खुराना ने निभाई है, मगर फिल्म का कनेक्शन अदनान से अचानक कैसे जुड़ा, चलिए आपको बता दें। दैट समय रैना के शो में आयुष्मान खुराना ने अपनी फिल्म के बारे में बताने के लिए कुछ बातें कही। उन्होंने जब बताया कि फिल्म में वो एक पाकिस्तानी जासूस है तो जो भारत आता है और यहां उनकी आकर उनकी याददाश्त चली जाती है। आयुष्मान आगे कहते हैं कि जासूस जो है वो देशभक्ति याद करता है, लेकिन देश कौन सा है ये भूल जाता है। और इस पर शो पर मौजूद एक कॉमेडियन ने मजाकिया अंदाज में कहा कि वो आयुष्मान का किरदार अदनान सामी है और ये तो हम जानते हैं दैट अदनान सामी इज अ पाकिस्तानी, लेकिन इंडिया में आकर भी वो इतनी प्यारी बातें करते हैं, इतनी अच्छी बातें करते हैं, और ये तो हम जानते हैं कि ये जो दुश्मनी दिखाई जाती है इन बॉलीवुड, वी डोंट नो व्हाई इट इज, दोनों ब्यूटीफुल देशेस है, दोनों ही ब्यूटीफुल प्यारे लोग वहां पर रहते हैं और इन देशों की दो डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं एंड वी ऑलवेज अप्रिशिएट, यहां पर भी हमारे इतने सारे दोस्त हैं। सो आई गेस कि इस फिल्म में ये दोस्ती का जो रिश्ता है उस पर फोकस किया जाएगा एंड उड़ता तीर आयुष्मान खुराना इसमें नजर आने वाले हैं। लुक्स काफी इंटरेस्टिंग, लुक्स काफी प्रॉमिसिंग, लेट्स वेट एंड वॉच कि अब ये फिल्म क्या कमाल दिखाती है।
1: ये

सुवेल राघव चैतन्य और तुलसी कुमार की आवाजें, ब्यूटीफुल रोमांटिक गाना फ्रॉम द फिल्म घुड़चढ़ी। इस गाने को हम डेडिकेट कर रहे हैं हमारे सभी लिसनर्स के नाम जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस का हम इंतजार कर रहे हैं, लेकर आएंगे थोड़ी ही देर में ऑन 5499-1294। तब तक के लिए एंजॉय दिस ब्यूटीफुल गाना परी का साथ, एंड दैट्स योर बॉम्बे टॉकीज़ ऑन रेडियो मस्ती।

और चलिए दोस्तों अभी के लिए हमारा साथ दे रहे हैं आप और आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे ही कुछ ब्यूटीफुल ट्रैक्स जैसे हमने वादा किया था योर मैसेजेस योर डेडिकेशंस ये तो बनते हैं ऑन 5499 1294 सो अभी के लिए जितने भी लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं थैंक यू सो मच आपने चुना है रेडियो मस्ती को और यहाँ पर आपकी लाइफ में मस्तियाँ हम कभी कम नहीं होने देंगे ऐसे ही ब्यूटीफुल ट्रैक्स के साथ आपके दिल को लुभाते रहेंगे आपके दिल को बहलाते रहेंगे सो आगे ही यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस और आपके डेडिकेशंस 5499 1294 पर दावे से लाल माती से कह रहे हैं दैट साथ दे रहे हैं हम भी सो गाना होगा आपके नाम और वेल यहाँ पर मीता जी हमारा साथ दे रहे हैं आप भी देखिए लेटेस्ट ट्रैक्स तो ऐसे ही होते हैं और लेटेस्ट गाने हम चलाते हैं ताकि आप लेटेस्ट गानों को सुन सके और जो भी डिफरेंट सॉन्ग्स हैं वो 2 से लेकर 4 बजे तक हम आपके लिए चलाते हैं सो थैंक यू सो मच मीता जी आपने चुना रेडियो मस्ती को और साथ देने के लिए थैंक यू शुक्रिया साथ ही यहाँ पर कहते हैं गाना हो जाए फॉर बॉस विशान आज उनका बर्थडे है एंड सभी स्टाफ की ओर से उनके लिए बहुत सारी गुड विशेज विशान कांतिया अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं आज इस अगोरी गुड विशेज ऑन योर स्पेशल डे हमारी प्यारी सी गायत्री जी आई हैं अपनी प्यारी फुल स्वीट प्यारी प्यारी ब्यूटीफुल स्माइल के साथ प्यारी और ब्यूटीफुल मिक्स हो गया प्यारी फुल हो गया तो चलिए यहाँ पर गायत्री जी थैंक यू सो मच साथ दे रही हैं आप और अच्छा लगा दैट आप हमारे साथ कनेक्टेड हैं सो अगला गाना आपके नाम फॉर योर स्वीट family for your lovely daughters and for your hubby dearest avinash hamara saath de rahi hain aur kehti hain meri wife meenakshi ke liye ek gana please play kar dijiye unka koi bhi favorite gana aap chalaiye aur bilkul koshish karenge ki aise pyare gaane hum aapke liye chalate rahein साथ ही यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और रीमा श्यामा रानी रितेश आदर्श तनीश विद्या और जयश्री युषरा वशिष शकील सभी जीवन परिवार बेल ऐसे हमारा साथ दे रहे हैं और कहते हैं गाना गोज आउट फॉर द वंडरफुल टीम ऑफ रेडियो मस्ती थैंक यू सो मच हमेशा हमें भी याद करते हैं तो हमें अच्छा लगता है सो अगला गाना होगा आपके नाम ललिता जी आ गई हैं काम से वापस गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के साथ यू एंजॉइंग द सॉन्ग्स और डेडिकेट कर रहे हैं गाना फॉर शाम ललिता जीतन कुमार देवीचंद पेबे से हमारा साथ दे रहे हैं सो फॉर स्वीट फैमिली थैंक यू सो मच साथ देने के लिए शुक्रिया और ऐसे ही आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस ऑन 5499 1294 चलिए सो वी हैव द सुपर रोमांटिक गाना फ्रॉम द फिल्म सैयारा फहीम अब्दुल्ला की आवाज ये गाना हम डेडिकेट कर रहे हैं आप सभी के नाम जो साथ दे रहे हैं ऑन रेडियो मस्ती एंजॉय दिस वन दैट्स योर बॉम्बे टॉकीज़

0: Radio Musti.
1: Your life is not complete until you have a little musti in your life. Radio Musti. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musti.
0: Radio Musti.
2: वेल फ्रेंड्स, विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक साज भट्ट की आवाज और इसी गाने के साथ परी साइनिंग ऑफ आ रही है गिनीश आलेकरी और रफ्तार वाइब्स। उनकी खूबसूरत आवाज और ब्यूटीफुल गीतों के साथ वो आपको एंटरटेन करेंगी, सो उनका साथ निभाइए और हमें दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी कल सेम प्लेस सेम टाइम 2 से लेकर 4 बजे तक इन योर बॉम्बे टॉकीज़।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती
2: रेडियो मस्ती।
3: The time is brought to you by
4: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
3: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
1: Radio Musti.
5: North, South,
6: 103.5.
5: East, West,
6: 96.4.
5: Center,
6: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti. The Musti. The Musti.
7: शकियो टाइम स्टूडियो की घड़ी में एग्जैक्टली 6:04 बज रहे हैं। ये सुनते हैं समाचार करोना के साथ। नमस्कार।
8: नमस्कार गिनीशा, सभी को नमस्कार। आज सुबह पोर्टू में शुगर सिंडिकेट की सालाना महासभा लगाई गई, जिसके दौरान सचिन सुकना नई अध्यक्ष चुने गए। वे निकोला मिगहो की जगह ले रहे हैं, जिनका ये कहना है कि 2025 में चीनी से होने वाली आमदनी 10.4 बिलियन रुपये पार कर गई। उन्होंने कृषि उद्योग मंत्री से बागास के दाम पर फिर से गौर करने की भी मांग की, जबकि मंत्री अरविंद बुलेल ने गन्ने सेक्टर के लिए श्रम शक्ति मजबूत करने के वास्ते दिसंबर में 600 विदेशी कामगारों के आगमन का ऐलान किया। क्वालिटी बेवरेजेस लिमिटेड ने 100% रिसाइकल की जा सकने वाली पेट बोतलों की एक नई उत्पादन लाइन में 300 मिलियन से अधिक रुपए का निवेश किया है। इसकी लॉन्चिंग आज की गई। अवसर पर मंत्री राजेश भागवान ने घोषणा की कि उनका मंत्रालय ऐसा नियम तैयार कर रहा है, जिसके तहत उत्पादकों को अपने उत्पादों के संग्रह और रिसाइकलिंग का खर्च वहन करना होगा। वहीं एसएमईज मंत्री आदिल अमियामिया ने बताया कि तैयार किया जा रहा इंडस्ट्री बिल औद्योगिक विकास के लिए एक आधुनिक ढांचा प्रदान करेगा, जिसमें विविधीकरण और मजबूती पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दुनिया भर में पेय पानी का भंडार लगातार कम हो रहा है और कि 2025 तीन दशकों से ज़्यादा अवधि के लिए

0: सबसे सूखा साल रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा प्रकाशित हालिया रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया गया। मॉरिशस भी इससे बचा नहीं है। उदाहरण के लिए माहोवाक्वा को ही लें, जिसका जल नवंबर 2026 तक 20% का चिंताजनक स्तर तक पहुंच गया है। देश के पूर्वी प्रांत लावांचुआ में आज सुबह एक जानलेवा सड़क दुर्घटना हुई। एक एनटीसी बस एक लॉरी के बीच टक्कर में 70 वर्षीय लॉरी चालक की मौत हो गई। बस में 20 लोग सवार थे, जिनमें से 6 अभी भी फ्लाक के साज अस्पताल में भर्ती हैं। विदेश में फ्रांसीसी अधिकारियों के अनुसार सोमवार को इंग्लिश चैनल पार करते समय एक हादसा हुआ। फ्रांस से ब्रिटेन जाने की कोशिश कर रहे प्रवासियों की नाव समुद्र में डूब गई, जिससे 3 प्रवासियों की मौत हो गई। इनमें एक बच्चा और 2 महिलाएं शामिल हैं। इसके साथ समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद। नमस्कार।
1: Rafthar Vibes, Filmy Rides, RM2.

0: कैसा है जनाब का?
1: क्या ख्याल है आपका?
0: तुम तो मचल गए, हो हो हो,
1: यूं ही फिसल गए। आ, आ,
0: आ। अच्छा, फिसलने का अगला लोकेशन?
1: पिन भेज रहा हूँ, संभाल के चुप रह जाए।
2: रेडियो मस्ती।

Such a beautiful track it was just to kickstart this beautiful show. आपके और हमारे बीच में on RM2 Radio Message. जी हाँ दोस्तों, check your time. Studio की घड़ी में 4:09 हो चुके हैं. Monday का mood थोड़ा slow है. Not to worry. Tension लेने का नहीं है मेरी जान, क्योंकि रफ्तार को बढ़ाने के लिए गिनिश आ गई है आपका साथ देने के लिए रात के 7 बजे तक. And yes, that's your रफ्तार vibes. Your filmy rides पे लेके जाएंगे till 7 PM. So get ready for some music, musty entertainment and non-stop vibes. Because अब वक्त आ गया है रफ्तार vibes का. So good afternoon जी, नमस्कार और गिनिशा का प्रणाम. Music lovers का, drivers का, सभी लोगों का स्वागत करना चाहेंगे in this beautiful show. And yes, it's Monday 28th of September today. Yes, 28th of September. Can you just imagine? September का महीना भी धीरे धीरे खत्म होने को है, but still we've got you the best mix of music. To all those already office से निकल चुके हैं to hit the road to go back home, we are all set to accompany you with some good, good music. तो चलिए जी, stay tuned and stay connected on RM2 Radio Musty.

0: FM2 रेडियो मस्ती
1: भविष्य खातिर हमनी लगे हरमेशा कोनो न कोनो योजना रहेला। लैका के पढ़ाई, एगो वायाज, घर के रेनोवेशन, यानी एगो पूरा जीवन जिए के। सिकुम अपन प्रस्तावित इन्वेस्टमेंट प्लान्स के माध्यम से तोहरा तोहर आर्थिक भविष्य के विस्तार पर कोसे ये करी। आर जब रिटायर हुए के बखत आए तब सिकुम के निजी पेंशन योजना से सकबा जीवन के ई नवा पड़ाव के नवा सांस दे। तोहर भविष्य तोहर आज पर निर्भर करेला, इनकरा आज ही से तैयार करे के चाहे। जस्ती जानकारी खातिर हमनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर या sikkim.mu पर जाय। इमे नियम आ शर्त भी लागू बा। सिकुम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
2: सिकुम ग्रुप, ए लाइफ टाइम कमिटमेंट।
0: RM2
3: रेडियो मस्ती।

बिल्कुल जी, आपके दिल की फ्रीक्वेंसी के साथ हमारी फ्रीक्वेंसी जब मैच होती है ना, तो ऐसे गाने जब हम लेकर आते हैं तो हाय हाय मेरी जान क्या बात हो जाती है। सीरियसली ऐसा लगता है ना कि आप लोग बस हैं हमारे साथ और जिंदगी में क्या चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग अस एज योर रेडियो पार्टनर। चेक योर टाइम, 4:21 हो चुके हैं। वैसे देखा जाए मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, आई रियली होप दैट यू हैड अ ग्रेट वीकेंड, और ग्रेट वीकेंड के बाद अब जब मंडे को हमने हिट किया है, यू आर नॉट फीलिंग अ बिट टू लो एंड मंडे ब्लू ज्यादा नहीं हो रहा है। वैसे देखा जाए तो लाइफ में हर दिन परफेक्ट नहीं होता है, बट हर दिन में एक परफेक्ट मोमेंट तो हो ही जाता है। सो कभी एक स्माइल होता है, तो कभी एक अच्छी सी कन्वर्सेशन, या हो सकता है एक ऐसा गाना जो आपके आप सुनते ही आपका मूड जो है एकदम मस्त हो जाए, और कभी बस खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना। सो आज मंडे को एक सिंपल प्रॉमिस कीजिए, यस जो कंट्रोल में है उस पर फोकस करो, और जो कंट्रोल में नहीं है उसे थोड़ा लेट गो सीखो। यस यू शुड नो हाउ टू लेट गो। कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है, जिस चीज़ को आप बदल नहीं सकते हो लाइफ में उसके बारे में सोच के क्या करना है। मैं हूँ गिनिशा जो आपका साथ दे रहे हैं, और ये है आपका रफ्तार वाइब्स। यस अगर अभी है रात की 7 o'clock तक ऑनली ऑन रेडियो मसी, एंड जस्ट टू रिमाइंड ऑल माय लिसनर्स द शो इज लाइव ऑन टिकटॉक आर एंड टू रेडियो मसी। आई हैव गॉट यू अ ब्यूटीफुल गानों का सिलेक्शन जस्ट टू मेक यू एंजॉय दिस ब्यूटीफुल एंड लवली फ्राइडे कैसे पहुंच गए मंडे आफ्टरनून। तो चलिए जी, एंड ऑल दोस जो आज मना रहे हैं अपना जन्मदिन, उनको हम विश करना चाहेंगे अ वेरी हैप्पी बर्थडे। एंड यस इज द 20th of September, सो विशिंग यू लोड्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। एंड आज छोटा सा डिटिया भटुआ जो है वो को मॉडल से है, आज उनका जन्मदिन है, 2 साल के हो गए। सो बहुत बहुत प्यार।

एंड ढेर सारी शुभकामनाएं टू यू, विशिंग योर मैजिकल बर्थडे फ्रॉम योर मम्मी एंड योर डैडी. आपकी पापा जो हैं, आपकी जो मम्मी हैं श्वेता विकी एंड सिस्टर काव्या एंड ऑल्सो मौसी नितिशा फ्रॉम अबू बसें. यस नितिशा जो है उनका भी जन्मदिन है. सो लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस टू यू माई डियर फ्रॉम द एंटायर फैमिली, विशिंग यू अ मैजिकल बर्थडे.

0: म्यूजिक ऑल डे लॉन्ग रेडियो मस्ती सुनते रहो।
1: तो चलिए जी, टाइम तो बीता चला जा रहा है, 4:32 हो चुके हैं। यस, दैट्स योर रफ्तार वाइब्स, जहां पे निशा लेके जाती है ऑन योर फिल्मी राइड्स। दैट्स सच अ ब्यूटीफुल शो, ब्यूटीफुल गाने और हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स। यस, म्यूजिक लवर्स जो काम से निकल चुके हैं, बस में बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, टैक्सी में बैठे हैं, मेट्रो में भी बैठे हैं और अपने स्क्रीन के पीछे हमें देख रहे हैं ऑन टिकटॉक और ऑन रेडियो मस्ती द शोज लाइव। जी हां, मंडे का प्रेशर, अरे ड्रॉप इट मेरी जान। नेगेटिव वाइब्स, हम तो कहते हैं स्टॉप इट मेरी जान। वैसे पॉजिटिव एनर्जी नॉनस्टॉप चाहिए, इसीलिए तो हम लेकर आते हैं कुछ ऐसे गिने चुने गाने स्पेशली फॉर यू। 4 बजने के बाद ना यहाँ पे कुछ अलग सा ही माहौल बन जाता है, क्योंकि आप लोग जो आ जाते हैं हमारा साथ देने के लिए। आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो कि एक नया हफ्ता शुरू हो गया है और शायद पिछले वीक में कुछ प्लान्स कंप्लीट नहीं हुए, कुछ रह गई हैं पीछे, बट दैट्स ओके। लाइफ इज नॉट अबाउट हैविंग एवरीथिंग फिगर्ड आउट, इट्स अबाउट मूविंग फॉरवर्ड वन स्टेप एट अ टाइम, और बस फोकस करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इस मंडे खुद पर थोड़ा ट्रस्ट कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए और थोड़ी सी मस्ती तो बनती है ना। रफ्तार वाइब्स में हम रेडियो मस्ती की निशानी कराई है, सच ब्यूटीफुल एंड लवली गाने है। सो हियर वी गो, आई जस्ट वांट टू डेडिकेट द नेक्स्ट वन स्पेशली फॉर यू चेष्टा एंड टू ऑल अराउंड हर लिसनिंग टू मी राइट नाउ फ्रॉम वैलेंसिना फिनिक्स।

0: क्या होता है ना कि अच्छे से वीकेंड बिताने के बाद जब मंडे को काम पे जाना होता है ना, वो जस्ट हाफ कि हम घर की तरफ देखते रहते हैं कि कब घर जाएंगे। अब जब घर आने का समय हो गया है कि घर कब पहुंचेंगे कब पहुंचेंगे, लेकिन क्या होता है ना कि रेडियो मस्ती को आपकी फीलिंग्स का ख्याल है, तभी तो लेकर आते हैं कुछ ऐसे गिने चुने गाने जस्ट टू पंप अप अ लिटिल बिट योर मूड, जस्ट टू लेट यू नो टू फील द वाइब्स, और क्योंकि ये है आपका अपना रफ्तार वाइब्स। 4:42 हो चुके हैं, थोड़ी देर बाद ऑफकोर्स आवर स्पोर्ट्स गुरु इज गोना बी हियर फॉर योर लेटेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज। तब तक के लिए चलिए जो एक और गाना हो जाए, टू ऑल दोस जो साथ दे रहे हैं ऑन ऑनलाइन टू रेडियो मस्ती, टू ऑल दोस जो हमें देख रहे हैं लाइव ऑन टिकटॉक ऑनलाइन टू रेडियो मस्ती। वी हैव राम, प्रियंका, वी हैव नहर, शानही एंड फ्रॉम कैनेडा यू आर वॉचिंग अस, थैंक यू सो मच। फ्रॉम अलास्का वी हैव प्रियंका, शी इज वॉचिंग अस एंड हे कैसे हो शानेश, नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू माय स्वीट हार्ट येशिना, टू एवरीवन हु इज वॉचिंग अस लाइव ऑन टिकटॉक ऑनलाइन टू रेडियो मस्ती। लेट्स ऑल एंजॉय दिस ब्यूटीफुल हिट सॉन्ग, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, जो 2002 में रिलीज हुई थी लकी अली की आवाज में, एक पल का जीना। बिल्कुल जिएंगे आप लोगों के साथ, हियर वी गो, एंजॉय इट
1: ऑनलाइन टू रेडियो मस्ती।

0: लकी अली की आवाज में स्पेशली फॉर यू एंड उनके सारे फैंस के नाम ये खूबसूरत सा गाना जस्ट टू मेक दिस आफ्टरनून अ ब्यूटीफुल वन विद सम गुड गुड वाइब्स. 4:47 हो चुके हैं. आज पर के मुताबिक से ऑफ कोर्स वी विल बी हैविंग सम लेटेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज.
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
2: आरएम2
3: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट.
2: Sports News.
4: Radio Musti in the mix.
0: बॉलीवुड की गलियों से निकलकर लेके जाएंगे स्पोर्ट्स न्यूज के लिए उनकी गलियों में, ताकि अरविंद जी हमें दे दे सम लेटेस्ट अपडेट्स. गुड आफ्टरनून टू यू.
5: गुड आफ्टरनून आपको. गुड आफ्टरनून रेडियो मस्ती लिसनर्स. द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड. नेशंस लीग में बहुत कुछ होने लगा है. यर्गन क्लॉप की जर्मनी, दो मैच एक ड्रॉ एक हार. क्रिस्टियानो रोनाल्डो बेंच गरम कर रहा है. पुर्तगाल की जीत हो रही है. नेदरलैंड्स की जीत पर गक्पो घायल और इंजरी लिस्ट में. गक्पो के अलावा इसाक, ब्रूनो फर्नांडेस और डोरगो भी आ गया है. मेनी थिंग्स हैपनिंग अराउंड. जर्मनी की हार, वो भी ओस्बर्ग जर्मनी में. इसी ग्रुप में नेदरलैंड्स की जीत हुई पर लीडर है ग्रीस, दूसरी जीत के साथ क्वालिफिकेशन के करीब. डेनमार्क और पुर्तगाल भी जीत पाए. अर्लिंग हालैंड का गोल काफी नहीं रहा. क्रिस्टियानो रोनाल्डो अनयूज्ड सब्स्टिट्यूट रहा, यानी उसे खेलने का मौका नहीं दिया गया. सो जर्मनी की हार. इसमें जर्मनी के खिलाफ ग्रीस ने 1-0 से मैच जीता. नेदरलैंड्स के लिए मर्डिंक 2-1 गोल स्कोर कर पाया. सो नेदरलैंड्स 2 सर्बिया 1. ग्रुप 4 में नॉर्वे 1 पुर्तगाल 2 डेनमार्क 2 वेल्स 0. अन्य मैचों में जिब्राल्टर 0 अंडोरा 0, लिथुआनिया 1 अजरबैजान 1, ऑस्ट्रिया 3 कोसोवो 1. इसराइल की हार हुई. रिपब्लिक आयरलैंड ने उसे 3-0 से हराया. आज बेल्जियम का मुकाबला फ्रांस से होगा. तुर्की इटली, जॉर्जिया वर्सेस यूक्रेन, आर्मेनिया मोंटेनेग्रो, लाटविया साइप्रस, नॉर्दर्न आयरलैंड हंगेरी, रोमानिया बोस्निया और स्वीडन का मुकाबला पोलैंड से. इंटरनेशनल फ्रेंडलीज मैच भी खेले गए. कनाडा ने चिली को 1-0 से हराया. मेक्सिको और कोलंबिया के बीच मैच ड्रॉ 1-1. चीन 0 न्यूजीलैंड 3, बोलीविया 0 पाराग्वे. क्रिकेट, विराट कोहली की ओर से एक और विराट इनिंग्स. वेस्ट इंडीज के खिलाफ 139 रन नॉट आउट. वनडे इंटरनेशनल में 15,000 रन पार कर चुका है कोहली. सचिन तेंदुलकर के बाद 15,000 रन पार करने वाला पहला वो बैट्समैन है. 8 विकेट से टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हराया पहला वनडे इंटरनेशनल मैच में. शुभमन गिल भी सेंचुरी पूरा कर पाया पर मैन ऑफ द मैच रहा कुलदीप यादव. 4 विकेट लेकर वेस्ट इंडीज को लुढ़काया. वेस्ट इंडीज की ओर से जस्टिन रीव्स की सेंचुरी रही. भारतीय दौरे पर वेस्ट इंडीज की टीम 3 ODI यानी वनडे इंटरनेशनल मैच खेलेगी. एशियन गेम्स में इंडिया और अफगानिस्तान वाला मैच नहीं खेला गया, अबंडन्ड ड्यू टू रेनफॉल. ऐसे में टीम इंडिया क्वालिफाई सेमीफाइनल के लिए. टेनिस, टीम यूरोप ने लावर कप जीता टीम वर्ल्ड को हराकर. अलेक्जेंडर वेरेव टीम यूरोप में था. लर्नर चेन को हराकर वेरेव ने टीम यूरोप को टाइटल दिलाई. टीम वर्ल्ड में कार्लोस अल्कराज भी था. इधर मोंट्रियल के वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप में अपने परफॉर्मेंस से निराश है किम लेकू. बहुत तैयारी और उम्मीद के साथ वो वहां गई थी. बीच रेस में हुई घटनाओं के कारण वो पिछड़ गई. आज सुबह अलेक्जेंडर मेयर की बारी थी. हमारा हमवतन 2 घंटों तक रेस में आगे था पर अंत में रेस पूरा नहीं कर पाया. उल्लेखनीय है कि मोंट्रियल कनाडा में बसे मॉरिशस के बहुत लोग हमारे साइक्लिस्ट का हौसला बढ़ाने के लिए सड़क के किनारे थे. मॉरिशस का नेशनल फ्लैग हमारा चौरंगा लेकर आए.

0: हुए थे। रीजनल स्तर पर आर्सेनल में आयोजित एसएसआर मेमोरियल फुटबॉल मैचेस में कल आर्सेनल वेटरन और पॉम्पलेमूस एससी की जीत। पेनाल्टी पर आर्सेनल वेटरन की जीत हुई, जबकि पॉम्पलेमूस ने रोजबॉ बोल्टन सिटी को हराया। इधर रोशनोर स्पोर्ट्स क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट में रोशनोर यूनाइटेड 7 रेड्स टॉबोनाके 1 स्पोर्टिंग बोर्ड रिगे जुरांपा ने 2-0 से Olympic Cup Malheureux du Horaya. So that's it, the latest from the sports world. I'll catch you very soon. Till then, enjoy the music on Radio Musti. Take care. Bye bye.
1: Thank you so much, Arvindji.
2: This magazine was brought to you by Quality Decor, the floor expert.
3: Pour donner vie à vos projets de rénovation, choisissez Quality Décor. Carrelage, quartz, granit, ardoise, slab, tout est là pour vous dans nos 12 showrooms répartis sur toute l'île. Besoin d'un petit coup de pouce? Nous offrons des facilités de crédit pour rendre vos rêves accessibles et un service de transport pour vous livrer à la maison. Venez découvrir nos produits de qualité tout en profitant des conseils de nos experts. Suivez-nous sur Facebook, Quality Décor, pour ne pas manquer nos offres exclusives.
4: Raftar Vibes, Filmy Rides,
5: RM2.

Welcome in the second hour of this beautiful show, and that's your Raftar Vibes with me, Ganesha, on RM2 Radio Masti. Studio ki gadi mein 5 baj ke 9 minute, already 28th of September 2026, aur aaj hai Monday afternoon. Ji haan dosto, wishing all of you once again a very good afternoon. Namaskar ji, aur Ganesha ka pranam swikar kar lijiye. I really hope that you guys are having a great time by listening to these beautiful and lovely gaano ka selections jo lekar aaye hain aap logon ke liye. वैसे वीक है ना कि यादें अभी फ्रेश है ना और वीक का प्रेशर ऑलरेडी ऑन हो चुका है बट वी आर हियर टू गिव यू अ लिटिल पंप अप फॉर दीज ब्यूटीफुल एंड लवली वाइब्स. तो चलिए जी, स्वागत है आप सभी लोगों का इस खूबसूरत से शो में. और आपको याद दिला दें कि आप अगर किसी को विश करना चाहेंगे हैप्पी बर्थडे, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, कोई ऐसा मतलब खुशी का मौका है जो आप लोग हमारे साथ शेयर करना चाहोगे, सो डू इट राइट नाउ राइट अवे ऑन 5499 1294 पर 5499 1294. That's the exact number for you to send me your dedications, your messages, and share your happiness with me. इतने सारे लोग हमें लाइव देख रहे हैं ऑन टिकटॉक, यानी कि अगर अभी तक आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया, इट्स RM2 रेडियो मस्ती ऑन टिकटॉक. द शो इज लाइव एंड डायरेक्ट फॉर यू. और फिलहाल के लिए उफ तौबा, क्या करें, ऐसा गाना जब मैं लेकर आती हूँ ना, मैं खुद उफ करती हूँ. RM2 रेडियो मस्ती.

0: से मेरे उफ।
1: RM2
2: रेडियो मस्ती
3: और केजी क्लासिक प्योगी विशेस ऑल डिवोटीज अप्पा इस गोविंदन और केजी क्लासिक प्योगी अकंपेनिंग यू इन योर प्रेयर्स सिंस 1932 एन इंडियन क्लासिक प्योगी इंपोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आरआर रैपिड सर्विसेज लिमिटेड
4: Enzo, mo bou arrange mo la case. Enzo, mo bou faire innovation. Sa zoula, c'est coûte métrique. Depuis les premiers jusqu'à les 30 septembre, découvrez à 7 prises, 7 gros promos. L'eau carreau, douche, sanitaire et robinetterie. Septembre promo, 7 promos, coûte métrique. Métrique, une enseigne du groupe Karimji.
1: RM2
2: Radio Musty.
5: Raftar Vibes. Filmy Rides.
1: RM2

0: बिल्कुल जी, जिंदगी से डरने का नहीं है, करके बस खड़े होकर सामना करना है। जिंदगी में ऐसी कोई चीज नहीं बनी है जो इंसान को डराए। अगर आप अपने आप के ऊपर विश्वास रखते हो तो सामना जरूर करना चाहिए हर किसी चीज का, चाहे खुद को चाहे सामने वाले को। और हम हैं ना आप लोगों का साथ देने के लिए, जस्ट टू पंप अप अ लिटिल बिट योर मूड। थैंक यू सो मच। बिल्कुल जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि रेडियो मस्ती बस सुनते रहना है और एंजॉय करते रहना है। थैंक यू सो मच जी साथ देने के लिए। और यू आर लिसनिंग टू गिनीशा राइट नाउ ऑन RM2 रेडियो मस्ती। एंड जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग जो हैं फिलहाल काम पे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं ऑलरेडी निकल चुके हैं। दे आर हिटिंग द रोड। एंड ट्रैफिक कैसा है चलिए हम आपको बताते हैं।
1: ट्रैफिक अपडेट
0: 5:21। ऑलराइट दोस्तों, एक बार ले लेते हैं लेटेस्ट ट्रैफिक अपडेट, चेक करते हैं आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। पीक टाइम है और पोर्ट लुइस यानी कि द कैपिटल से नॉर्थ और साउथ दोनों डायरेक्शंस में ट्रैफिक काफी स्लो मूव कर रहा है मैं देख सकती हूँ। और अगर आप भी रोड पर हैं थोड़ा पेशेंस रखिए और सेफ डिस्टेंस जो है मेंटेन कीजिए। और एक इम्पोर्टेंट रिमाइंडर, रेन काफ़ी जगह पे हो रही है, हल्की हल्की बरसात है काफ़ी जगहों में, सो रोड्स जो है काफ़ी स्लिपरी होती है, सो प्लीज़ ड्राइव स्लोली। सडन ब्रेकिंग और अननेसेसरीली ओवरटेकिंग अवॉइड कीजिए। वेट रोड्स पर थोड़ा एक्स्ट्रा ब्रेकिंग डिस्टेंस ज़रूर रखें। और रिजुई से सैन जॉन और फिनिक्स की तरफ ट्रैफिक अभी मूविंग है, लेकिन पीक आवर में सिचुएशन कभी भी स्लो हो सकती है, सो कीप कॉम एंड कीप योर आईज ऑन द रोड। रोजिल और कैट्रोबोन, उफ मेरी जान, जस्ट लाइक एवरी आफ्टरनून मैं भी यूजुअल पीक आवर जो है एक्चुअली कंजेशन देखने को मिल रहा है। और अगर आप इस साइड से ट्रैवल कर रहे हो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेकर निकलिएगा ज़रूर। और वेदर रोड यूजर्स, आप भी केयरफुल रहिए, ट्रैफिक स्लो मूविंग है स्पेशली रेन के कंडीशंस में। और दोस्तों, डेस्टिनेशन तक जल्दी पहुंचना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, हमेशा याद रखें कि लेकिन सेफली पहुंचना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीट बेल्ट हमेशा ऑन रखें, स्पीड अंडर कंट्रोल, फ़ोन को साइड में रखें। और प्लीज़ जब हल्की सी बरसात होती है तो उसमें यू नीड टू ड्राइव स्लोली, स्टे अलर्ट एंड स्टे सेफ। और हम हैं गिनीशा जो साथ दे रहे हैं योर रफ्तार वाइब्स में। और ये था आपका ट्रैफिक अपडेट ओनली ऑन रेडियो मसी। और अगर आप ड्राइव कर रहे हो और कुछ ऐसा आपको अनयूजुअल लगे जो आप ट्रैफिक रिगार्डिंग हमारे साथ शेयर करना चाहोगे, व्हाट्सअप नंबर द फोन नंबर इज 5499-1294 पर 5499-1294। ड्राइव सेफली, ड्राइव स्लोली।
2: तो

बिल्कुल जी हाँ, तो है नई आर एन टी रेडियो मसी अंदाज़ा, चाहे पुराना क्यों ना हो आपके दिलों में जगह बनाए ने आ गई है और बन भी गई है, तभी तो आप लोग हमारा साथ देने आ जाते हैं। आर एन टी रेडियो मस्ती, साढ़े पांच बज चुके हैं यानी कि 5:32 की निशान तो आएगा साथ देने के लिए विद सच ब्यूटीफुल एंड लवली गाने। बिग हाय एंड बिग थैंक यू टू एवरीवन वाचिंग अस लाइव ऑन टिकटॉक आर एन टी रेडियो मस्ती। जया, दिस वन वाज स्पेशली फॉर यू माय बेब्स। Yes, I've got your dedications, your dil ki baat. And the next one, I just want to dedicate it especially for you, my sweetheart. Yani ki Gayatri ke naam jinhone bheja ek pyara sa message. Hey Ginisha ji, let's rock with lots of love to you and everyone. In Mauritius, that's Rita from Milano, from Italy. Thank you so much. Hey jana, meri meethi meethi baatein sunke aap acha, aapko acha lag raha hai, that's so sweet. So aapki jo beti hai, Rima Janita Sheshansini Silvia or Yuvi Krishi Siusagan Perivar Kelly from FLAC listening to us right now. Thank you so much for choosing us as your radio partner. Wishing a happy birthday to Uday Bulka. Uday Bulka from Pupukavita Burton from Pers de FLAC and to all those who are celebrating the

0: रेडियो मस्ती।
1: बिल्कुल जी, टू ऑल दोस सेलिब्रेटिंग आवर देयर बर्थडे टुडे, आई जस्ट वांट टू विश यू अ मैजिकल वन ऑन ऑन टू रेडियो मस्ती। मे गॉड ब्लेस यू ऑलवेज विद एंडलेस हैप्पीनेस, एंडलेस लव एंड ऑफ कोर्स ढेर सारे गाने ऑन ऑन टू रेडियो मस्ती। तो चलिए जी, ये अगला गाना हम लेकर आए हैं, कैसे हो मेरी स्वीट गिनी, इतनी मीठी हूँ मैं, इतनी मीठी कि डायबिटीज ना हो जाए सुनते सुनते, आई एम जस्ट किडिंग। तो चलिए, हर हर महादेव टू एवरीवन, एंजॉयिंग द शो विद गर्मा गर्म कॉफी। और ये है शिनाज जोगी फ्रॉम रिविया जोगापा। आज मेरे भतीजे सैफ का जन्मदिन है, सो सैफ विशिंग यू अ मैजिकल बर्थडे। Hey Hush Yashwant Jatu from Kathij, informing you that meri wife jo hai Nirmala Jatu, aaj unka janmdin hai. Acha aap mujhe bata rahe ho ya inform kar rahe ho? To chaliye ji, unko wish karna chahenge happy birthday to your lovely wife. So next song goes out to you, aapke pure family here, Jatu family, mota in long ke liye taraf se, and the Sukanna and Muslia family from Goodland. So they are all celebrating a birthday today. Hey my beautiful sister, yes Rebecca, kaise ho aap? Ye agla gana aapke baby Arshad ke liye, and he's your happiness, aapki jo heart beat hai wahi hai, aur may God bless both of you always. Hey Ganesha ji, kaise ho yaar, ekdam jhakas Lalita Jitan, enjoying your mind blowing program, aur saath mein khana bana rahe hain, so full on volume laga ke aapko sun rahe hain, aur aapki colleague teachers Mimi, Shireen, Varsha, Badal, Yashni, Sindhya and Dikshan Sham, Kumar Devichan ke liye ye agla gana, and I just want to dedicate it specially for you Yanesh, jo saath de rahe hain from Floreal.
2: RM2 Radio.

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: RM2 फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स।
2: धीरे धीरे टाइम तो बीता चला जा रहा है। फिलहाल हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:44 हो चुके हैं एंड यू आर लिसनिंग टू गिनीशा राइट नाउ ऑन RM2 रेडियो मसीहा। टू एवरीवन वाचिंग अस लाइव ऑन टिकटॉक RM2 रेडियो मसीहा, आप भी जरा ध्यान से सुने। आज का हमारा फैशन टिप ऑफ द डे है लेडीज के लिए। जी हाँ लेडीज, वेदर जो है ना आजकल थोड़ा चेंज हो रहा है और टेम्परेचर भी फीलिंग लिटिल हॉट है ना, तो वो ऑफिस वेयर में स्टाइल के साथ कम्फर्ट को भी प्रायोरिटी जरूर दीजिए। जस्ट लाइक एवरी टाइम हम आपको सजेस्ट करते हैं, आजकल हैवी लेयर्स को थोड़ा साइड में रखें और गो फॉर लाइट ब्रीदेबल फैब्रिक्स जो होते हैं, जैसे कि कॉटन शर्ट्स, लिनन टॉप्स, फ्लोवी ब्लाउजेस या कंफर्टेबल मीडी ड्रेसेस, डिपेंडिंग ऑन योर ऑफिस ड्रेस कोड। कलर्स में भी थोड़ा फ्रेश फील ला सकते हो आप। पास्टल जो पेस्टल कलर्स हैं, व्हाइट, बेज, सॉफ्ट ब्लूज, क्लासी भी कूल भी दिख सकते हैं। और एक लिटिल स्टाइल सीक्रेट, लेस इज मोर ऑलवेज। सिंपल आउटफिट के साथ नाइस वॉच, स्मॉल इयररिंग या एलिगेंट हैंडबैग एंड योर ऑफिस वेयर इज रेडी। सो लेडीज, वेदर जो है हॉट हो या मूड मंडे वाला हो, स्टे कूल ऑलवेज, लुक क्लासी एंड कैरी योरसेल्फ विद कॉन्फिडेंस एंड दैट्स योर फैशन टिप ऑन रफ्तार वाइब्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती विद मी किनेशा।
1: फैशन टिप्स वाज पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स।

नमस्ते। तो चलिए जी, 5:55 हो चुके हैं, थोड़ी देर में हम बढ़ेंगे 6 की समाचारों की ओर, और उसके बाद ऑफ कोर्स द गुड म्यूजिक विल कंटिन्यू ऑन आवर इंटरव्यू रेडियो मसी सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड।

0: La MBC se réinvente et vous accompagne désormais partout. Retrouvez toute la richesse des contenus de la MBC sur nos nouvelles plateformes digitales. Avec MBC Now, notre nouvelle page Facebook, restez connectés à l'actualité, découvrez les temps forts de nos émissions et ne manquez aucune nouveauté. Avec l'application mobile MBC Play ainsi que notre nouveau site web mbc.mu, regardez vos chaînes TV en direct, écoutez vos radios préférées en live, suivez le JT, les courses hippiques, consultez la programmation et profitez du replay où que vous soyez. À la maison, au bureau ou en déplacement, la MBC est désormais accessible sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur ou votre Smart TV. MBC Now, MBC Play, mbc.mu, toute la MBC partout avec vous.
1: L'aventure mais aaj subah ek NTC bus aur ek lorry ki takkar mein lorry chalak ki maut, bus mein sawar 20 logon mein se 6 ab bhi साज अस्पताल में भर्ती। मॉरिशस शुगर सिंडिकेट की सालाना बैठक में सचिन सुकना नए अध्यक्ष चुने गए। 2025 में चीनी की बिक्री से 10.4 बिलियन रुपए की आमदनी। थाईलैंड में बाढ़ से अब तक 8 लोगों की हुई मौत। राजधानी बैंकॉक के कई इलाकों में पानी भरने के बाद करीब 6,000 लोगों ने राहत केंद्रों में शरण ली। सुरों की दुनिया में अमिट छाप छोड़ने वाली लता मंगेशकर की आज जयंती। दशकों तक उनके गीत हर पीढ़ी की यादों का हिस्सा बने। अब समाचार विस्तार से। आज के समाचारों की शुरुआत लावांचुया में हुए गंभीर सड़क हादसे के साथ। सुबह एनटीसी की एक बस और एक लॉरी की टक्कर में लॉरी चालक की मौत हो गई। बस में 20 लोग सवार थे, उनमें से 6 अभी भी फ्लाक केस से अनिरुद्ध जगन्नाथ अस्पताल में भर्ती हैं। टक्कर किन हालात में हुई इसकी जांच की जा रही है। विस्तार कोयल सितल और गीता सुनारान के साथ।
2: सुबह के 7:45 बजे रुजल की ओर जाने वाली एनटीसी की लाइन 222 की बस एक लॉरी से जा टकराई। बस में 20 लोग सवार थे जिनमें कई छात्र भी थे। हादसे में लॉरी चालक की मौत हो गई। वे 70 साल के थे। आपात सेवाएं सक्रिय हुई और घायलों को फ्लाक के सनिरुद्ध जगन्नाथ अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में घायल हुए 6 लोगों को भर्ती किया गया और 14 को जरूरी इलाज के बाद घर जाने दिया गया। अस्पताल के ड्यूटी मैनेजर डॉक्टर ताराचंद सिनुत कहते हैं,
3: et il y en a 6 parmi là-dedans qui sont admitted. Parmi là-dedans, il y en a un chauffeur, il y en a un contrôleur, il y en a une personne qui est en fracture 3 côtes, et il y en a une madame qui est en même blessure de la tête. Et nous aussi, il y en a 3 élèves qui sont involés dans cet accident-là. Il y en a un élève 16 ans, il y a à l'école secondaire, et il y en a 10 élèves tertiaires qui sont à l'examen aujourd'hui.
2: दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस की जांच जारी है।
1: उधर एनटीसी के डिपो में आज सुबह कर्मचारियों ने गोइस्लो किया। इसका असर राजधानी जाने वाली कुछ बस सेवाओं पर पड़ा। खासकर कथोबोन क्षेत्र के यात्रियों को परेशानी हुई। विवाद नए काम के समय को लेकर है, जिसमें ड्राइवरों और कंडक्टरों के लिए ओवरटाइम का प्रावधान नहीं है। परिवहन मंत्री उस्मान माउमेद ने डिपो पहुंचकर मैनेजमेंट और कर्मचारियों से बात की। उनके मुताबिक उन्हें भरोसा दिलाया गया है कि कल से बस सेवा सामान्य हो जाएगी। चीनी की बिक्री से 2025 में 10.4 बिलियन रुपए की आमदनी, लेकिन गन्ना उद्योग के सामने जमीन और मजदूरों का सवाल अभी भी बना हुआ है। पोटवी में आज मॉरिशस शुगर सिंडिकेट की सालाना बैठक में सचिन सुकना नए अध्यक्ष चुने गए। पदमुक्त अध्यक्ष निकोला मेघो ने बागास के दाम पर फिर से गौर करने की मांग की और पहले गन्ने की खेती में इस्तेमाल होने वाली करीब 10,000 हेक्टेयर खाली जमीन को फिर खेती में लाने की अपील की। मंत्री अरविंद बुलेल के मुताबिक गन्ना क्षेत्र में काम करने के लिए 600 विदेशी मजदूर दिसंबर में मॉरिशस आएंगे। काविंता पिसाओ, गीता सुनारान।
2: मॉरिशस का गन्ना उद्योग कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमतों में गिरावट, उत्पादन लागत में बढ़ोतरी, श्रमिक संघों की कमी और गन्ने की खेती के लिए इस्तेमाल होने वाली जमीन में कमी शामिल है। शुगर सिंडिकेट के वर्तमान अध्यक्ष निकोला मेखो ने बताया कि 2025 की फसल के लिए उत्पादकों को प्रति टन चीनी 24,095 रुपए का भुगतान किया गया, जबकि पिछले साल के लिए ये कीमत 27,478 रुपए थी। 2025 में चीनी की बिक्री से होने वाली आय 10.4 बिलियन रुपए रही, जबकि पिछले साल ये 11 बिलियन रुपए थी। अब खास शक्कर का हिस्सा कुल उत्पादन का 60% हो गया है, जबकि पिछले साल ये 54% था। मॉरिशस शुगर सिंडिकेट ने बगास के लिए दिए जाने वाले दाम की समीक्षा की मांग की है। साथ ही कुछ आयात की जाने वाली चीनी से स्थानीय बाजार को बेहतर तरीके से सुरक्षित करने के लिए उपाय किए जाने की भी मांग की गई। निकोला मेखो कहते हैं, बायोमास के दाम पर फिर से गौर करना होगा। आज बगास का दाम 3.50 रुपए प्रति किलोवाट है। मंत्री ने इन्फ्लेशन के बारे में बात की तो दाम भी बढ़ना चाहिए, इससे अन्य सेक्टर भी खेती करने के लिए प्रोत्साहित होंगे स्थानीय बायोमास की पैदावार करने के लिए।
4: Qui aussi incitera d'autres secteurs à planter, par exemple, pour faire de la biomasse locale.
2: कृषि उद्योग मंत्री अरविंद बुलेल ने कहा कि बायोमास गन्ना उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि सरकार बायोमास के दाम पर फिर से गौर करने की मांग पर अध्ययन करेगी।
5: Nous parlons de ce qu'on appelle production de l'électricité à partir de biomasse.
2: बायोमास से बिजली उत्पादन कर रहे हैं, 3.50 रुपए के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, इसे बढ़ाना होगा, इससे बायोमास आयात नहीं करना पड़ेगा। उत्पादन भी चिंता का विषय बना हुआ है। 2025 में 33,805 हेक्टेयर जमीन से गन्ने की कटाई की गई और कुल 2,20,305 टन चीनी का उत्पादन हुआ। गन्ने की खेती के लिए पहले इस्तेमाल होने वाली 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन आज भी खाली है। महासभा के बाद नए अध्यक्ष का भी चुनाव किया गया। सचिन सुकना को नया अध्यक्ष चुना गया है। वे इससे पहले शुगर सिंडिकेट के उपाध्यक्ष के पद पर थे।
1: दुनिया भर में पेय पानी का भंडार लगातार कम हो रहा है और बल्कि 2025 तीन दशकों से ज़्यादा अवधि के लिए सबसे सूखा साल रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा प्रकाशित हालिया रिपोर्ट में इसे का उल्लेख किया गया। मॉरिशस भी इससे अछूता नहीं। उदाहरण के लिए माहोवाक्वा को ही ले, जिसका जल नवंबर 2026 तक 20% तक का चिंताजनक स्तर पर पहुँच सकता है। विस्तार अगली रिपोर्ट में।
6: नदियों में पानी के बहाव को लेकर 2025 पिछले 35 सालों में दुनिया भर में सबसे सूखे सालों में से एक रहा। इस पर विश्व मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट चिंताजनक है। संगठन की महासचिव सेलेस्ट सोलो कहती हैं, 2025 पिछले 35 सालों में नदियों में पानी के बहाव को लेकर सबसे सूखा साल रहा। पिछले 7 सालों में असामान्य रूप से बारिश और जल बहाव दर्ज किया गया। इस प्रकार की विनाशकारी आपदाएं अभी तक देशों और अर्थनीतियों पर बुरा प्रभाव डाल

0: रही है। परिणाम स्वरूप नदियों में पानी का बहाव कम हो रहा है, जमीन के नीचे भी पानी का स्तर गिर रहा है और ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। WMO की हाइड्रोलॉजी निदेशक वेन जेनकिंसन कहते हैं, लगातार 7 सालों से दुनिया में नदियों में जल प्रवाह कम हुआ है। ये 1991 से 2020 के वर्षों के मुकाबले बड़ी गिरावट है। पिछले 4 नियमित सालों से दुनिया के कई बड़े ग्लेशियर पिघल कर गिरे हैं। आज धरती पर मीठा पानी कम हो गया है। पिछले 5 सालों के दौरान अफ्रीकी और एशियाई देश जल आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित रहे हैं। मॉरिशस में काफी समय से भारी बारिश न पड़ने के कारण पहले से ही मुश्किल हालात और बिगड़ रहे हैं। देश का मुख्य जलाशय माहोबाक्वा अभी अपनी क्षमता का मात्र 37% ही भरा है। स्थिति को देखते हुए पिछले जून महीने से CWA देश के कई इलाकों में रोजाना पानी की कटौतियां कर रही है। वाटर रिसोर्सेज यूनिट के निदेशक लोमिश जगू कहते हैं, अभी माहोबाक्वा का जल स्तर 37.6% के आसपास है। निकोलियर करीब 44% भरा है, जबकि कुछ अन्य जलाशयों में जल स्तर करीब 80% पर है। इस साल सेंट्रल प्लेटो के इलाकों में बारिश बहुत कम रही। ये दर 1998-1999 के बीच पड़े सूखे की स्थिति के आसपास है। अगले नवंबर महीने तक माहोबाक्वा का जल स्तर करीब 20% का होगा, जबकि दिसंबर तक ये 11% तक गिर सकता है। पाबंदियों के अलावा अब संबद्ध अधिकारी नए उपाय लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। लोमिश जगू कहते हैं, CWA लाविविया पापाई में एक कंटेनराइज्ड प्रेशर फिल्टर स्थापित करने जा रही है। इससे कुछ प्रभावित इलाकों तक पानी सप्लाई किया जा सकेगा। साथ ही एक ड्रिलिंग अभियान शुरू किया जा चुका है। एक और महत्वपूर्ण उपाय के तहत हमने मौलोंग जलाशय को माहोबाक्वा की प्रणाली के साथ जोड़ा है। पानी एक कीमती संसाधन है, इसे बर्बाद न होने देना सभी की जिम्मेदारी है।
1: क्वालिटी बेवरेजेस लिमिटेड ने 100% रिसाइकल की जा सकने वाली पेट बोतलों की नई उत्पादन लाइन में 300 मिलियन रुपए से ज्यादा निवेश किया है। आज इसकी लॉन्चिंग पर मंत्री राजेश भगवान ने बताया कि सरकार नए नियम तैयार कर रही है, जिसके तहत उत्पादकों को अपने इस्तेमाल हो चुके उत्पादों को इकट्ठा करने और रिसाइकल करने का खर्च उठाना होगा। छोटे और मध्यम उद्योगों के मंत्री आदिल आमिया मियां के मुताबिक तैयार किया जा रहा इंडस्ट्री बिल उद्योगों को विविधता बढ़ाने और चुनौतियों का सामना करने के लिए एक आधुनिक ढांचा प्रदान करेगा। माधवी जगन्नाथ, अशिता रघु।
2: बेल्ट्रोज में क्वालिटी बेवरेजेस लिमिटेड की नई उत्पादन इकाई पिछले कुछ महीनों से काम कर रही है। इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने इस उत्पादन लाइन में 30 बिलियन रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। यहां 100% रिसाइकल किए जा सकने वाले PET बोतलों का उत्पादन किया जाता है। PET एक हल्का और मजबूत प्लास्टिक है, जिसका इस्तेमाल पेय पदार्थों की बोतलें और खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग बनाने के लिए किया जाता है। क्वालिटी बेवरेजेस लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर इनिगो डे प्राडो कहते हैं, प्रयोग किए गए बोतलों को इकट्ठा करते हैं, दक्षिण अफ्रीका भेजते हैं, धोकर फिर से रिसाइकल करके प्रयोग किया जाता है। डायट पेप्सी के बोतलों के लिए फिलहाल ऐसा किया जा रहा है, अन्य पदार्थों के लिए भी आने वाले वर्षों में ऐसा करेंगे। पॉलीपैट के साथ मिलकर बोतलों को जमा किया जाता है। इस नई व्यवस्था से हर बोतल के उत्पादन में बिजली की खपत 56% तक कम होती है और पानी के इस्तेमाल को भी बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। लीना सुहाई सुंटू कहती हैं, एक नए CIP सिस्टम में निवेश किया है। ये मशीन हमें पानी और रासायनिक पदार्थों के प्रयोग को कम करने में मदद देती है। सभी कामगारों को प्रशिक्षण दिया गया है ताकि वे मशीन का प्रयोग कर सके। इस नई उत्पादन इकाई के लॉन्चिंग समारोह के दौरान पर्यावरण मंत्री ने नए नियम तैयार किए जाने की घोषणा की। इसका उद्देश्य उत्पादकों की विस्तृत जिम्मेदारी की व्यवस्था लागू करना है, जो प्रदूषण फैलाने वाला भुगतान करे के सिद्धांत पर आधारित होगी। मंत्री राजेश भगवान कहते हैं, पैकेजिंग के उत्पादकों को अपने बोतलों के संचालन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और आश्वस्त करना चाहिए कि उन्हें इकट्ठा किया जा रहा है और रिसाइकल किया जा रहा है। एक आधुनिक सिस्टम डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू किया जाएगा ताकि हर मॉरिशन इन्हें जमा करने में योगदान दे।

0: de consigne avec remboursement, le deposit refund system, pour mieux mobiliser chaque Mauricien dans l'effort de la collecte.
1: वही मंत्री आदिल अमियामिया ने कहा कि उद्योग क्षेत्र से संबंधित नए विधेयक का उद्देश्य मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को तकनीकी बदलावों के साथ खुद को ढालने में मदद करना है, साथ ही उसकी उत्पादकता में सुधार करना है। आज कामगारों की कमी, लागत में बढ़ोतरी समस्याएं

0: li pe evolue d'an fason kote pou nou adapte nou an nou ban defi ekonomik.
1: Quality Beverages Limited ne 1991 में मॉरिशस में PET पैकेजिंग की शुरुआत की थी। पैकेजिंग की ये नई उत्पादन लाइन कंपनी के विकास में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है और ये नवाचार तथा अधिक टिकाऊ उत्पादन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
2: तो विवरण गीता सुनारान का रहा। दिखने में छोटा और प्यारा, हाथ में दबाने पर तनाव कम करने वाला खिलौना, लेकिन स्क्वीजी डंपलिंग बच्चों की सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। कई देशों में इसे बाजार से वापस मंगाया जा रहा है, जबकि मॉरिशस में ये अब भी खुले तौर पर बिक रहा है। आखिर ये खिलौना यहाँ की दुकानों तक कैसे पहुँचा? हमारी रिपोर्ट यासिन दैन महमूद की इस रिपोर्ट में ज़्यादा खुलासा। इन दिनों फैशन में आया एक नया खिलौना, कई रंगों और कई आकारों वाला स्क्वीजी डंपलिंग, कुछ में ग्लिटर भी हैं और कुछ बिना ग्लिटर के। इनकी ऑनलाइन मांग लगातार बढ़ रही है। ये खिलौना दुकानों और कुछ फेरी वालों के पास भी हैं। देखने में बेहद प्यारा ये खिलौना अपने अंदर एक संभावित खतरा छिपाए हुए है। कई देशों खासकर इंग्लैंड और फ्रांस में कुछ मॉडलों को अधिकारियों ने वापस करने का आदेश दिया, क्योंकि उनमें संभावित कैंसरकारी पदार्थ पाए गए। इसके अलावा कुछ मामलों में खिलौने के फटने और अंदर मौजूद पदार्थ के त्वचा से संपर्क में आने से जलन की भी शिकायत की गई। मेबर्ग में ऐसे ही एक मामला सामने आया। मॉरिशस में खिलौनों की बिक्री पर कड़े नियंत्रण लागू हैं। मॉरिशस स्टैंडर्ड्स ब्यूरो सुरक्षा से जुड़े मानकों के पालन को सुनिश्चित कराता है। MSB की निदेशिका रोमा पासान ने कहा, खिलौने की जांच की जाती है ये देखने के लिए कि उससे बच्चे को खतरा तो नहीं, उपकरण ढीले तो नहीं, बच्चे उसे कहीं निगल न जाए, कपड़े में कहीं जल्दी से आग न लग जाए। रासायनिक पदार्थ की भी जाँच की जाती है, जहाँ रंगों का इस्तेमाल होता है जिसमें लेड हो सकते हैं। यदि जांच के नतीजे संतोषजनक नहीं तो MSB उत्पादों की क्लियरेंस के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र जारी नहीं करता। लेकिन फिर सवाल उठता है कि ये खिलौना मॉरिशस के बाजार तक पहुंचा कैसे? खिलौने नियंत्रित होते हैं, लेकिन यदि व्यक्तिगत रूप से ऑनलाइन खरीदे जाए सीमित संख्या में, तब व्यक्ति खुद इसकी जिम्मेदारी उठाएगा। यदि संख्या 10 से ज्यादा हो तो कंज्यूमर अफेयर्स यूनिट ये सुनिश्चित करेगा कि जांच का प्रमाण हो। एक ऐसी खामी जिसका फायदा कुछ विक्रेता ऑनलाइन ऑर्डर और छोटी मात्रा में किए जाने वाले आयात के माध्यम से उठा सकते हैं। इसीलिए MSB ग्राहकों से सतर्क रहने की अपील करता है, खासकर ऑनलाइन खरीदारी के समय, जिनके उत्पादों पर जरूरी नहीं कि वही सुरक्षा जांच लागू हुई हो। सेहत की बात हो तो शरीर के साथ मन का ख्याल भी जरूरी है, यही आयुर्वेद की सोच है। इस पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति पर गुरुवार 17 सितंबर को यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस में चर्चा हुई। आयोजन 23 सितंबर को मनाए जाने वाले आयुर्वेद दिवस 2026 का हिस्सा था। इस मौके पर आयुर्वेद से जुड़े जानकारी देने वाले आयुर्वेदा कोने की भी शुरुआत की गई। रिपोर्ट प्रियंका हरि की, विवरण अशिता रघु का।
3: एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति जो आज भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी जगह बनाए हुए है। हजारों वर्षों से आयुर्वेद शरीर, मन और जीवन शैली के बीच संतुलन पर जोर देता आया है। एक पारंपरिक ज्ञान जिसमें आज की युवा पीढ़ी भी दिलचस्पी ले रही है। केशव पगाव कहते हैं, हमारे बड़े लोग व पूर्वज जिन जड़ी बूटियों के बारे में बताते थे, इनके उपचारात्मक तत्वों पर ध्यान नहीं देते थे, पर आज एक मेडिकल विद्यार्थी होने के नाते इनका एहसास हो रहा है और आयुर्वेद डॉक्टर की पढ़ाई का एक हिस्सा है जो बहुत आवश्यक है। नोविना चिनाई कहते हैं कि आयुर्वेद के माध्यम से इस क्षेत्र में ज्यादा जान पाएंगे और इस तरह प्राकृतिक उपचार को अपना पाएंगे जो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक होगा।
4: रिलायबल इंफॉर्मेशन ऑन आयुर्वेदा।
3: आयुर्वेद दिवस 2026 के मौके पर यूनिवर्सिटी मॉरिशस में आयुर्वेद चर्चा के केंद्र में रही।

0: It's a very rich tradition.
1: आयुर्वेद फॉर अ हेल्दियर टुमारो विषय पर आदि दिन का एक सिंपोजियम आयोजित किया गया, जिसमें विद्यार्थी, विश्वविद्यालय के शिक्षक और इस क्षेत्र के पेशेवर शामिल हुए।
2: Under that new Ayurveda program, we
1: मॉरिशस विश्वविद्यालय में आयुर्वेद चेयर डॉक्टर पूजा सबरवाल कहती हैं, लक्ष्य है विद्यार्थियों और स्टाफ को अंतर विषयक अनुसंधान की संभावनाओं के बारे में बताना और ये दिखाना कि विभिन्न विषय अपने अपने अध्ययन के क्षेत्र में रहते हुए आयुर्वेद में किस प्रकार योगदान दे सकती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न विषयों और आयुर्वेद के बीच अधिक सहयोग को बढ़ावा देना है। इस मौके पर विश्वविद्यालय में एक आयुर्वेद कॉर्नर का भी उद्घाटन किया गया। ये एक ऐसा स्थान है जहां आयुर्वेद के बारे में लोगों को अधिक जानकारी दी जाएगी और युवाओं को इस पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। तर्शरी मंत्री कविराज सुको कहती है, युवकों को समझने में आसानी होगी कि कैसे पारंपरिक उपचार के माध्यम से हम स्वस्थ रह सकते हैं। ये सब हम पहले करते थे जो अब नहीं करते, जैसे पूर्व में हर सप्ताह या बीमार पड़ने पर सर में तेल मालिश करते थे, दर्द होने पर आयापना के पत्ते पीते थे। इन सब में साइड इफेक्ट्स नहीं होते। मॉरिशस में भारतीय उच्चायुक्त अनुराग श्रीवास्तव कहते हैं, भारत का आयुर्वेद के प्रति दृष्टिकोण आधुनिक चिकित्सा और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को एक दूसरे के विरोध में खड़ा करना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करना और विकसित करना है तथा वैज्ञानिक परिणामों, अनुसंधान और शिक्षा के माध्यम से इसे मजबूत बनाना है। इसी सोच और प्रयास के तहत आयुर्वेद से संबंधित ये सूचना मंच शुरू किया गया है। परंपरा और आधुनिकता के बीच आयुर्वेद का ये ज्ञान आगे भी पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचता रहेगा और भविष्य की बेहतर सेहत की ओर ध्यान केंद्रित करेगा।
3: विदेश की खबरों में, ब्रिटेन में अमेरिकी सेना के इस्तेमाल वाले रदरफोर्ड अड्डे के पास 3 संदिग्ध वाहन मिलने के बाद 5 लोगों से पूछताछ जारी है। पुलिस को वाहनों में संदिग्ध विस्फोटक सामग्री मिली है, जिसकी जांच की जा रही है। आसपास के 85 घरों से लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया था। आतंकवाद विरोधी अधिकारी भी यही जांच रहे हैं कि क्या इस कथित साजिश का ईरान से कोई संबंध है। ऐसा संबंध अभी साबित नहीं हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की कोशिश जारी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान का वो प्रस्ताव ठुकरा दिया है, जिसके तहत लड़ाई रोकने और 7 दिनों के भीतर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने की बात थी। फिर भी ट्रंप को इस सप्ताह नई बातचीत की उम्मीद है। ईरान का कहना है कि जलमार्ग खोलने से पहले उसकी शर्तें पूरी होनी चाहिए। फिलहाल कोई नया समझौता नहीं हुआ है। मेक्सिको के प्रशांत तट पर तूफान पोलो का खतरा बना हुआ है। उधर थाईलैंड की बाढ़ में 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि नेपाल और भारत में तेज बारिश के बाद बाढ़ और भूस्खलन ने कई जानें ली हैं। 4 देशों के हालात पर हमारी रिपोर्ट आस्था गोबिंद के साथ।
4: मेक्सिको के प्रशांत तट की ओर तूफान पोलो अब कैटेगरी 3 पर है। इससे पहले वो श्रेणी 5 तक पहुंच गया था। गलिस्को में बाढ़ का पानी एक घर को बहा ले गया। 2 बच्चों की मौत हुई और उनके माता पिता लापता हैं। तूफान के सोमवार रात कैलिफोर्निया पर पहुंचने का अनुमान है। तेज बारिश और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए तटवर्ती इलाकों से लोगों को हटाया गया है। थाईलैंड में 16 सितंबर से आई बाढ़ में कम से कम 8 लोगों की मौत हुई है। राजधानी बैंकॉक में किसी मौत की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन कई इलाके पानी में डूबे हैं। देश भर में 580,000 से ज्यादा घर प्रभावित हुए हैं। बैंकॉक में करीब 6,000 लोगों ने राहत केंद्रों में शरण ली। कुछ पूर्वी इलाकों में जलाशय भरने के बाद लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। नेपाल में 4 दिनों की तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से 21 लोगों की मौत हुई है। 5 लोग अब भी लापता है। भूस्खलन ने कई सड़कें बंद कर दी और प्रभावित इलाकों से लोगों को निकाला जा रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में बचाव का काम चुनौती बना हुआ है। देश अभी अगस्त की विनाशकारी बाढ़ से उबर नहीं पाया है और अब बारिश ने फिर मुश्किलें बढ़ा दी है। पड़ोसी भारत के उत्तर प्रदेश में 3 दिन की भारी बारिश और बाढ़ से कम 62 लोग

0: लोगों की मौत हुई है, 46 लोग घायल हैं और 1000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। कई जगह स्कूल बंद किए गए हैं और बचाव दल लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। ओडिशा में भी 75,000 से अधिक लोगों को निकाला गया। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में बारिश कम हो सकती है, जबकि दक्षिणी कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मंगलवार को बहुत भारी बारिश हो सकती है।
1: मेरी आवाज ही पहचान है, लता मंगेशकर की आवाज के लिए शायद इससे सुंदर पंक्ति कोई नहीं। कभी वे माँ की लोहड़ी जैसी सुकून देती हैं, कभी प्यार की याद बनकर दिल में ठहर जाती हैं। आज उनकी जयंती पर उन गीतों को फिर से सुनने का मन होता है जिन्हें हम बरसों से जानते हैं, फिर भी हर बार उनमें कुछ नया महसूस करते हैं। उनकी आवाज से जुड़ी यादों पर ये खास रिपोर्ट सुमेहरा अकबर अली के साथ।
2: नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। लता मंगेशकर भारत की वो अनमोल रत्न हैं जिनकी मधुर आवाज से वो जिंदा हैं। उनकी आवाज ने मोहब्बत को तरन्नुम दिया, प्यार को अंदाज सिखाया, प्रेम की भावनाएं जिताई और कला को जान दी। 28 सितंबर 1929 को लता जी की पैदाइश इंदौर में हुई थी। पंडित दीनानाथ मंगेशकर और श्रीवंती हरिदास अलाद के 5 बच्चों में लता दीदी सबसे बड़ी थी। लता मंगेशकर ने 13 साल की उम्र में एक मराठी फिल्म के लिए अपने पहले गाने को रिकॉर्ड किया था। 1946 में आपकी सेवा में उनका पहला हिंदी गाना आया था, लेकिन 1949 में महल फिल्म का आएगा आने वाला गाना उनकी शोहरत का बाइस बना। शास्त्रीय संगीत से भजन, रोमांटिक गीतों और देशभक्ति तरानों तक लता जी ने हिंदी सिनेमा उद्योग के बेहतर से बेहतरीन मौसीकारों के साथ काम किया। श्री राम, श्री राम। 1963 में लता जी ने ए मेरे वतन के लोगों गाकर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आंखों को भी नम किया। ये गाना भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लिखा गया था जो 1962 की जंग में शहीद हो गए थे। 1997 में ए आर रहमान ने माँ तुझे सलाम की कंपोजिंग की थी जिसने उस वक्त सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। भारत के 50वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ये गीत रचित किया गया था। लता मंगेशकर को यूं तो सभी प्रतिष्ठित अवार्ड्स मिले, लेकिन उनकी कला और निराली आवाज से उनके लिए खास सम्मान दिए जाने लगे। वो पहली भारतीय कलाकार रही जिन्होंने लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में परफॉर्म किया। 30 से ज्यादा भाषाओं में उनके हजारों गाने हैं। भारत के अलावा कई देशों ने उन्हें सम्मानित किया। 6 फरवरी 2022 को 92 साल की उम्र में वो चल बसी, लेकिन उनके हर एक गाने के जरिए वो हर दिल में बाहयात हैं।

खबरों के अंत में चलिए सुनते हैं मौसम की रिपोर्ट। पूर्व की ओर से आने वाले बादल रह रहकर हमारे मौसम को प्रभावित करेंगे। अनुमान है कि पूर्व एवं ऊंचाइयों पर आज रात के दौरान थोड़ी बहुत बारिश के अलावा मौसम सुहाना होगा। कल सुबह और दोपहर में भी पूर्व एवं सेंट्रल प्लाटो पर बादल घिराएंगे और जहां तहां बारिश होगी। तापमान सेंट्रल प्लाटो पर न्यूनतम 15 से 17, अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। हल्की और अस्थिर हवा चलेगी। पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दिन के दौरान हल्की और अस्थिर हवा चलेगी। प्रवाह रेखा से परे समुद्र चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिम में लहरें 2.50 मीटर तक हो सकती हैं। दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। आज सूर्यास्त 6:07 पर हुआ, कल सूर्योदय 5:53 पर।

6:29 हो चुके हैं। समाचार बुलेटिन आप तक पहुंचाया जा रहा है लीडोवी के सहयोग से। जुड़े रहिए हमारे साथ, कुछ ही समय बाद शोक समाचार।

Henri Caton, Okuleme, Henri Caton, Okuleme, Ikyawani Salki, 51-year-old, Sri Shastri Gangana, Sri Shastri Gangana, जो बड़ों से जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई है। अर्थी जो हैं कल दिन के 11 बजे इनके भतीजे विराज गंगना के मकान औंखे कातों उकुले से उठाकर दाह संस्कार के लिए प्लानमानियों की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। नंबर 42 रुत को कोथरी रोशबामे, नंबर 42 रुत को कोथरी रोशबामे, 69 साल के 69-year-old श्री मुनीलाल डुला, श्री मुनीलाल डुला जो रोहित से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 10 बजे इनके बेटे नेश्वर डुला के मकान नंबर 42 रुत को कोथरी रोशबा से उठाकर दाह संस्कार के लिए सिपाही ब्रुले वाले दीप्रेत की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।

such beautiful and mesmerizing gaane especially for you on our Rantio Radio Mercy. That's in the lovely voice of Kumar Sanu, Chand Sitare Ka Hona Pyar Hai, jo 2000 mein release hui thi khaskar aapke naam on Radio Masti. Radio Masti, AM to PM sunte raho. तो चलिए जी 6:50 हो चुके हैं यानी कि टाइम बेटा चला जा रहा है. टू ऑल दोस्त जो किचन में है कुआश टू यू एंड टू ऑल दोस्त जो स्टिल ड्राइविंग एट द टाइम यू आर लिसनिंग टू ऑल टू रेडियो मस्ती. वेल ड्राइव केयरफुली आराम से गाड़ी चलाना एंड वी आर हियर टू गिव यू वन ऑफ द लवलीस्ट कंपनी एंड टू ऑल दोस्त सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडेज. हेलो जी हैप्पी बर्थडे टू यू एंड स्पेशल बर्थडे विशेस गोज आउट टू यू नितीश ठाकुर फ्रॉम वोटन केयर. सो विशिंग यू अ मैजिकल बर्थडे ब्रो एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑलवेज एंड बेस्ट विशेस कमिंग फ्रॉम the entire family to you straight away from my heart. Lots of love and happiness and lots of progress, good health, and as well your beautiful wife aur aapke bachche Mehan and Ishan ne aapko wish kiya hai. Especially love now bilak patpo ne aapko wish kiya hai a lovely birthday. So happy birthday to you.

0: रेडियो मस्ती।
1: बिल्कुल जी, ऑन रेडियो मस्ती, आई जस्ट वांट टू विश यू अ मैजिकल बर्थडे Nitesh, and may God bless you always. And this beautiful song goes out straight away from our heart to yours, especially aapki wife ki taraf se. Ye gana aapke naam.
2: RM2 Radio Masti.

0: ये दिन यही है और उन दिनों को फिर से ताज़ा करने के लिए, उन पलों को फिर से याद करने के लिए ऑल वी नीड इज स्मॉल एक्सक्यूज, एक छोटा सा बहाना चाहिए होता है उन खूबसूरत यादों को फिर से, यादों के पिटारे से खोलकर हर एक ज़िंदगी के पन्नों को बार बार उनको देखकर ये याद करना और ये एहसास करना कि ज़िंदगी सच में बहुत ही छोटी है और चार पल की ज़िंदगी में अगर जितना हो सके आप मेमोरीज क्रिएट करेंगे तो ऑल यू विल गेट इज़ अ ब्यूटिफुल वंडरफुल लाइफ। एंड साथ में इस भागदौड़ की ज़िंदगी में जब भी आप पलट कर देखेंगे तो कभी कभार हंसने और आंखें नम करने के लिए ऑल वी विल बी नीडिंग इज़ those memories। तो चलिए 7:05 हो चुके हैं, आप सभी का दिल से स्वागत कर रहे हैं इट्स योर मंडे इवनिंग जहाँ पर आप लोग हमेशा इंतज़ार करते हैं ताकि आपको मौका मिले थोड़ा बहुत रिलैक्स करने के लिए। सो डेफिनेटली एज यूजुअल हमेशा हम कहते हैं कि सिट बैक रिलैक्स एंड एन्जॉय द ब्यूटिफुल कूल म्यूजिक ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती। एंड दिव्या का साथ है अभी से लेकर रात्रि के 9 तक जहां पर हमें मौका मिल रहा है कुछ खूबसूरत प्यार के गाने आपको सुनाने के लिए। तो ऑफकोर्स अगर आप भी प्यार को महसूस करना चाहते हैं और यू हैव टू डू इज नॉट ओनली लिसन टू दीज सॉन्ग्स बल्कि आपको इन गानों को महसूस करना है और प्यार को भी एक्सपीरियंस करना है। तो चलिए यहाँ पर हम ज़रूर जानना चाहते हैं कि व्हाट्स हैपनिंग ऑन योर साइड और आप किस तरीके से इस मंडे इवनिंग को स्पेंड कर रहे हैं। ऑफ कोर्स बताइएगा ऑन 5499-1294।
1: Evening Lounge,
2: RM2,
1: Radio Musti।

0: क्या बात है क्या बात है, थोड़ा सा प्यार हुआ है और थोड़ा है बाकी। ये सच बात है दोस्तों कि जिंदगी में चाहे जितना भी आपको प्यार मिले, बेशुमार बेइंतहा प्यार, प्यार की ये भूख और प्यार की प्यास कभी मिटती नहीं है। और ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में और भी प्यार की ज़रूरत है। बस यही चीज़ है जहाँ पर हम कहेंगे कि ग्रीडी बनना और इसको बार बार ढूंढना बिल्कुल भी गलत बात नहीं है, क्योंकि प्यार जितना भी आप बांटेंगे ना, वो कभी कम नहीं होता है, वो दुगना होता जाता है। इसीलिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप भी अपनी तरफ से अपने प्यार को रेसिप्रोकेट करें टू दोज जो आपसे प्यार एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और कभी ऐसा होता है ना कि ज़िंदगी में बहुत सारे लोग मिलते हैं और कहते हैं कि हमेशा जब हम कोई चीज़ करते हैं तो बदले में हमें कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, बट वी आर जस्ट ह्यूमन बीइंग्स। और जब आप किसी से प्यार करते हैं तो जाहिर सी बात है बदले में आप भी थोड़ा सा प्यार एक्सपेक्ट तो करेंगे ही। इसलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज़ कि टू मेक श्योर कि जो प्यार आप दे रहे हैं वो वापस लौट कर आप तक पहुंच भी रहा है कि नहीं, ये भी आपको देखना पड़ेगा और एहसास करना पड़ेगा। चलिए 7:18 हो चुके हैं। थैंक यू सो मच दिव्या का साथ देने के लिए ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती। एंड हमारा और आपका साथ रहेगा रात्रि के 9 बजे तक। एंड चलिए आपके मैसेजेस का इंतजार रहेगा ऑन 5499-1294।
1: Evening Lounge.
2: RM2.
1: Radio Musti.

भाई देखिए आपको बार बार हम बुला रहे हैं ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, आपको इतनी दफ़ा कौन बुलाने वाला है, बस कोई प्यार करने वाला ही होना चाहिए और हम तो आपसे इतना प्यार करते हैं कि बार बार आपको होंदे वो और न्योता देते रहते हैं ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती। एंड आपके बिना तो ये शो एकदम फीका है और आपके आने से ही शो में चार चांद लग जाता है और दिल से आपको शुक्रिया, लव एंड ग्रैटिट्यूड टू ईच एंड एवरीवन जो इस वक्त कनेक्टेड हैं हमारे साथ। चलिए बढ़ते हैं आपके कुछ मैसेजेस की ओर जो आपने बहुत ही प्यार से हमें भेजे हैं और प्यार से ही भेजे होंगे क्योंकि प्यार में ही लोग वक्त निकालते हैं और कहते हैं

कि जिंदगी में अगर आप किसी को अपनी कीमती चीज़ देना चाहते हैं तो वो है आपका वक्त। सो थैंक यू सो मच, आप लोग अपने इस कीमती वक्त को निकाल कर हमें याद कर रही हैं। यहाँ पर किसी ने हमें कहा है, हाय कैन समवन हेल्प, बॉलीवुड मूवी मेरे सपनों की रानी जिसमें नज़र आई थी मधु उर्मिला एंड संजय कपूर, एंड आप ये मूवी नहीं देख पा रहे हैं ऑन सोशल प्लेटफॉर्म, हम ट्राई करते हैं और देखते हैं कि हम किस तरीके से आपकी मदद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज। और यहाँ पर हमें किसी ने कहा है, नमस्ते दिव्या जी, प्लीज़ अगला गाना मेधा मनीष श्रेया अरियान नील शीतल विकी रितिना नितिन संगीता मुताय ब्लॉश से। थैंक यू सो मच, आपको धन्यवाद, इनफैक्ट हमें आपको थैंक यू बोलना चाहिए कि आप इतने प्यार से हमारा साथ दे रही हैं। हाई डियर, वुड लाइक टू डेडिकेट द नेक्स्ट गाना फॉर माई स्वीट एंड ब्यूटिफुल लिटिल सिस्टर अंजलि चतु ऑफ पॉपले मुसेज, जिन्होंने कल अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, तो आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे डियरेस्ट अंजलि। और चलिए हमारी तरफ से भी अंजलि को बहुत बहुत सारा प्यार, एंड साथ में विशिंग हर लोड्स ऑफ हैप्पीनेस ब्लेसिंग्स लक एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम राजीव, और उनके सिस्टर इन लॉ हैं टीना, नेफ्यूज़ हैं अर्णव लिटिल नक्श, और तिलकधारी फैमिली ऑफ सैंपिया की तरफ से उनको बहुत सारा प्यार, एंड ऐसे ही बस आप हंसते रहे मुस्कुराते रहे और आप जियो हज़ारों साल। हाई रेडियो मस्ती टीम, प्लीज़ प्ले द सॉन्ग मैं अगर सामने फ्रॉम द मूवी राज, नूतन आप हैं थ्रियोले से, थैंक यू सो मच, हम ट्राई करते हैं इफ़ वी कुड प्ले द सॉन्ग। एंड यहाँ पर किसी ने हमें बहुत ही प्यार से एक फूल का गुलदस्ता भेजा है, क्या बात है, बहुत ही सुंदर है आपकी तरह टीना जी, थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, एंड आई जस्ट होप दैट यू आर डूइंग गुड एज वेल, एंड गर्मा गर्म डिनर ले रहे हैं अभी अपनी फैमिली के साथ। और नेक्स्ट ड्रॉ गोज आउट टू ईच एंड एवरी वन जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं, और आपको बुना पिछे शुभाहार, थैंक यू सो मच, एंड चिली टूल दोज जो उस पार से हमारा साथ दे रही है, मे बी योर अब्रोड या फिर मॉरिशस में ही हैं, अगर आप लोग इस वक्त रिलैक्स होकर हमारे हर एक गीत को सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो एक मैसेज जरूर ड्रॉप इन करिएगा 5499-1294। इवनिंग लाउंज, इवनिंग लाउंज, RM2 रेडियो मस्ती।

0: लेकिन कुछ लोग मॉर्निंग से ज़्यादा इवनिंग को पसंद करते हैं क्योंकि यही एक ऐसा वक्त होता है जहाँ पर उनको थोड़ा सा रिलैक्स करने का टाइम मिलता है और खुद के लिए भी थोड़ा सा वक्त बचा कर रखना ये बहुत ही ज़रूरी है। डोंट फॉरगेट, हमेशा हम कहते हैं ना कि जब भी आप घर वापस आते हैं तो सबसे पहले आप अपने फैमिली मेम्बर्स के एक्सप्रेशन को देखिए, बिकॉज ट्रस्ट मी दिस इज़ द प्योरेस्ट काइंड ऑफ लव। और मे बी दिन भर वो आपका इतना इंतज़ार करते हैं कि शायद बोल भी नहीं पाते हैं, लेकिन आपका चेहरा देखकर उनका चेहरा खिल उठता है और ये एक्सप्रेशन देखने लायक होता है। तो चलिए, आई जस्ट होप कि आप सेफ एंड साउंड अपने घर पहुंच चुके होंगे। एंड ऑल दो स्टिल ड्राइविंग गोइंग बैक होम, आपको हम कहेंगे हैव अ सेफ सेफ ड्राइव विद रेडियो मस्ती। थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए। एंड चलिए, ये अगला गाना हम डेडिकेट करेंगे स्पेशली आपके नाम। कहती हैं, हाय दिव्या नमस्ते, आई एम लिसनिंग टू योर शो प्लेइंग ऑल माई फेवरेट सॉन्ग्स, थैंक यू so much for liking। अभी आप ट्रेन में हैं और घर वापस जा रही हैं फ्रॉम वर्क, सो आपको बस यही कहेंगे प्लीज़ स्टे सेफ और घर वापस आराम से जाइएगा। एंड आप कहती हैं, कीप अप द गुड वर्क एंड हैव अ वंडरफुल इवनिंग फ्रॉम रेणुका ऑफ लंदन। थैंक यू सो मच रेणुका जी, इट मीन्स अ लॉट। एंड चलिए, साथ में ब्यूटीफुल गाना जाएगा फॉर लवली वाइफ रीमा एंड बेटा रिद्वंश From husband Anish। And यहाँ पर किसी ने हमें मैसेज भेजा है, प्लीज़ प्ले अ सॉन्ग फॉर माई डॉटर छवि ऑफ 6 years old। और आपको गाना सुनना है तुझसे नाराज़ नहीं फ्रॉम पापा कमल दसानी ऑफ काटकोको, अगर पॉसिबल हुआ तो ये गाना हम चलाने की कोशिश करेंगे। एंड फिलहाल के लिए चले बढ़ते हैं अगले गाने की ओर, स्पेशली डेडिकेटेड टू ऑल RM2 लिसनर्स। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।
1: RM2 रेडियो मस्ती

0: वाले के बीच में कोई दीवार ना हो एंड जमाने की कोई रोक टोक ना हो, लेकिन कहते हैं ना कि जिनका प्यार सच्चा है, कभी कभी ऊपर वाला उनके प्यार को परखने के लिए बहुत सारे इम्तिहानों तक उनको गुजरना पड़ता है। तो चलिए, अगर कभी भी आपको ज़िंदगी में इम्तिहान देना पड़े तो जस्ट नो एंड जस्ट स्टे फोकस्ड कि इसमें आपको बस खड़ा उतरना है एंड हार कभी नहीं मानना है एंड स्पेशली प्यार करने वालों की कभी हार नहीं होती है, हमेशा जीत ही होती है। सो चलिए, यहाँ पर होगी प्यार की जीत, हमें पूरा यकीन है। 8:05 हो चुके हैं, एक बार फिर से आप सभी का दिल से स्वागत कर रही है ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, जहाँ पर दिव्या का साथ है। अभी से लेकर रात्रि के 9 बजे तक कुछ प्यार भरी बातों के साथ प्यार भरी गाने भी लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एंड थैंक यू सो मच जिनके मैसेजेस आ रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि एक्चुअली उनको गाने बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू वंस अगेन एंड बिल्कुल आपके मैसेजेस हम तक ज़रूर पहुँच रही हैं। ये ना सोचे कि हम आपके मैसेजेस को पढ़ना बंद कर लेंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 9 बजे तक ऐसे ही नॉनस्टॉप कुछ गाने, कुछ आपके मैसेजेस, एक बार फिर से कुछ गाने, ऐसे ही हम रिशफल करते रहेंगे। सो चलिए, कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ इस म्यूजिकल जर्नी को हम आगे बढ़ाते हैं और इनको और भी खूबसूरत बनाते हैं।
1: Evening Lounge,
2: Evening Lounge,
3: RM2,
1: Radio Masti.

0: रात्रि के 8:28 हो चुके हैं। दिन ब दिन मोहब्बत ऐसे ही बढ़ती जाएगी और हम ऐसे ही आपको प्यार का लव डोज देते रहेंगे। एंड हम यही चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में से कभी कभी ये प्यार का डोज और प्यार का जो मैजिक है कभी फेड ना हो। एंड वैसे कहते हैं ना कि प्यार का ये रंग एक बार सर चढ़ के बोलने लग जाए तो उतरने का नाम नहीं लेता है। एंड किसको भी चाहिए कि ये प्यार का जो रंग है उतरे, कोई नहीं, क्योंकि प्यार ही इतना प्यारा है। जब ज़िंदगी में आता है तो ज़िंदगी ऑटोमेटिकली इतनी खूबसूरत लगने लग जाती है कि प्यार का साया हर किसी को चाहिए। तो चलिए यहाँ पर कुछ और आपके मैसेजेस हम तक पहुँच रहे हैं। थैंक यू सो मच। एंड अगला गाना ख़ास तौर से हम डेडिकेट करेंगे आपके लिए जो इस वक्त कनेक्ट रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए रूपशा, वेरी ब्यूटिफुल नेम। अगला गाना गोज़ आउट स्पेशली आपके नाम एंड स्पेशली उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं और जो आपको जानते हैं। सो चलिए, आप कहते हैं कि यू एंजॉयिंग ईच एंड एवरी गाना, सो चलिए ऐसे ही एंजॉय करते रहिएगा।
1: इवनिंग लाउंज,
2: इवनिंग लाउंज,
3: आरएम2
1: रेडियो मस्ती।

0: ट्रस्ट मी, जब आप गुड म्यूजिक के साथ जुड़े रहते हैं ना तो ये खामोशियां भी गुनगुनाने लग जाती हैं, और हर एक चीज़ में अगर आप म्यूजिक को ढूंढेंगे तो आपको हर सुर ताल और लय के साथ झूमना ही पड़ेगा। तो चलिए, यहाँ पर गुड म्यूजिक के साथ साथ हम यहाँ पर आपको गुड मोमेंट्स भी दे रहे हैं, जहाँ पर आपको मौका मिल रहा है टू रिवाइव सम ऑफ द ब्यूटीफुल गोल्डन मेमोरीज। तो चलिए, ऐसे ही पुरानी यादों को ताज़ा करते रहिए। आई एम वेरी श्योर कि कुछ 90s गीतों को सुनने के बाद यू माइट बी फीलिंग वेरी वेरी गुड, एंड बस यही अच्छी वाली फीलिंग आप ऐसे ही बरकरार रखिए।
1: इवनिंग लाउंज,
2: इवनिंग लाउंज,
3: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti.
2: वेल फ्रेंड्स, 7:50 हो चुके हैं. एंड चलिए, अगर आप लोग हमें नॉर्मल मैसेजेस में कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ आपको हम बता देते हैं कि देर हैज़ बिन अ स्लाइट टेक्निकल इशू जहां पर आपके मैसेजेस हमें बिल्कुल नहीं रिसीव हो रहे हैं. तो आप हमें व्हाट्सएप पर ज़रूर याद कर सकते हैं. व्हाट्सएप पर नंबर वही है 5499. प्लीज़ प्लीज़ रिमेंबर, आप अभी के

ये मैसेजेस नॉर्मल मैसेजेस हमें ना भेजें क्योंकि टेक्निकल इशू की वजह से आपके मैसेजेस हमें रिसीव नहीं हो रहा है. तो चलिए वी हैव दिस ब्यूटीफुल गाना टू ऑल दोज जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं बहुत ही प्यार से. अगर आपका दिल भी थोड़ा सा शोर कर रहा है तो इसको काम डाउन करने के लिए वी हैव दिस गुड म्यूजिक.

0: Well, इसी अगले गाने के साथ इट्स टाइम फॉर मी टू से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू. हमारी और आपकी मुलाकात होने वाली है बहुत ही जल्द. तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय.
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आप सबों का। मैं हूं विदिता, आप सुन रहे हैं समय लेट नाइट ग्रूव्स। तो मंडे की इस इवनिंग में आप सबों का स्वागत है। रोमांटिक गीतों का सिलसिला जारी है। सच

0: म्यूजिक ऑल डे लॉन्ग रेडियो मस्ती सुनते रहो।
1: हेलो जी नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो बताइए आज का मौसम क्या कह रहा है। मौसम तो कह रहा है कि सर्दी जो है वो टाटा बाय बाय कह के गर्मी जो है उसको आने के लिए रोम दे रहा है। तो ऐसा करते हैं, कुछ रोमांटिक गीतों के लिए जगह हम भी बनाते हैं।

लिस्टिंग टू लेट नाइट ग्रूव्स वेदिता के साथ ऑन रेडियो मस्ती। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है। आज का दिन अच्छे से गुजराना, ऐसे ही कहते हैं कि हम बस मॉर्निंग जैसा भी हो, शाम आते आते इंसान रिलैक्स करना चाहता है, और ऐसे में आपके लिए कुछ रोमांटिक कहानी।

रोमांटिक गीतों का ये सिलसिला आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती पर, मैं हूँ वेदिता, साथ दे रहे हैं आप हमारे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर खूबसूरत गीतों का ये सफर हम जारी रखेंगे आपके लिए, आपके अपने लेट नाइट क्रूज़ में।

वेल फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज का हमारा सिलेक्शन आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। तो अगले गाने के साथ थोड़ा सा और मूड को रोमांटिक बनाते हैं अपनों को याद करते हुए।

0: म्यूजिक ऑल डे लॉन्ग। रेडियो मस्ती सुनते रहो।
1: दोस्तों मैंने कविता लिखनी छोड़ दी थी, लेकिन कुछ दिन हुए तो ऐसा लगा जैसे सोए हुए जज्बात जाग उठे, प्यार की उमंगें मचलने लगी।
2: क्यों

चाहे आप ड्राइव करते करते या तो फिर आप घर में अपने रूम में बैठे बैठे हमें सुन रहे हैं या तो फिर बेड पे लेटे लेटे सुन रहे हैं, कुछ गाने ऐसे हैं जो आपको बहुत कुछ याद दिलाते हैं। टेकिंग यू डाउन मेमोरी लेन, कुछ याद है इस गाने के साथ।

अभी अभी मौसम जैसे ये कह रहा हो कि भाई ऐसा करो, एक गर्मा गर्म कप चाय ले लो या कॉफ़ी ले लो, फिर बैठ के इन खूबसूरत गीतों को एंजॉय करते रहो। लेकिन हाँ, हम हमेशा कहते हैं कि सोने से 2 घंटे पहले ना चाय पीनी चाहिए और ना कॉफ़ी पीनी चाहिए, है ना।

निवेदिता और आप सुन रहे हैं लेट नाइट ग्रूव। तो बताइए अभी तक का हमारा जो सिलेक्शन था आपको कैसा लगा? मैं जानती हूँ रोमांटिक गाने सुनने वाले तो कहेंगे कि हाँ गाने तो बड़े मस्त चल रहे हैं, लेकिन आपके दिल में क्या चल रहा है ये तो हम जरूर जानना चाहेंगे। चलो तो ऐसा करते हैं, इन रोमांटिक गीतों का सिलसिला जो है ना इसको जारी रखते हैं।

आज के दिन जितने भी लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, तो उनको हमारी ओर से यानी रेडियो मस्ती की ओर से हैप्पी हैप्पी बर्थडे। और हाँ, जो लोग कल अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो बस कुछ ही पल में तो ये 12 बज जाएंगे, फिर आप वेट करेंगे उनका सरप्राइज करने के लिए। हम सरप्राइज में थोड़ा भंग डाल दें, हमारी ओर से रेडियो मस्ती की ओर से आपको अभी से ही हैप्पी बर्थडे इन एडवांस।

जी हमारे जाने का टाइम हो गया है, अब कब मुलाकात होगी ये तो नहीं जानते, लेकिन होगी ज़रूर आपके साथ हमारी मुलाकात। तब तक के लिए मैं विदिता आपको कहूँगी बाय बाय, ख्याल रखिएगा, प्यार बांटते चलिए, प्यार से जीते रहिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्माइल करते रहिए। तो फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
3: तू सफर